सुप्रभात। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। आज गुरुवार है। शक संबत 1948 के आषाढ़ मास की तिथि 18, तदनुसार 9 जुलाई सन 2026। इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:49 होने को हैं और हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं अपनी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ।

0: सत्संग अर्थात सज्जनों का संग मनुष्य के लिए सभी प्रकार से लाभकारी सिद्ध होता है। समाज में आदि युग से दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं, एक सज्जन प्रकृति के और दूसरे दुर्जन प्रकृति के। इन्हें ही संत और असंत कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनका विशिष्ट लक्षण ये बताया है कि संत सह ही दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। सज्जन पुरुष दूसरों के दुख दर्द क्लेश आदि को दूर करने के लिए स्वयं सहज भाव से कष्ट भी झेल लेते हैं। दूसरी ओर दुर्जन प्रकृति के लोग निर्दोष दुर्बल और असहाय लोगों को अनेक प्रकार की यंत्रणाएं और उत्पीड़न देते रहते हैं। सज्जनों में सहज दया भाव रहता है, दुर्जनों में स्वभावतः क्रूरता और निर्दयता होती है। संगत का प्रभाव हम जीवन में प्रत्यक्ष देखते हैं। शराबी और जुआड़ी के संग रहने वाले व्यक्ति शराबी जुआड़ी हो जाता है, वेश्यागामी का साथी वेश्यागामी और चोर डाकू लुटेरों का साथी चोर डाकू और लुटेरा हो जाता है। इसी प्रकार साधु के साथ रहने वाला साधु, पुजारी के साथ रहने वाला पुजारी, विद्वानों के साथ रहने वाला विद्वान, कलाकार और साहित्यकार के साथ रहने वाला कलाकार और साहित्यकार सहज ही बन जाता है। प्रकृति का ये नियम है कि जो जिसके साथ रहता है वो उसका गुण ग्रहण कर लेता है। पानी में चीनी मिल जाए तो उसमें मिठास, और नमक मिल जाए तो उसमें खारापन आप से आप उत्पन्न हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ठीक ही लिखा है, हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहु, गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कीच ही मिले नीच जल संगा। बुरी संगति से हानि और अच्छी संगति से लाभ हस्तामलक की भांति प्रत्यक्ष है। धूली के कुछ कण हवा के संपर्क में आकर आकाश की ऊंचाई छू लेते हैं, और वे ही जब जल के संपर्क में आते हैं तो कीचड़ बन जाते हैं। स्पष्ट है कि उच्चादर्श के मार्ग पर चलने वालों के साथ रहकर मनुष्य बड़ा से बड़ा आदमी बन सकता है, और वहीं दुष्प्रवृत्ति और नीच प्रकृति के लोगों के साथ रहकर बुरा से बुरा और समाज का सबसे निकृष्ट आदमी बन जाता है। इसीलिए मनुष्य को कदापि बुरे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए और ना ही उनकी बातें सुननी चाहिए। बगुले जैसा अभक्ष्य भक्षण करने वाला भी पयह पान करने वाला हंस प्रवृत्ति का हो जाता है। काक होए पिक बक हुमराला। दूसरी ओर दुर्जनों की संगति उसी प्रकार हानिकारक होती है जिस प्रकार काटे चाटे स्वान के दूहु भांति विपरीत। तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है कि बरु भलवास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देही विधाता। अतः दुर्जनों की संगति छोड़कर हमें सज्जनों की संगत करनी चाहिए, इसी से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। सत्संगति सदा लाभकारी होती है।
1: आकाशवाणी पटना से अभी आप चिंतन सुन रहे थे, और अब सुनिए कार्यक्रम कृषि चर्चा। इसमें आज सुनिए वार्ता, विषय है रजनीगंधा की खेती।
2: किसान भाइयों नमस्कार। रजनीगंधा की खेती

0: भी आप इस मौसम में कर सकते हैं। जैसा कि नाम से ज्ञात होता है रजनीगंधा, इसकी सुगंध बहुत अच्छी होती है। और सबसे बड़ी बात होती है कि जितने भी फूल होते हैं, फूल वाले पौधे होते हैं, उनके फूलों का जो भंडारण होता है उसमें काफी दिक्कत आती है, क्योंकि भंडारण क्षमता कई फूलों की कम होती है, लेकिन रजनीगंधा की भंडारण क्षमता ज्यादा होती है, जिससे इसका प्रयोग गुलदस्ता बनाने में, मेज की सजावट करने में, भीतरी पुष्प सज्जा में किया जाता है, और महिलाओं के बालों में लगाने के लिए भी रजनीगंधा का प्रयोग होता है। रजनीगंधा की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में आप कर सकते हैं, लेकिन बलुई दोमट एवं मटियार मिट्टी इसके लिए काफी अच्छी होती है। मिट्टी का पीएच 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। जल निकास की भी आप अच्छी व्यवस्था करें। पहले आप ये करें कि खेत में जो पुराने फसलों के अवशेष हैं, खरपतवार हैं, उन्हें निकालें, 3-4 जुताई करें, फिर प्रत्येक जुताई के बाद पट्टा लगावें, मिट्टी मुलायम एवं भुरभुरी बनावें, उसके बाद खेत में 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद डालें, उसके बाद आप इसकी खेती करें, यानी कि रोपाई करें। लेकिन उसके पहले आप कुछ किस्मों के बारे में भी जान लें। तो इसकी किस्मों में अराजत रेखा, सुभाषिनी, स्वर्ण रेखा, श्रृंगार, सिंगल मैक्सिकन प्रमुख है। सुभाषिनी किस्म डबल फूल की किस्म है, एक डंठल में कई फूल लग जाते हैं, फूल सफेद एवं पंखुड़ियों का किनारा गुलाबी होता है। स्वर्ण रेखा किस्म में फूल में पंखुड़ियां एक से अधिक पंक्ति में पाई जाती हैं। श्रृंगार जो किस्म है, इसके फूल में पंखुड़ियां केवल एक ही पंक्ति में पाई जाती है। इस फूल की कलियां काफी आकर्षक होती है, इसमें उत्पादन क्षमता लगभग 15 टन है, यानी कि 15 टन फूल प्राप्त होते हैं। पौध रोपण के लिए 1.5 सेंटीमीटर व्यास के समान आकार के कंदों का उपयोग किया जाता है। कंदों को रोपण से पूर्व फफूदनाशी दवा से उपचारित कर लेना चाहिए। बाद में कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी आप 15 सेंटीमीटर रखें और 5 सेंटीमीटर की गहराई पर कंदों को लगा दें। कंद की रोपाई के लिए समय जो है आप अभी से लेकर फरवरी तक कर सकते हैं। पोषक प्रबंधन भी इसमें बहुत जरूरी होता है। आप पोषक प्रबंधन के लिए गोबर की खाद, नेत्रजन, फॉस्फोरस और पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। नेत्रजन की आधी मात्रा, फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा रोपाई से पूर्व खेत में डालनी चाहिए। नेत्रजन की शेष मात्रा 2 बार में 30 दिन के अंतराल पर खड़ी फसल में दें। खेत में नमी बरकरार रहे इस बात का आप ध्यान रखें। गर्मी के दिनों में सप्ताह में 1 बार और शरद ऋतु में 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में जो आप कंद डालते हैं उस समय आप देख लें, यदि आवश्यक हो तभी सिंचाई करें, नहीं तो कंदों के पास यदि पानी लग गया तो उसमें कंद सड़ सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण भी बहुत जरूरी होता है। जहाँ जहाँ खेती में रजनीगंधा की आपके अवांछित पौधे दिखाई दें, यानी कि खरपतवार दिखाई दें, तो उन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए आप निकाई गुड़ाई करें खुरपी की सहायता से। इसमें रोग कुछ हो जाते हैं उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तना सड़न रोग फफूद के द्वारा फैलने वाला एक रोग है, जो कि रजनीगंधा के पौधे को काफी प्रभावित करता है। इस के प्रकोप से तने पर गहरे हरे रंग के धब्बे बनते हैं, जिसके कारण तना सड़ जाता है। इसके लिए मैंकोजेब दवा जो आती है, जो विभिन्न नामों से बाजार में उपलब्ध है, मैंकोजेब 75% घुलनशील चूर्ण का 2.5 ग्राम दवा अथवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% घुलनशील चूर्ण का 3 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर आवश्यकता अनुसार छिड़काव करें। विल्ट रोग भी लगता है, इस रोग से भी बचाने के लिए जिनेब का प्रयोग आप कर सकते हैं या नीम की खल्ली का प्रयोग मिट्टी में कर सकते हैं। तो इस तरह से रजनीगंधा की भी खेती करें और लाभ उठावें।
1: अभी आपने कृषि चर्चा सुनी।

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। इस समय सुबह के 6 बजने को हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे।

0: नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय का गर्मजोशी से स्वागत के लिए आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वागत समारोह में स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
1: सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने बताया कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाती है। उच्चायुक्त ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूती और विविधता दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में कल 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के चालू वर्ष में 7% की वृद्धि दर के अनुमान के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है। आईएमएफ द्वारा कल जारी की गई प्रमुख अर्धवार्षिक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार अगले वर्ष भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 6.4% की मामूली वृद्धि का अनुमान है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट www.csirnet.nta.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। अमरीकी सेना ने कहा है कि वो ईरान पर फिर से हवाई हमले कर रही है। ये हमले एक दिन पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुए। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों राजस्थान हरियाणा और पंजाब में पहुंचने की संभावना है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से वर्षा जारी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनिए संवेद स्वर में देश वंदना।

अभी आप ये देशभक्ति गीत सुन रहे थे। भक्ति मन की वह सरल अवस्था है जो व्यक्ति की आत्मा को आश्वस्त करती है कि परमात्मा और आत्मा एक हैं। आइए हम सब मिलकर उनका गुणगान करें।

शिव वर्तमान हैं, उनको पाने के लिए बस स्वयं को बदलना है। शरीर के बदले मन एवं बुद्धि को शुद्ध एवं संयमित करना है।

श्री राम के वनगमन पर अयोध्या वासियों का आर्तनाद सुना नहीं जाता। जब राजा दशरथ की मूर्छा दूर हुई तो उन्होंने मंत्री सुमंत्र को बुलाकर कहा, श्री राम वन जा रहे हैं किंतु अब भी मेरे प्राण शरीर नहीं छोड़ रहे। ना जाने किस सुख की आशा में ये अब भी इस शरीर में टिके हुए हैं। फिर कठिनाई के साथ मन में धीरज धारण कर उन्होंने सुमंत्र से अनुरोध किया कि वे दोनों सुकुमारों और सुकुमारी जानकी को रथ में बिठा वन दिखाकर 4 दिनों में वापस लौट आवें। यदि दृढ़ प्रतिज्ञ दोनों कुमार ना भी लौटें तो उनसे आग्रह करना कि वे सुकुमारी सीता को लौटा दें। यदि सीता वन देखकर डरें तो उनसे कहना कि सास ससुर का ऐसा संदेश है कि पुत्री तुम लौट आओ। यदि वो लौट आई तो मेरे प्राणों को थोड़ा सहारा मिल जाएगा। इतना कहकर राजा एक बार फिर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। राजा की आज्ञा के अनुसार सुमंत्र रथ लेकर श्री राम, सीता और लक्ष्मण के पास पहुंचे। हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर सिया समेत दोनों भाई रथ पर चढ़कर वन की ओर चले। व्याकुल अयोध्यावासी उनके रथ के पीछे दौड़ते चले। श्री राम उन्हें वापस चले जाने को कहते हैं तो वो लौटने लगते हैं, किंतु प्रेमवश फिर रथ के पीछे दौड़ने लगते हैं। राम के विरह में शोकाकुल अयोध्यावासी चित्रलिखित से हो चले हैं।

इस गंगा आरती के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए रामचरितमानस से पाठ, मुख्य स्वर भूपेंद्र सिंह का है।

0: मानस से पाठ मुख्य स्वर भूपेंद्र सिंह का था। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इसमें आज सुनिए भेंट वार्ता। विषय है डायरिया या दस्त, लक्षण, कारण और बचाव। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर विजय प्रकाश और भेंटकर्ता चंद्रमणि।
1: श्रोताओं नमस्कार। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ दूरभाष पर उपस्थित हैं डॉक्टर विजय प्रकाश राय। आप राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी बाल स्वास्थ्य हैं। आज हम बातचीत करेंगे डायरिया अर्थात दस्त पर। सर, डॉक्टर साहब, हम पहले पूछना चाहेंगे कि डायरिया के कारण क्या होते हैं, खास करके गर्मी का जो मौसम आया हुआ है उसमें डायरिया की शिकायत बहुत लोगों के साथ होती है, तो इसके कारण क्या है और लक्षण क्या है इसके?
2: जी, आपने सही पूछा है कि गर्मी का मौसम आ गया है। डायरिया मुख्य रूप से वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और बच्चों में यह ज्यादा पाया जाता है, और गर्मी और बरसात के मौसम में अपने भारत में इसका प्रकोप ज्यादा रहता है। लक्षण यह है कि अगर माँ या गार्जियन यह समझ रहा है कि बच्चे का दस्त यानी जो शौच की संख्या बढ़ गई है और उसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो गई है, तो उसको हम दस्त मान करके चलते हैं
1: जी।
2: यानी सामान्य कल तक बच्चा जितनी बार शौच कर रहा था उससे उसकी संख्या बढ़ गई हो और उसमें पानी की मात्रा अधिक हो गई हो, तो इसको हम लोग दस्त मान करके चलते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, हम ये भी कहना चाहेंगे कि गर्मी के मौसम में ये ज्यादातर देखने को मिलता है, और इसका एक कारण ये भी होता है कि जो खाना बनाया जाता है खास करके ग्रामीण परिक्षेत्र में या शहरी क्षेत्रों में भी, जो बासी खाना हो जाता है, खाना बहुत जल्द ही बर्बाद हो जाता है गर्मी के मौसम में, तो उसको भी कई लोग खा लेते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे और क्या सुझाव देंगे हमारे श्रोताओं को कि क्या करना चाहिए?
2: देखिए, मैं पूरे डायरिया के बारे में ही एक सुझाव देना चाहूंगा कि चूंकि यह दूषित भोजन और पानी से ही फैलता है, और मुख्य रूप से अगर स्वच्छता की विधियों को हम नहीं अपनाते हैं तो इसका प्रकोप ज्यादा होता है या बढ़ता है या फैलने का माहौल तैयार करता है। जैसे शौचालय का प्रयोग न करना, अगर बच्चे या इन्फेक्टेड लोग खुले में शौच करते हैं तो अगर वो डायरिया से ग्रसित हैं, उनके शौच से फिर वो कीटाणु या विषाणु कई माध्यमों से फिर भोजन तक पहुंचते हैं। दूषित हाथ के माध्यम से पहुंच सकते हैं, मक्खियों के माध्यम से पहुंच सकते हैं, हवा के माध्यम से पहुंच सकते हैं, और उन खेतों में अगर हरी सब्जियां या सलाद वाले जो खीरा टमाटर इत्यादि हैं वे भी दूषित होते हैं, उनको भी अगर स्वच्छता से धो करके नहीं खाया जाए तो इस तरह से डायरिया होने का चांसेस रहता है। आपका प्रश्न था कि बासी भोजन से।
1: जी जी।
2: तो मुख्य रूप से ये तरीका हुआ कि शौच के बाद, खाना खाने से पहले, खाना पकाने से पहले अगर साबुन से बढ़िया से हाथ अगर हम धोते हैं तो बच सकते हैं डायरिया के प्रकोप से। बाहर निकलने पर जूतों का प्रयोग हो, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, कहीं से प्रदूषण उसमें न आए। खास करके अर्बन एरिया, शहरी इलाकों में कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो पानी की सप्लाई है वो कहीं पर कंटामिनेट हो जाती है सीवरेज से,
1: पाइप टूटा रहता है,
2: वो भी एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हमारा डायरिया फैलने का कारण होता है
1: जी।
2: और गर्मी और बरसात में ये जीवाणु और जो विषाणु होते हैं जो डायरिया या फूड पॉइजनिंग भी करते हैं, और वो उच्च तापमान में और ह्यूमिड वातावरण में जिसमें नम्रता ज्यादा होती, नमी ज्यादा होती, उस माहौल में वो जल्दी पनपते हैं, जल्दी बढ़ते हैं। इस प्रकार से भोजन को वो ऐसा विषैला कर देते हैं कि अगर हम उस भोजन को ग्रहण करते हैं तो उससे भी डायरिया होने का, उल्टी होने का चांसेस रहता है। तो बिल्कुल यह भी है कि खाना फ्रेश खाएं, उसे ढक करके रखें।
1: कई बार ऐसा देखा जाता है कि डायरिया अथवा जो भी बीमारी होती है तो ग्रामीण परिवेश में आम लोग जो होते हैं वो सामान्यतः जो प्रयोग में लाई जाती हैं दवाएं वो उपयोग कर लेते हैं, डॉक्टर साहब को नहीं दिखाते हैं, अस्पताल में जाकर नहीं दिखाते हैं, खुद से चिकित्सा करने लगते हैं। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि उन लोगों को अस्पताल कब जाना चाहिए और किन किन दवाइयों का सामान्यतः प्रयोग करना चाहिए?
2: डायरिया के बारे में कई तरह के कार्यक्रम राज्य स्वास्थ्य समिति से नेशनल हेल्थ मिशन के तहत भी चलाए जाते हैं, जिससे जनता में अवेयरनेस लाया जा सके। और प्रत्येक वर्ष बरसात के समय में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा के माध्यम से घर घर जा करके आशा बहनें 5 साल तक के उम्र वाले बच्चों

0: वाले घरों में ओआरएस का पैकेट देती हैं, ओआरएस बनाना सिखाती हैं, डायरिया कैसे फैलता है ये बताती हैं, और डायरिया से कैसे बचा जाए ये बताती हैं, और अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए, साथ ही कब हमें चिकित्सक से दिखाने की जरूरत होती है, ये सारी चीजों पर चर्चा होती है। तो मैं इसको पुनः आम जनता के लिए बताना चाहता हूँ कि डायरिया होने पर बच्चे को खतरे जो होते हैं वो पानी की कमी, इलेक्ट्रोलाइट्स की इम्बैलेंस, शुगर की कमी, इन वजहों से बच्चा सीरियस होता है और कभी कभी मृत्यु तक हो सकती है। और अगर हम सही समय पर ओआरएस का प्रयोग शुरू कर दें तो डायरिया से हर एक होने वाली मौत को हम लोग बचा सकते हैं।
1: जी, डॉक्टर विजय प्रकाश राय, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी बाल स्वास्थ्य, आपने आकाशवाणी को इतना समय दिया और दस्त के बारे में हमारे श्रोताओं को इतनी छोटी छोटी जानकारियों से रूबरू करवाया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
2: डायरिया या दस्त, लक्षण, कारण और बचाव, इस विषय पर अभी आपने डॉक्टर विजय प्रकाश से चंद्रमणि सिन्हा की बातचीत सुनी। इसके साथ ही कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हाल चाल। 7:15 पर हम आपको सुनवाएंगे नईम अली के स्वर में गजल। और 7:25 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित जसराज का राग अहीर भैरव में ख्याल गायन।

0: उर्दू कार्यक्रम अंजुमन होगा हमेशा की तरह 9:10 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी सुनिएगा सुबह 10 बजे। 10:30 पर का समय रहेगा सुगम संगीत का। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 11 बजे से। बिहार का लोक संगीत ये कार्यक्रम होगा दिन में 12 बजे। 12:30 पर होगा महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत। दिन में 1:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम उद्योग जगत। फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे दिन में 1:30 पर और दोपहर 2:30 पर। दो बजकर 10 मिनट पर रोजगार सूचना प्रसारित की जाएगी। युवाओं का कार्यक्रम युवाणी होगा शाम 4:30 पर। मैथिली कार्यक्रम भारती का प्रसारण किया जाएगा शाम 5:30 पर। ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम चौपाल होगा शाम 6:30 पर और हमारे किसान भाई खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनेंगे शाम 7 बजे। रात्रि 8:15 पर होगा कार्यक्रम बातों बातों में। फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे और रात्रि 10:30 पर। रात्रि 9:30 पर होगा कार्यक्रम कंट्री वाइड। 9:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम इनसाइट्स और रात्रि 10 बजे होगी परिचर्चा। विषय होगा महिला उद्यमी और सामाजिक परिवर्तन। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। इस समय सुबह के 6:55 होने को हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी त्रिराष्ट्र यात्रायाः द्वितीये चरणे ऑस्ट्रेलिया देशस्य मेलबोर्न नगरं सम्प्राप्तवान्। ह्यः तस्य आगमन समये ऑस्ट्रेलिया देशस्य नगरावासन मंत्री क्लेयर ओ नील इत्येषा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्नेहपूर्वकं स्वागतम् अकरोत्। प्रधानमंत्री अवदत्

0: यत् इयं यात्रा भारताश्ट्रेलिया समग्र सामरिक सहभागितायाः ऊर्जां वर्धयिष्यति इति सामाजिक सञ्चारपटले एकस्मिन् सन्देशे श्रीमोदी अवदत् यत् असौ ऑस्ट्रेलिया देशस्य समकक्षेण एन्थनी एल्विनीज इत्यनेन सह संवादम् आचरिष्यति। असौ एतदपि कथितवान् यत् भारताश्ट्रेलिया सहभागित्वस्य महत्वपूर्णस्तम्भेन भारतीय प्रवासिना सह संवादाय अवसरः अपि प्राप्स्यामीति। यात्रावधौ श्रीमोदी तृतीये भारताश्ट्रेलिया वार्षिक सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। असौ भारताश्ट्रेलिया मुख्य कार्यकार्याधिकारी मञ्चे अपि भागं ग्रहीष्यति, यत्र सः उभय देशयोः प्रमुखानां व्यापार नेतृणां समागममपि सम्बोधयिष्यति। भारत म्यांमार देशौ द्वैपाक्षिक सुरक्षा सहकारिता विषये चर्चां कृतवन्तौ। द्वैपाक्षिक संवाद व्यवस्थायाः अन्तर्गते प्रगतिं च समीक्षितवन्तौ। भारत म्यांमार देशयोः मध्ये त्रयोविंशतितमं द्विदिवसीय राष्ट्रिय स्तरीय सम्मेलनम् अद्य ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नम्। गृहमन्त्रालयः अवदत् यत् भयोत्पादनं विद्रोहः मादकद्रव्याणां क्रयविक्रयणं शस्त्राणां क्रयविक्रयणं मानवव्यापारं वन्यजीवानां क्रयविक्रयणम् इत्यादीनां संघटितानां अपराध प्रकाराणां निवारणार्थं सहकारिता विषये उभयपक्षौ चर्चां कृतवन्तौ। भारत रूस देशाभ्यां ह्यः संयुक्त राष्ट्र ब्रिक्स यूरेशियन समूह शंघाई सहयोग संघटनानि समेत्य बहुपाक्षिक मञ्चेषु आतंकवादरोधी सहयोगम् इतोपि सुदृढीकरणस्य प्रतिबद्धता पुनरुद्घाटिता। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूहस्य चतुर्दशोपवेशनम् ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितमासीत्। द्वौ देशौ सीमापारे आतंकवादं समेत्य आतंकवादस्य सर्वेषां रूपाणां अभिव्यक्तिनां च निन्दां कृतवन्तौ। भारतीयान्तरिक्ष अनुसन्धान संघटनम् मध्यप्रदेशस्य श्योपुर नगरस्य एरियल डिलीवरी रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट इत्यस्य ड्रॉप जोन इत्यत्र गगनयान उपक्रमस्य कृते महत्वपूर्णम् एकीकृतम् IMAT इति परीक्षा सफलतया आयोजिता। भारतऋतु विज्ञान विभागेन उक्तं यत् आगामिषु त्रिषु दिनेषु नैऋत्य प्रावृशे उत्तर अरबसागर राजस्थाने गुजरात हरियाणा पंजाब इत्येतेषां शेषभागेषु अग्रे गन्तुं स्थितिः अनुकूलः अस्ति। अद्य अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय बिहार पूर्व राजस्थान मध्यप्रदेश उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किम पश्चिमोत्तर प्रदेशानां केषुचित् भागेषु प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतु विभागेन पूर्वानुमानितम्। जम्मू कश्मीर प्रशासनेन ह्यः श्री अमरनाथजी यात्रामुद्दिश्य एका नवीना निर्देशिका प्रसारिता, यस्यां सर्वैः तीर्थयात्रिभिः पञ्जीकरण प्रक्रियायाः अथ सुरक्षा मार्गदर्शिकानां निष्ठापूर्वकं दृढतापूर्वकञ्च पालनं कर्तुं समादिष्टम्। आकाशवाण्याः जम्मू वार्ताहरैः विज्ञापितं यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्देशानुसारं निर्धारिता यात्रणां प्रतिदिनस्य संख्या सीमा सम्प्रत्योपि पूर्णतो प्रवृत्ता वर्तते। श्रद्धालवः परामृष्टाः यत् यात्रा प्रारम्भात् एव पूर्वमेव अग्रिम पञ्जीकरणं करणीयम् अथ अनुमतिपत्रे उल्लिखिते दिनांके एव यात्रा आरम्भणीया। प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् अनुपदमेव पञ्जीकरणस्य सुविधा अत्यन्तं सीमितसंख्यासु एव उपलब्धा अस्ति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी आधिकारिक मंच को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापारिक साझेदारियों को हमें ऊंचाइयों पर ले जाना है।
2: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है।

0: हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स में दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने गिफ्ट सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क को मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय को गर्मजोशी से स्वागत के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। नई दिल्ली में सत्र में कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे और इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के फिर से किए गए हमलों को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की समाप्ति के बाद किए गए हैं। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली में रात से ही लगातार बारिश हो रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का 4th मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इससे पहले 3rd मैच में भारत को इंग्लैंड से 125 रन से हार का सामना करना पड़ा था। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हालचाल। इस कार्यक्रम में आज सबसे पहले जानेंगे इतिहास में आज का दिन के बारे में। आज है 9 जुलाई। 9 जुलाई को अर्जेंटीना का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और फैशन डे प्रतिवर्ष 9 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन शैली रचनात्मकता और आत्मविश्वास का उत्सव मनाने के लिए समर्पित है। फैशन डे के अवसर पर लोग नवीनतम फैशन रुझान

पारंपरिक परिधानों और आधुनिक डिजाइनों की सराहना करते हैं। फैशन डिजाइनर, मॉडल और वस्त्र उद्योग से जुड़े पेशेवर अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। यह दिन फैशन उद्योग के योगदान और उसके आर्थिक महत्व को भी उजागर करता है। आज के समय में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल फैशन का महत्व लगातार बढ़ रहा है। फैशन डे हमें जिम्मेदार फैशन अपनाने और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने की प्रेरणा देता है। श्रोताओं, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस भी है। यह संगठन भारत के प्रमुख छात्र संगठनों में से एक माना जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1949 में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, राष्ट्र निर्माण और शैक्षणिक जागरूकता के उद्देश्य से की गई थी। नेशनल डिंपल्स डे हर वर्ष 9 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य मुस्कान और चेहरे की सुंदरता का उत्सव मनाना है। डिंपल्स गालों पर दिखाई देने वाले छोटे गड्ढे होते हैं, जिन्हें लोग आकर्षक और प्यारा मानते हैं। डिंपल्स अक्सर मुस्कुराहट को और भी सुंदर बना देते हैं। यह दिवस लोगों को खुशी, सकारात्मकता और आत्मविश्वास के साथ जीने की प्रेरणा देता है। मुस्कान न केवल चेहरे की सुंदरता बढ़ाती है, बल्कि लोगों के बीच प्रेम और अपनापन भी बढ़ाती है। नेशनल डिंपल्स डे हमें यह संदेश देता है कि हर व्यक्ति अपनी प्राकृतिक सुंदरता में खास होता है। यह दिवस आत्मविश्वास, खुशी, सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने का अवसर है। एक छोटी सी मुस्कान किसी के भी जीवन में खुशी ला सकती है।

श्रोताओं, आज की शख्सियत की बात करें तो आज की शख्सियत हैं गुरुदत्त, जिनका जन्म 9 जुलाई सन 1925 को हुआ था। हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे। उनका असली नाम बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। उन्हें अपनी फिल्मों में रोशनी और भावनाओं, इमोशन के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए जाना जाता है। प्यासा और कागज़ के फूल उनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्में हैं। गुरुदत्त की फिल्मों में संगीत और कैमरे का काम कमाल का होता था। वे अपनी फिल्मों में दुखी या उदास भावनाओं को बहुत ही खूबसूरती और काव्यात्मक तरीके से दिखाते थे। प्यासा फिल्म को टाइम मैगजीन की दुनिया की 100 बेहतरीन फिल्मों की सूची में शामिल किया गया है। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसे कवि का किरदार निभाया जो इस मतलबी दुनिया से दुखी रहता है।

श्रोताओं, आज का नुस्खा है, हर निवाले को तब तक चबाएं जब तक वह मुंह में पानी न बन जाए, और खाना खाने के तुरंत बाद पानी कभी न पिएं।

अभी आप कार्यक्रम हालचाल सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। लीजिए अब सुनिए नईम अली के स्वर में गजल।

अभी आप नई मलिक के स्वर में गजल सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज सुनिए पंडित जसराज।

का राग अहीर भैरव में ख्याल गायन। विलंबित की रचना एक ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं रसिया मारा, जबकि द्रुत की रचना तीन ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं आज तो आनंद। तबले पर इनकी संगति की है केदार पंडित ने।

हरि जीवन प्रभु गोकुल प्रगट मिटे सकल दुख राम।

0: अभी आप पंडित जसराज का राग अहीर भैरव में ख्याल गायन सुन रहे थे। तबले पर इनकी संगति की थी केदार पंडित ने। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्स पर। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2026 में 7% की विकास दर

0: रहने का अनुमान जताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक है और आवश्यक भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, AI, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा है कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।
2: तीसरा एनुअल लीडर्स समिट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स है, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी रिलेशनशिप को उस क्षेत्र में जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा

0: उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि स्वीकृत खरीद का कुल MSP मूल्य 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। यह खरीद MIS के तहत की जाएगी, जिसमें बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक निर्धारित किया गया है। अनुपम मिश्र के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती स्थित सचिवालय में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15,00,000 से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5,00,000 रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
3: इस योजना के तहत राज्य भर के शिक्षकों और उनके परिवारों को 5,00,000 रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15,00,000 शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करने के अपने वायदे को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ये व्यापक सामाजिक सुरक्षा और बीमा कार्यक्रम देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30,00,000 रुपए से 80,00,000 रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रात से ही बारिश हो रही है। दिन में भी शहर में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट पहले से ही जारी।

0: इन जिलों में कल रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रियो ताबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमरीका के जॉर्डन ली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने ईरान अमेरिका युद्ध विराम खत्म होने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान और बारिश के चलते देश में प्रभावित जनजीवन के समाचारों को सुर्खियों में जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया यात्रा का समाचार भी कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री का चित्र सबसे ऊपर छापा है। खबर को शीर्षक दिया है इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में मोदी ने की पूजा। वीर अर्जुन ने इस खबर को प्रधानमंत्री के इस बयान के साथ प्रकाशित किया है कि सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़ती है। देश बंधु की सुर्खी है इंडोनेशिया के सबसे बड़े शिव मंदिर में पहुंचे मोदी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय से स्वागत स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का चित्र भी कुछ अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने के समाचार को देश भर में भवन निर्माण संबंधी अनियमितताओं के मामले से जुड़ी स्थिति का विश्लेषण प्रकाशित किया है। पत्र का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर लोग 5 से 6 मंजिला भवन बना रहे हैं। स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लोकसत्य ने नौकरी पेशा पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी शीर्षक से पीएफ खाते में 8.25% की दर से ब्याज देने की सरकार की घोषणा को प्रकाशित किया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर रचा है इतिहास। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses India-Australia CEOs Forum in Melbourne, says it is natural and essential for India and Australia to move forward as trusted partners in a world marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. Prime Minister Modi to also hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Centre approves procurement of copra and Totapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Uttar Pradesh government launches cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. IMF projects India to remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. US launches new strikes on Iran after President Donald Trump said ceasefire is over. And India's Arnav Paparkar creates history by becoming first Indian in 36 years to reach boys singles quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the India-Australia CEO Forum in Melbourne this morning. Both leaders also met the leading business leaders from India and Australia. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said the world is currently navigating a period marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. He said that in such times, it is both natural and essential for

0: India and Australia to move forward as natural and trusted partners. The Prime Minister further said economic cooperation and trade agreement concluded in record time in 2022 has further strengthened the economic ties between the two countries.
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एकता समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
0: Prime Minister Modi also noted the complementarities between the Indian and Australian economies, underlining vast opportunities available in India across a number of sectors.
1: हमारी पार्टनरशिप केवल दोनों राजधानियों या कुछ शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें हमारे राज्यों, छोटे बड़े शहरों, विश्वविद्यालयों, उद्योगों सभी के स्टेक होल्डर बनाना होगा। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेंथ, उसको हम उड़ीसा और गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के साथ जोड़ सकते हैं। क्वींसलैंड और टेस्मेनिया की क्लीन एनर्जी और एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज, पंजाब और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रिन्यूएबल कॉरिडोर्स और फूड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम को नई गति दे सकते हैं।
0: Mr. Modi invited Australian investors to take advantage of opportunities for long-term investments in the country and also welcomed the growing presence of Australian universities in India.
1: Bharat aapke funds ko safe, stable aur sustainable growth ka avsar deta hai. Hamara prayas rahega ki aapka trust bhi badhe aur aapka capital bhi badhe. Education aur skills dono deshon ke beech natural synergy hai. डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने कीप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: Following the CEO's forum, Prime Minister Modi also addressed the Economic Roadmap Business Event, a large gathering of over 200 CEOs and business leaders from both sides. Speaking about natural synergies between India and Australia, he highlighted that shared democratic values, a common vision for the Indo-Pacific, vibrant people-to-people ties and strong political understanding created fertile ground for the business partnership between the two countries to grow and prosper together.
1: लोकतांत्रिक मूल्यों और इंडो-पैसिफिक साझा विजन के आधार पर हमारे बीच गहरा स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बना है। हम अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रयास में आप सभी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आज का ये संवाद नए आइडियाज, नई पार्टनरशिप और नए कमिटमेंट्स को जन्म देगा।
0: Now we go over to our Melbourne correspondent who is sharing more details on the Prime Minister's visit.
2: The India-Australia CEOs Forum marked a decisive shift from parallel diplomatic tracks to an integrated, future-proof economic engine. Prime Minister Modi signaled a new era of decentralized economic diplomacy, calling for direct state-to-state corridors that link Australia's raw resources directly with India's massive clean energy, chip manufacturing and digital infrastructure pipelines. Echoing this vision, Prime Minister Albanese mapped out massive capital commitments, anchored by Australian super's multi-billion dollar investments, unprecedented higher education partnerships and landmark industrial projects like the Perdaman plant. Together, both leaders made it clear that while policy sets the runway, it is a direct synergy of our corporate titans and unstoppable aspiration of 1 million strong diaspora that will pilot this relationship to its $100 billion target. Suhas Ram, Akashvani News, Melbourne.
0: Moreover, Prime Minister Modi will hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne later today. Discussions between the two leaders are expected to focus on strengthening cooperation in trade, defence, critical technologies, education and people-to-people ties. Mr. Modi arrived in Melbourne yesterday evening on a three-day visit to Australia at the invitation of Australian Prime Minister. PM Modi arrived in Melbourne from Indonesia in the second leg of his three-nation tour. The Prime Minister thanked the Indian community in Melbourne for the warm welcome accorded to him, describing the reception

0: attacks had effectively ended the ceasefire. U.S. President Donald Trump also accused Iran of attacking commercial ships in the Strait of Hormuz, saying the latest U.S. strikes were carried out in retaliation. On to sports. India's Arnav Paparkar created history by becoming the first Indian in 36 years to reach the boys' singles quarterfinals at the Wimbledon Juniors 2026. The 18-year-old Paparkar defeated Japan's Ryo Tabata 6-2-6-1 in just 52 minutes in the pre-quarterfinals. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
1: Thank you, Shagun. Indonesia visit concludes. Modi lands in Australia to meet Albanese today, strengthening Indo-Pacific ties. Quad on agenda reads a top story in the Indian Express, while India to help restore Prambanan Temple writes the Pioneer. Financial Express quotes Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan under the headline, July rains 42% surplus, boost Kharif prospects. POK may see flashpoint today, return bodies of 56 martyrs, informs the Asian Age, adding the grim situation and civil rights violations in POK raised international condemnation and protests across the world. Centre intensifies preparedness as El Nino threat looms large, mentions the Statesman. ED freezes Trinamool's 400 crore rupees bank deposits under Prevention of Money Laundering Act, PMLA, informs the Tribune. And finally, a Times of India article titled Summer Push, Durables Eye Double-Digit Growth, informs a scorching summer has spurred demand for seasonal appliances, putting India's consumer durable sector on track to post a robust double-digit growth. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Sarabjit. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi addresses India-Australia CEOs Forum in Melbourne, says it is natural and essential for India and Australia to move forward as trusted partners in a world marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. Prime Minister Modi to also hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Centre approves procurement of copra and Thottapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Uttar Pradesh government launches cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. IMF projects India to remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. US launches new strikes on Iran after President Donald Trump said ceasefire is over. And India's Arnav Paparkar creates history by becoming first Indian in 36 years to reach boys' singles quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हममनसब एंथोनी अल्बनीज आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया के सीओज फोरम में शरीक हुए। दोनों लीडरों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से भी मुलाकात की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने हममनसब एंथोनी अल्बनीज के साथ भी मुजाकरात करेंगे। मरकज ने किसानों के मुफादात के तहफ्फुज़ के लिए तमिलनाडु में किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीदारी को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में असातजा के साथ गैर तदरीसी अमले के लिए सेहत की कैशलेस स्कीम शुरू की है। बेलकौमी मालियाती फंड की जानिब से इस साल के दौरान भारत की शरे तरक्की 7% रहने के तखमीने के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी मईशत के तौर पर अपना ताज बरकरार रखे हुए है। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले सदर ट्रंप के उस बयान के बाद किए गए हैं जिसमें कहा गया था कि ईरान के ताजा हमलों से जंगबंदी खत्म हो गई है। और विंबलडन जूनियर्स 2026 में भारत के अर्नब पापरकर ने एक तारीख रकम की है और वो 36 साल में ऐसे पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जो लड़कों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। अब खबरें तफसील से।

0: में शिरकत की। दोनों रहनुमाओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से भी मुलाकात की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया इस वक्त एक गैर यकीनी सूरत हाल से दोचार है, सप्लाई चेन में रुकावट के अलावा तवानाई के बहरान से भी दोचार है। वजीर आजम ने कहा कि ऐसे वक्त में ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए फितरी और लाजमी है कि वो एक भरोसेमंद शराकतदारों की हैसियत से आगे बढ़ें। वजीर आजम ने मजीद कहा कि माशी ताउन और तिजारती समझौता 2022 में एक रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुआ और इससे दोनों मुल्कों के दरमियान माशी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए हैं।
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बहुत से शोबों में भारत में दस्तियाब वसी मौके का जिक्र करते हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया की मईशतों के दरमियान तकमील को भी वाजे किया।
1: न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया की फाइनेंस, एजुकेशन, मेडिकल टेक और इनोवेशन इकोसिस्टम महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना के साथ मिलकर ग्लोबल सॉल्यूशंस बना सकते हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस, स्पेस और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी उत्तर प्रदेश और केरलम के साथ नए अवसर बना सकते। मेरा सुझाव है कि हम आने वाले समय में कुछ फोकस स्टेट टू स्टेट और सेक्टर टू सेक्टर पार्टनरशिप की पहचान करें और उन्हें आगे ले जाने के लिए रणनीति बनाए।
0: जनाब मोदी ने मुल्क में तवील मुद्दती सरमायाकारी के लिए मौके का फायदा उठाने की गरज से ऑस्ट्रेलिया के सरमायाकारों को मधु किया और साथ ही साथ भारत में ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटियों की बढ़ती हुई मौजूदगी का भी खैर मकदम किया।
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने गिफ्ट सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: सीईओज फोरम के बाद वजीर आजम मोदी ने इक्तिसादी रोड मैप बिजनेस से मुतालिक तकरीब से भी खिताब किया, जिसमें दोनों मुल्कों के 200 से ज्यादा सीईओज और कारोबारी रहनुमाओं ने शिरकत की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फितरी तालमेल के बारे में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने इस बात को उजागर किया कि मुश्तरका जमहूरी कदरें भारत बहरुल काहिल के लिए एक मुश्तरका विजन, अवाम से अवाम के दरमियान वसी ताल्लुकात और मजबूत सियासी मफाहमत ने दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबारी शराकतदारी के लिए एक जबरदस्त बुनियाद की राह हमवार की है, जिससे दोनों मुल्क मिलकर आगे बढ़ेंगे और खुशहाली लाएंगे। अब हम मेलबर्न में अपने नामा निगार के पास चलते हैं, जो वजीर आजम के दौरे के बारे में मजीद तफसील से आगाह कर रहे हैं।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम ने मुतबादिल सिफारती रास्तों से हटकर एक मजबूत मुस्तकबिल के लिए महफूज इक्तिसादी इंजन की तरफ एक फैसलाकुन तब्दीली की निशानदेही की है। वजीर आजम मोदी ने लामरकजी इक्तिसादी सिफारतकारी के एक नए दौर का इशारा देते हुए बराह रास्त मुल्क से मुल्क के कॉरिडोर का मुतालबा किया है, जो ऑस्ट्रेलिया के खाम मसाइल को बराह रास्त भारत के बड़े पैमाने पर साफ सुथरी तवानाई, चिप मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल बुनियादी ढांचा पाइपलाइन से जोड़ते हैं। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बाद में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने मनसब एंथोनी अल्बनीज के साथ मुजाकरात करेंगे। तवक्को है कि दोनों रहनुमा तजारत, दिफा, अहम टेक्नोलॉजी, तालीम और अवाम से अवाम के दरमियान ताउन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज करेंगे। जनाब मोदी ऑस्ट्रेलिया के 3 रोजा दौरे पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे। वो ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम की दावत पर उस मुल्क का दौरा कर रहे हैं। مرکز نے تمیلناڈو میں کسانوں سے کھوپرا اور طوطا پوری آم کی خریداری کو منظوری دے دی ہے تاکہ کسانوں کے مفادات کا تحفظ کیا جائے۔

0: सके। ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत ने बताया कि इससे किसानों के लिए बेहतर कीमत को यकीनी बनाया जा सकेगा और मार्केट में उतार चढ़ाव की वजह से मजबूरी में कम कीमत पर फरोख्त करने से उनका तहफ़ किया जा सकेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ये मंजूरी तमिलनाडु के जरिए पेशकर्दा तजवीज पर मुबनी है। इस मंजूरी के तहत 87,000 मैट्रिक टन से ज्यादा खोपरा रियासत में फरोख्त किया जा सकेगा। मंजूर शुदा खरीदारी के कम से कम कुल इमदादी कीमत की कदर 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मजीद ये कि इस साल के दौरान तमिलनाडु में 96,000 मैट्रिक टन से ज्यादा तोतापुरी आमों की खरीदारी को मार्केट इंटरवेंशन स्कीम MIS के तहत मंजूरी हासिल हुई। खरीदारी MIS के तहत की जाएगी। इंटरवेंशन स्कीम का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि तोतापुरी आम की काश्त करने वाले किसानों को उनकी पैदावार की मुनसिफाना और मुनासिब कीमतें हासिल हो सकें और मार्केट की कीमतों में अचानक गिरावट की वजह से नुकसान पर फरोख्त करने से उनका तहफ्फुज़ किया जा सके। इस इकदाम से तवक्को है कि कीमतों में इस्तेहकाम लाया जा सकेगा और किसानों की आमदनी का तहफ्फुज़ किया जा सकेगा। सखलीन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस अलीम।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में असातिज़ा के साथ साथ गैर तदरीसी अमले के लिए कैशलेस हेल्थ स्कीम शुरू की है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से चीफ मिनिस्टर्स टीचर्स कैशलेस मेडिकल स्कीम का आगाज किया, जिसके तहत 15 लाख से ज्यादा तदरीसी अमले को 5 लाख रुपए तक का मेडिकल कवर फराहम किया जाएगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: इस स्कीम के तहत रियासत भर के असातिज़ा और उनके खानदानों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस तिब्बी सहूलियात मैसर आएंगी। बुनियादी और सेकेंडरी तालीम से वाबस्ता तकरीबन 15 लाख असातिज़ा और गैर तदरीसी अमला इस स्कीम से फायदा उठा सकेंगे। बाकायदा असातिज़ा के अलावा इस स्कीम से शिक्षा मित्र, इंस्ट्रक्टर्स, कुक्स और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के अहल अमले को भी फायदा पहुंचेगा। असातिज़ा और उनके अहल खाना को समाजी तहफ़ुज़ फराहम करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक मीटिंग में मुफाहमतनामे पर दस्तखत भी किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत ने असातिज़ा की सेहत और समाजी तहफ़ुज़ को यकीनी बनाने के अपने वादों को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश के महकमा बुनियादी तालीम के मुलाज़मीन के लिए ये जामे समाजी तहफ़ुज़ और इंश्योरेंस प्रोग्राम भारत में अपनी नौयत का पहला इकदाम है। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: इम्तिहान मुनक़िद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने CSIR UGC नेट जून 2026 के लिए एडवांस सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। ये इम्तिहान इस माह की 17 और 18 तारीख को मुनक़िद किया जाएगा। तलबा को मशवरा दिया जाता है कि वो इम्तिहान के लिए अलॉट किए गए शहर के बारे में जानने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.cisirnet.nta.nic.in से अपनी स्लिप डाउनलोड करें। बैन अल-अक़वामी मालियती फंड IMF की जानिब से रवां कैलेंडर साल के दौरान भारत की तरक्की की शरह 7% रहने के तखमीने के साथ ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई मईशत के तौर पर अपना ताज बरकरार रखे हुए है। IMF की फ्लैगशिप छमाही रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट ने अगले कैलेंडर साल में भारत की मजमुई घरेलू पैदावार की शरह मोतदिल होकर 6.4% रहने का तखमीना लगाया है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, बिहार, मशरकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, जिली हिमालयी, मगरबी बंगाल, सिक्किम और मगरबी उत्तर प्रदेश में शदीद से शदीद तरीन बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने आज दिन में साहली कर्नाटक, मशरकी उत्तर प्रदेश, गंगाई, मगरबी बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। इस दौरान आज सुबह कौमी राजधानी के मुख्तलिफ हिस्सों में औसत बारिश हुई, जिससे शहरियों का काफी राहत मिली। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद किए गए, जिसमें कहा गया था कि ईरान की ताजा हमलों से जंगबंदी मौसर तौर से खत्म हो गई है। सदर ट्रंप ने ईरान पर इल्जाम लगाया कि वह अब नए हुर्मुज में तिजारती जहाजों पर हमले कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के ताजा हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए हैं। उन्होंने इस बात के लिए भी खबरदार किया कि अगर ईरान ने मजीद हमले जारी रखे तो वाशिंगटन और ज्यादा सख्ती से जवाबी कार्रवाई करेगा और ईरानी हमलों का सख्त जवाब देगा। भारत के अर्नब पार

0: अरकन ने 36 साल में विमंडल जूनियर 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनकर तारीख रकम की है। 18 साल पापरकर ने क्वार्टर फाइनल में महज 52 मिनट में जापान के रियो तबाता को 6-2, 6-1 से हराया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया फैसल। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 3 रोजा सरकारी दौरे की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इंकलाब ने सुर्खी लगाई है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। वजीर आजम का यह दौरा भारत ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात को एक नई समत देगा। रोजनामा प्रताप ने कई रियासतों में मूसलाधार बारिश की खबर को नुमाया तौर पर शाया करते हुए सुर्खी लगाई है, मानसून ने पकड़ी रफ्तार, दिल्ली एनसीआर में बारिश शुरू, मुंबई से उत्तर प्रदेश तक संगीन सूरत हाल। वजीर दाखिला ने 3 रियासतों के वज़राए आला से फोन पर बात करके मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। रोजनामा इनकलाब ने अपने आलमी सफ़े पर एक अहम खबर को सुर्खी बनाया है, मशरक़ वस्ता में फिर जंग के खतरात, सदर ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी मुआहदा खत्म किया। अखबारात की अहम बैनुल अक़वामी खबरें इस तरह है, विजय दिवस से पहले फौज ने कारगिल के जाबाजों को याद किया, नायब सदर जमहूरिया आज 1 रोजा दौरे पर उड़ीसा जाएंगे।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब एंथोनी अल्बानीज आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया के सीओज फोरम में शरीक हुए। दोनों लीडरों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से भी मुलाकात की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने मनसब एंथोनी अल्बानीज के साथ भी मुजाकरात करेंगे। मरकज ने किसानों के मफादात के तहफ़ के लिए तमिलनाडु में किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीदारी को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में असातज़ा के साथ साथ गैर तदरीसी अमले के लिए सेहत की कैशलेस स्कीम शुरू की है। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले सदर ट्रंप के बयान के बाद किए गए हैं, जिसमें सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के ताजा हमलों से जंगबंदी खत्म हो गई है। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: माल पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार का निर्णय, पटना से गयाजी, आरा, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय के बीच रैपिड रेल सेवा शुरू की जाएगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इंटरनेट पर युवाओं को उकसाने के मामले में बिहार समेत 10 राज्यों में एक साथ छापेमारी की। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए एक समान शुल्क लिया जाएगा। और मौसम विभाग का गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिले में आज अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट। भोजपुर, बक्सर, सारण, सीवान तथा किशनगंज जिले में भी भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पटना से गयाजी, आरा, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय के बीच रैपिड रेल सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS बनेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को दी गई है। इस पर 31 करोड़ 59 लाख रुपए खर्च होंगे। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि प्रमुख शहरों के बीच परिवहन व्यवस्था को तेज करने के लिए यह फैसला लिया गया है।
1: चार कॉरिडोर हैं, पटना गयाजी कॉरिडोर पहला है, दूसरा है पटना एयरपोर्ट बेगूसराय कॉरिडोर, तीसरा है पटना हाजीपुर से प्रस्तावित सोनपुर एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर कॉरिडोर और चौथा कॉरिडोर है पटना एयरपोर्ट से आरा कॉरिडोर। तो ये चार कॉरिडोर के लिए रैपिड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS की स्वीकृति दी गई है। अभी यह यूपी में कुछ शहरों को कनेक्ट करता है।
0: एक अन्य फैसले में राज्य सरकार ने 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत बेरोजगारी भत्ता यानी मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना को 2026-27 से मार्च 2031 तक लागू रहने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि इसके तहत वर्ष 2026-27 के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च करने की सहमति दी गई है।
1: मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को अगले 5 वर्षों वित्तीय वर्ष 26-27 से 30-31 तक विस्तारित करने तथा इस पर वित्तीय वर्ष 26-27 में कुल 300 करोड़ रुपए व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
0: कैबिनेट ने प्रदेश में दूध उत्पादकता के साथ ही गुणवत्ता सुधारने के लिए बल्क मिल्क कूलर, दूध मिलावट जांच मशीन और डाटा प्रोसेसिंग मिल्क कंट्रोल यूनिट लगाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। इसके तहत राज्य में 1000 से अधिक डाटा प्रोसेसिंग मिल्क कंट्रोल यूनिट और 80 दूध मिलावट जांच मशीन लगाई जाएगी। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही के अंकेक्षण के लिए सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी के गठन की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने कुल 22 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने इंटरनेट पर युवाओं को उकसाने के मामले में बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और गुजरात समेत

0: राज्यों में एक साथ छापेमारी की। ये छापेमारी ISIS और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों की विचारधारा को बढ़ावा देने और सरकार के खिलाफ साजिश की जांच के क्रम में की गई है। इस दौरान टीम ने कई डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए हैं। इस मामले में अब तक 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक वर्षीय और 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए एक समान शुल्क लिया जाएगा। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने इस संबंध में यूनिफॉर्म ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशंस 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों में वर्ष 2018 से लागू चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CDCS के पुराने नियम समाप्त हो गए हैं। हालांकि बिहार कृषि विश्वविद्यालय, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, नालंदा खुला विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय पर ये नियम लागू नहीं होंगे। इधर राज्यपाल ने अंगीभूत महाविद्यालयों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के तबादले के लिए पोर्टल आज से खुल जाएगा। इसके माध्यम से शिक्षक मनपसंद विद्यालयों में स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने गोपालगंज में पत्रकारों से कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार ने मनचाहा स्थानांतरण की नीति बनाई है। उन्होंने कहा कि तबादले के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के औचक निरीक्षण के बाद 2 चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पटना में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि निरीक्षण के क्रम में एक डॉक्टर निर्धारित समय पर ड्यूटी पर नहीं पहुंचे थे, जबकि दूसरे डॉक्टर पर मरीज को जांच के लिए अपने निजी क्लिनिक भेजने का आरोप है।
1: मैं गया था LNJP, वहाँ पे एक डॉक्टर थे, नहीं आए 3 बजे तक उनकी ड्यूटी। वो गया था 3 बजे तक, नहीं आए 2 बजे तक ही उन्हें आ जाना चाहिए था। फिर हमने उन्हें फोन भी किया तो वो अपना रीजन बताने लगे, तो उसमें मैं कार्यवाही कर रहा हूँ, वो अपना शो कॉज देंगे। और हमारे डॉक्टर हैं, उन्होंने अपने प्रिस्क्रिप्शन पे लिख दिया अपने निजी क्लिनिक में कि वहाँ जाकर आप जाँच करा लीजिए, तो उनपे भी कार्यवाही करेंगे हम।
0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ EPFO खातों में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत IT सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खाते में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

आकाशवाणी एट 90.90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। उत्तर बिहार में जहां अच्छी बारिश हो रही है, वहीं दक्षिण बिहार में कम बारिश के चलते उमस और गर्मी का असर एक बार फिर बढ़ गया है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिले में अत्यधिक भारी बारिश, जबकि भोजपुर, बक्सर, सारण, सीवान, पूर्वी चंपारण और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश का पूर्वानुमान है।
1: राज्य के गोपालगंज एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात तथा अत्यधिक भारी वर्षा के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के

0: भोजपुर, बक्सर, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, सारण एवं सिवान जिलों में मेज गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों अरिया, अरवल, औरंगाबाद, भभुआ, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सुपौल जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज, अररिया, सुपौल और पूर्णिया जिले में भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। शेष स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई। सबसे अधिक किशनगंज के चरघरिया में 178.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पार्टी मुख्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पार्टी की संगठनात्मक मजबूती के लिए कई निर्देश दिए हैं। वहीं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने प्रदेश की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। पार्टी की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार 12 प्रदेश उपाध्यक्ष, 38 प्रदेश महासचिव और 74 प्रदेश सचिव मनोनीत किए गए हैं। विधान पार्षद नीरज कुमार को फिर से पार्टी का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया है, जबकि 9 अन्य व्यक्तियों को प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। रिजर्व बैंक ने बताया है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा सोने के आभूषणों के बदले दिए गए ऋण में इस वर्ष मई महीने में लगभग 70% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। मई के अंत तक ऐसे ऋण बढ़कर लगभग 3,30,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। रिजर्व बैंक ने बताया कि खुदरा ऋण में भी लगभग 19.5% की वृद्धि हुई है। वहीं कृषि और संबंधित क्षेत्रों को दिए गए ऋण में लगभग 18% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि उद्योग और सेवा क्षेत्र में ऋण वृद्धि की रफ्तार धीमी रही। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 10 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड श्रृंखला में फिलहाल 2-0 से आगे है और श्रृंखला में बने रहने के लिए भारत को यह मैच जीतना आवश्यक होगा। इससे पहले तीसरे मैच में भारत को इंग्लैंड से 125 रन से हार का सामना करना पड़ा था। रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता के आगामी सत्र में बिहार अपने घरेलू मैच राजगीर क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगा। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव जियाउल आरफीन ने बताया कि पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में पुनर्निर्माण कार्य जारी रहने के कारण राजगीर मैचों की मेजबानी करेगा। इसके लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी गई है। रणजी ट्रॉफी एलिट ग्रुप कैलेंडर के अनुसार बिहार उत्तर प्रदेश के खिलाफ पहला मैच 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक और दूसरा मैच मौजूदा रणजी एलिट चैंपियन जम्मू कश्मीर के खिलाफ 17 जनवरी से 20 जनवरी तक खेलेगा, जबकि तीसरा मुकाबला 24 फरवरी से 27 फरवरी तक विदर्भ के खिलाफ खेला जाएगा। भोजपुर जिले के शाहपुर में कथित पुलिस मुठभेड़ में भरत तिवारी की मौत मामले की जांच तेज हो गई है। पुलिस ने मृतक के परिजनों का बयान बतौर साक्ष्य न्यायालय में अंकित कराया है। भरत तिवारी की मां, भाई समेत 3 लोगों के बयान अंकित कराए गए हैं। इधर न्यायिक आयोग ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में विशेष छापेमारी अभियान चलाकर पुलिस ने भारी मात्रा में नेपाली शराब के साथ 19 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से चोरी की 4 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी, पिकअप वैन, मोबाइल और कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। नवादा केंद्रीय विद्यालय का संचालन शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कन्हाई नगर स्थित राजकीय कृत इंटर विद्यालय परिसर में होगा। जिलाधिकारी रवि प्रकाश ने बताया कि प्रथम चरण में कक्षा 1 से 5 तक पठन पाठन संचालित होगा। मधुबनी जिले के फूलपरास थाना क्षेत्र से पुलिस ने 13 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी अखबारों ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसलों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है, पटना से सूबे के 4 शहरों में रैपिड रेल सेवा शुरू होगी। दैनिक जागरण ने अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े विवाद पर लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर संग्राम, हॉर्मुज में 3 जहाजों को निशाना बनाए जाने के बाद अमेरिका ने किया हमला। दैनिक भास्कर लिखता है, बिहार में 946 स्कूल बढ़े पर दाखिला 4,37,037 कम हुआ। प्रभात खबर ने लिखा है, फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाले 3,035 शिक्षकों की जाएगी नौकरी, वेतन भी सूद समेत वसूला जाएगा। आज अखबार

0: लिखता है बिहार में 1497 संदिग्ध फार्मासिस्टों का पंजीकरण रद्द। राष्ट्रीय सागर का शीर्षक है 2027 में नीट परीक्षा 6 दिन चलेगी, कंप्यूटर बेस्ड होगी परीक्षा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार का निर्णय, पटना से गया जी, आरा, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय के बीच रैपिड रेल सेवा शुरू की जाएगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इंटरनेट पर युवाओं को उकसाने के मामले में बिहार समेत 10 राज्यों में एक साथ छापेमारी की। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए एक समान शुल्क लिया जाएगा। और मौसम विभाग का गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिले में आज अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट, भोजपुर, बक्सर, सारण, सीवान तथा किशनगंज जिले में भी भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर।

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी पटना दरभंगा है। पेश है उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।

0: चलते हैं अगली पेशकश की जानिब। और अब पेश है एक अफसाना, मौजू है ताबीर से परे। अफसाना निगार हैं जनाब उजैर अंजुम, मुलाहिज़ा हो।
1: कभी कभी इंसान की जिंदगी एक ऐसे मंजर में बदल जाती है जहां जागती आंखें भी सच और फरेब के दरमियान मुअल्लक रहती हैं। दिल के किसी गोशे में उम्मीद की एक किरण जागती है मगर वक्त की गर्द उसे धुंधला देती है। हर सुबह जैसे नया आगाज बनकर आती है लेकिन शाम के ढलते ही वही पुरानी थकन, वही ख्यालीपन लौट आता है। इंसान जीता तो है मगर एक अनजाने सफर में जैसे खुद को तलाश करता रहता है। ख्वाहिशें जिनके सहारे वो जीता है रफ्ता रफ्ता बोझ बनने लगती हैं। कुछ वादे अधूरे रह जाते हैं, कुछ जज्बे वक्त के साथ मात पड़ जाते हैं और कुछ यादें दिल के अंदर ऐसे जम जाती हैं जैसे जख्म पर पुरानी धूल। लम्हे गुजर जाते हैं मगर अंदर की खामोशी बढ़ती जाती है। हर गुजरने वाला दिन एक सवाल छोड़ जाता है, क्या जिंदगी वाकई बेदारी है या ये सब महज एक लामहदूद धुंध का हिस्सा। कभी कभी ऐसा लगता है कि इंसान खुद अपनी तमन्नाओं का कैदी बन जाता है और इन मंजरनामों में चलता रहता है जो उसने दिल में बसाए थे मगर मंजिल कहीं दिखाई नहीं देती। एहसासात की नरमी भी बोझ बनने लगती है और सांसें एक अनजानी उदासी में घुलने लगती हैं। वक्त इस सफर में वो हर चीज को छूता है मगर कुछ भी उसका नहीं रहता। आखिरकार इंसान इसी जुस्तजू में महो रहता है कि कोई ताबीर, कोई बेदारी उसे उस बेनाम सफर से आजाद करे मगर शायद यही तलाश, यही उम्मीद, यही भटकना उसकी जिंदगी की असल कहानी है। वो चलता रहता है एक ऐसी राह पर जहां न ख्वाब बाकी रहते हैं न हकीकत, सिर्फ एक एहसास कि वो खुद अपने ही बनाए मनाजिर का मुसाफिर है। सलमान एक अजीब व गरीब फिक्र का इंसान था। अजीब इस माना में कि उसकी दुनिया दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। लोग शोर मचाते, महफिलें जमाते, दुनियावी गुफ्तगू में उलझे रहते लेकिन सलमान के लिए ये सब गोया शोरगुल का जंगल था जिससे बच निकलने को वो हमेशा बेकरार रहता। वो खामोश मिजाज था, कम बोलता और ज्यादा सोचता। उसकी आंखों में बज़ाहिर सादगी थी मगर अगर कोई गहरी नजर से देखता वो तो साफ महसूस करता कि वहाँ एक वसी कायनात आबाद है। वो कायनात जिसमें रंग ज्यादा थे, खुशबुएं ज्यादा थी और उम्मीदें ऐसी थी जो कभी बुझती नहीं थी। बचपन ही से वो दूसरों से अलग दिखाई देता। स्कूल के दिनों में जब सब लड़के दोपहर के वक्फे में खेल के मैदान में दौड़ लगाते, चीखते हंसते ज़मीन पर लोट पोट होते, सलमान अक्सर किसी दरख्त के साए में बैठा हुआ होता। उसके हाथ में कभी किताब होती, कभी वो किसी नामालूम ख्याल में गुम आसमान की वसतों में ताक रहा होता। उस्ताद हैरत से उसके अंदर झांकते मगर न वो कुछ कहता न अपनी दुनिया से बाहर निकलने की कोशिश करता। गोया उसे अपनी ही खामोशी में सुकून मिलता था। उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा उसके ख्वाब थे। ख्वाब उसके लिए किसी खेल या वक्ती खुशी का जरिया नहीं थे बल्कि ज़िंदगी की असल कुव्वत थे। वो जागती आंखों से ख्वाब देखने का आदी था। कभी वो ख्वाब देखता कि वो एक हरे भरे बाग में है जहाँ फूलों की महक उसके दिल को खुशबू से भर देती है। कभी खुद को एक पहाड़ी पर खड़ा पाता जहाँ नीचे पूरी वादी रोशनियों से जगमगा रही है। कभी परिंदों के साथ परवाज करता, कभी समंदर की गहराई में उतर कर रंग बिरंगी मछलियों के दरमियान तैरता। उसके ख्वाब तस्वीरें नहीं थे बल्कि उसके वजूद का वो हिस्सा थे जो उसकी सांसों को मानवियत बख्शता। उसको यकीन था कि ख्वाब महज ख्याली नहीं होते। वो कहता था अगर दिल की गहराई

जैसी कोई ख्वाब देखा जाए तो एक दिन हकीकत का रूप ज़रूर धारता है। वो उन ख्वाबों को संभाल कर रखता, उनसे कुव्वत लेता और इन्हीं में जीने का सहारा ढूंढता। वक्त गुजरता गया, दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने बरसों में ढलते गए, मगर सलमान की आंखों की रोशनी मद्धम न हुई। वो अब भी हर दिन एक नया ख्वाब देखता और हर रात एक नई उम्मीद के साथ पलके बंद करता। मगर जिंदगी हमेशा ख्वाबों के मुताबिक नहीं चलती। एक दिन उसने महसूस किया जैसे फजा में एक बेरहम आंधी चल पड़ी हो। वो ख्वाब जिन्हें उसने बड़ी मेहनत से सींचा था, बिखरते बादलों की तरह उड़ने लगे। अचानक उसने खुद को एक तारीक कुएं में गिरते पाया। लम्हे भर को चौंक उठा, संभलने की कोशिश की, मगर अंधेरे ने उसका दम घोंट लिया। कुआं इतना गहरा था कि ऊपर आसमान की सिर्फ एक बारीक सी झलक दिखाई देती थी। दीवारें नम थीं, ठंडक हड्डियों में उतर रही थी और खामोशी इतनी गहरी थी कि अपने दिल की धड़कन भी किसी अजनबी आवाज़ की तरह सुनाई देती। वहाँ बैठे बैठे उसके दिल में सवालात उठने लगे। क्या ये सब फकत ख्वाब थे? क्या ख्वाबों की ताबीर महज एक फरेब है? क्या मेरी सारी मेहनत, सारी चाहतें, सब उम्मीदें इसी अंधेरे में दफन होने के लिए थीं? वो कुएं की दीवारों को पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, नाखून टूट जाते, हाथ जख्मी होते। कई बार वो ऊपर जाने के करीब पहुंचता मगर अचानक फिसल कर नीचे आ गिरता। वो चीखता पुकारता मगर जवाब में सिर्फ अपनी आवाज की बाजगश्त सुनता। रफ्ता रफ्ता वो थक गया, जिस्म में ढाल हो गया, रूह जख्मी और दिल शिकस्ता। मगर सलमान के दिल में एक दिया अब भी जल रहा था, वो दिया जिसे उम्मीद कहते हैं। वो चाहे कितना ही बोझल हो जाता मगर पलके बंद करते ही फिर उन्हीं हसीन वादियों में पहुंच जाता जहां ख्वाब सांस लेते थे और हकीकतें सो रही थीं। यही ख्वाब उसके जख्मों पर मरहम रखते, यही ख्वाब उसे जीने का हौसला देते। वक्त गुजरता रहा, एक दिन वो चौंक कर उठा और हैरान रह गया कि वो कुएं के किनारे खड़ा है। उसे यकीन ना आया कि ये कैसे मुमकिन हुआ। किसने उस अंधेरे से बाहर निकाला? उसके दिल ने कहा, यह सिर्फ एक मोजज़ा था। उसने वहीं बैठकर आंखों में नमी लिए अल्लाह का शुक्र अदा किया। बरसों बाद उसे लगा कि वो कैद से आज़ाद हुआ, वो नई जिंदगी के दिहाने पर है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सलमान ने पलकें झपकी तो खुद को फिर इन्हीं ख्वाबों की वादी में पाया। इस बार मंजर बदला हुआ था। ख्वाब टूटे फूटे नहीं थे बल्कि मुकम्मल थे। रोशनी हर तरफ फैली हुई थी, खुशबुएं चारों सू बिखरी हुई थी, रंग आंखों को खैरा कर रहे थे। और उसे लगा जैसे उसकी सारी दुआएं, सारी तमन्नाएं अब पूरी हो चुकी हैं। वो खुशी से मुस्कुरा दिया, दिल की धड़कन एक नए नगमे में ढल गई। इसी दौरान कई आवाज़ें सुनाई दीं, कभी धीमी सरगोशियाँ, कभी मध्यम आहटें, कभी किसी के कदमों की चाप। मगर सलमान इन सब से बेपरवाह अपने ख्वाबों के आंगन में मस्त था। उसे लगा कि अब कोई अंधेरा बाकी नहीं रहा, मगर ख्वाब ख्वाब ही होते हैं। अचानक किसी ने उसे जोर से धक्का दिया। धक्का इतना शदीद था कि वो संभल न सका। लम्हे भर में सब कुछ अंधेरे में ढल गया। धम, एक भारी आवाज गूंजी और सलमान बहुत नीचे जा गिरा। इस बार जब उसने आंख खोली तो सांस जैसे रुक गई। अब वो कुएं में नहीं बल्कि गहरी खाई में था और ऊपर उफक पर एक धुंधली सी परछाई नजर आ रही थी। वही परछाई जो बरसों पहले उसे कुएं में ढकेल चुकी थी, आज फिर आई थी और उसे खाई में गिरा चुकी थी। इस एक मंजर ने सब कुछ बदल दिया। ख्वाबों के सारे रंग, खुशबुएं, रोशनी सब लम्हों में काफूर हो गए। सलमान खामोश पड़ा रहा, न चीखा न रोया। उसकी सांसें लरजती रहीं, लब कपकपाते रहे।

0: कपकपाते रहे और आंखें खला में जाकर टिक गईं। वो सोचने लगा कि शायद अब वो खुद एक ख्वाब बन चुका है, वो ख्वाब जिसकी कोई ताबीर नहीं, जिसकी कोई हकीकत नहीं, और शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा राज है कि ख्वाब हमेशा ख्वाब ही रहते हैं।
1: सामीन आप सुन

0: ख्वाब ही रहते हैं।
1: सामीन, आप सुन रहे थे अफसाना, मौजूद था ताबीर से परे। अफसाना निगार थे जनाब उज़ैर अंजुम। अब चलते हैं शेर व शायरी की जानिब, और कलाम शायर के तहत आज अपना कलाम लेकर हाजिर खिदमत हैं जनाब मोहम्मद इसरार आलम, आपकी समहतों के हवाले।
2: एक नज्म पेश कर रहा हूं जिसका मतलब है, आओ मिलजुल के बढ़ें शान ए तदबीर लिए, आओ मिलजुल के बढ़ें शान ए तदबीर लिए, हम न बैठेंगे कभी शिकवे तकदीर लिए, हम न बैठेंगे कभी शिकवे तकदीर लिए। हर कोई दिल में यही अज़्म मुसम्मम कर ले, हर कोई दिल में यही अज़्म मुसम्मम कर ले, हर कदम अपना उठे जज्बे तामीर लिए, हर कदम अपना उठे जज्बे तामीर लिए, हम न बैठेंगे कभी शिकवे तकदीर लिए। और शेर अर्ज़ किया है कि हुस्न तदबीर से हो रश्क इरम खाक वतन, हुस्न तदबीर से हो रश्क इरम खाक वतन, अपनी कोशिश का हर एक जर्रा होता भीर लिए, अपनी कोशिश का हर एक जर्रा होता भीर लिए, हम न बैठेंगे कभी शिकवे तकदीर लिए। और ये शेर देखिए कि भाईचारे की जड़ें गहरी से गहरी कर दो, भाईचारे की जड़ें गहरी से गहरी कर दो, सारे आलम में फिरो हिंद की तौकीर लिए, सारे आलम में फिरो हिंद की तौकीर लिए, हम न बैठेंगे कभी शिकवे तकदीर लिए। मुत्तहिद हो के सफारा अगर हो जाएं हम, मुत्तहिद हो के सफारा अगर हो जाएं हम, भाग जाएंगे उदू खंजर व शमशीर लिए, हम न बैठेंगे कभी शिकवे तकदीर लिए। और आखिरी शेर है कि परचमे अमन उठाने की फिर आई है सदा, परचमे अमन उठाने की फिर आई है सदा, सरबकफ हो के चलो जोश हमागीर लिए, सरबकफ हो के चलो जोश हमागीर लिए, हम न बैठेंगे कभी शिकवे तकदीर लिए। और मकता है कि फ़िरका बंदी की सियासत में न पढ़ना सैफ़ी, फ़िरका बंदी की सियासत में न पढ़ना सैफ़ी, लाख सयाद फिरे हलक़े जंजीर लिए, लाख सयाद फिरे हलक़े जंजीर लिए, हम न बैठेंगे कभी शिकवे तकदीर लिए। और इससे पहले कि अपनी गज़ल पेश करूं, एक क़िता सुनिए कि आमिले वेद या क़ुरान कहाँ मिलते हैं, आमिले वेद या क़ुरान कहाँ मिलते हैं, आदमी साहेब ईमान कहाँ मिलते हैं, आदमी साहेब ईमान कहाँ मिलते हैं, बात तो दीन और मज़हब की सभी करते हैं, बात तो दीन और मज़हब की सभी करते हैं, नेक हिंदू या मुसलमान कहाँ मिलते हैं, आदमी साहेब ईमान कहाँ मिलते हैं। और गज़ल जो गालिब की ज़मीन में है उसका मतलब है कि वजह बेचैनी ऐ सबा क्या है, वजह बेचैनी ऐ सबा क्या है, क्यों है मगमूम माजरा क्या है, क्यों है मगमूम माजरा क्या है, और आग पानी ज़मी हवा क्या है, आग पानी ज़मी हवा क्या है, ज़िंदगी क्या है और फिना क्या है, ज़िंदगी क्या है और फिना क्या है, यक नफस दो नफस की मोहलत है, यक नफस दो नफस की मोहलत है, ज़िंदगी इसके माँ सिवा क्या है, ज़िंदगी इसके माँ सिवा क्या है। अब बस मोहब्बत ही तेरी मांगी थी, बस मोहब्बत ही तेरी मांगी थी, ये ख़ता है तो फिर वफा क्या है, ये ख़ता है तो फिर वफा क्या है। और आखिरी शेर है कि है खुदाई तेरी खुदी में गुम, है खुदाई तेरी खुदी में गुम, अब पूछते फिर भी हो खुदा क्या है, पूछते फिर भी हो खुदा क्या है, क्यों है मगमूम माजरा क्या है। और मकता मुलाहजा कीजिए कि माल औलाद जाह सब सैफी, माल औलाद

हैं सब मनाजिर दीदे नमनाक में, है जहाने शौक में सामान वहशत इस कदर, है जहाने शौक में सामान वहशत।

जरा भी कूचे सफाक में। और शेर मुलाहजा कीजिए कि मेरे उसके दरमियां भी फर्क कायम है वही,

दुश्मन बने जो दरमियां हैं ताक में, अमने के दुश्मन बने जो दरमियां हैं ताक में। और मक्ता का शेर है,

0: कितने हैं?
1: कलाम शायर के तहत अपना कलाम पेश कर रहे थे जनाब मोहम्मद इसरार आलम। सामिन, अब चलते हैं बज़्म मौसीकी की जानिब, और बज़्म मौसीकी में पेश खिदमत है ये खूबसूरत सी गज़ल। आवाज़ है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की, और उनके हमनवा विनोद सहगल, और कलाम है मिर्ज़ा गालिब का।

0: ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, अर्ज किया है रगों में तोड़ते फिरने के हम नहीं कायल,
1: रगों में तोड़ते फिरने के हम नहीं कायल, बहुत
0: रगों में तोड़

उर्दू प्रोग्राम अंजुमन अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए फिल्म बनवास का ये गीत, सोनू निगम, श्रेया घोषाल और मिथुन की आवाज़ों में। सईद कादरी की रचना है, संगीत दिया है मिथुन ने।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: बॉर्डर 2, इस फिल्म का गीत सुनिए सोनू निगम की आवाज में। मनोज मुंतशिर की रचना है, संगीत दिया है मिथुन ने।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बागी 4, इस फिल्म का गीत सुनिए स्टेविन बेन की आवाज में। समीर अंजान की रचना है, संगीत दिया है सिद्धांत मिश्रा ने।

धड़क टू इस फिल्म का गीत सुनिए विशाल मिश्रा की आवाज़ में। रश्मि बिराग के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है जावेद मोहसिन ने।

0: द फैमिली स्टार इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे हरजोत कौर की आवाज़ में। रश्मि विराग की रचना थी, संगीत दिया था गोपी सुंदर ने। इसके साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: फंसी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए हरिहरण के स्वर में भजन और चंदन कुमार श्रीवास्तव के स्वर में गजल। पहले आइए सुनते हैं हरिहरण की आवाज में ये भजन।

आकाशवाणी पटना से अभी आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हरिहरन की आवाज़ में भजन। अब आइए सुनते हैं चंदन कुमार श्रीवास्तव के स्वर में गजल।

चंदन कुमार श्रीवास्तव के गाए इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए फिल्म आँखियों के झरोखों से का ये गीत, हेमलता की आवाज में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

चोरी चोरी चुपके चुपके इस फिल्म का गीत सुनिए, अलका याज्ञिक और बाबुल सुप्रियो की आवाज़ों में। समीर की रचना है, संगीत दिया है अनु मलिक ने।

अब आइए अलका याग्निक और कुमार सानू को सुनते हैं फिल्म सोल्जर में। समीर की रचना है, संगीत दिया है अनु मलिक ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीत। कलाकार हैं प्रमोद कुमार पंकज और इनके साथ संगत कर रहे हैं हारमोनियम पे ओम प्रकाश चौबे, ढोलक पे हैं रविंद्र कुमार, बांसुरी पे मोहम्मद सरफुद्दीन, कंसी पे हैं राजन दास।

0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत। कलाकार थे प्रमोद कुमार पंकज, संगत कलाकार थे हारमोनियम पे ओम प्रकाश चौबे, ढोलक पे रविंद्र कुमार, बांसुरी पे मोहम्मद सरफुद्दीन, कंसी पे राजन दास। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी जगत।
1: नारी जगत सुनने वाली हमारी सभी श्रोता बहनों को आपकी रेडियो साथी सुरभि का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, प्रकृति जीवन देती भी है और समय समय पर हमें उसकी शक्ति का एहसास भी कराती है। ऐसे ही एक गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे जो है बाढ़ और आपदा बचाओ। बाढ़ भारत में आने वाली सबसे सामान्य प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। अत्यधिक वर्षा, नदियों का जलस्तर बढ़ना, बांधों से पानी छोड़ा जाना तथा जल निकासी की उचित व्यवस्था न होना इसके प्रमुख कारण हैं। बाढ़ केवल खेतों और घरों को ही नहीं बल्कि लोगों के सपनों, आजीविका और जीवन को भी गहरा नुकसान पहुंचाती है। ऐसी स्थिति में केवल सरकार या प्रशासन ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की जागरूकता भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान देना, सुरक्षित स्थानों पर समय रहते पहुंचना, आवश्यक दवाइयाँ, पीने का पानी, सूखा भोजन और जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखना, ये सभी आपदा से बचाव के महत्वपूर्ण उपाय हैं। बाढ़ के दौरान तेज बहते पानी में प्रवेश नहीं करना चाहिए और बिजली के उपकरणों से भी सावधानी बरतनी चाहिए। आपदा के समय बचाव दल, प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाएं और स्थानीय लोग मिलकर राहत कार्य करते हैं। ऐसे समय में धैर्य, अनुशासन और एक दूसरे की सहायता की भावना सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। बहनों, प्राकृतिक आपदाओं को पूरी तरह से रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन सही तैयारी, जागरूकता और सामूहिक प्रयास से उनके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है, क्योंकि संकट की घड़ी में सबसे बड़ा सहारा केवल संसाधन नहीं बल्कि हमारी सजगता, एकता और मानवता होती है। बाढ़ और आपदा हमें ये सिखाती है कि प्रकृति के सामने मनुष्य को हमेशा सजग और तैयार रहना चाहिए। प्रकृति का हर रूप हमें कोई ना कोई सीख जरूर देता है। कभी वही बारिश बाढ़ बनकर हमें सावधानी और एकता का संदेश देती है, तो कभी वही बारिश की फुहारें जीवन में नई ऊर्जा, नई उमंग का संचार करती है। वैसे बहनों, बारिश आते ही हमारे दिनचर्या में कई बदलाव स्वतः दिखाई देने लगते हैं, है ना? भीषण गर्मी से राहत मिलती है, वातावरण ठंडा और ताजगी भरा हो जाता है। छाता, रेनकोट, ये सब हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन जाते हैं। या यूं कहें कि

बारिश में जीवन शैली ही बदल जाती है। इस मौसम में खान पान की आदतें भी बदलती हैं। गर्मा गर्म चाय पकौड़े, भुट्टा और सूप का स्वाद मौसम को और भी सुहाना बना देता है। लेकिन इसके साथ साथ स्वच्छ भोजन और उबला या शुद्ध पानी भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि बरसात में संक्रमण और जल जनित बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। यही वो समय है जो हमें जल संरक्षण, स्वच्छता और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास कराता है। जल भराव वाले क्षेत्रों से बचना, बिजली गिरने के समय खुले स्थानों में न रुकना और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। अंततः बारिश हमें ये भी सिखाती है कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए जीवन में लचीलापन, अनुशासन और प्रकृति के प्रति सम्मान बनाए रखना ही सच

हमारी जिम्मेदारी है। अंततः बारिश हमें ये भी सिखाती है कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए जीवन में लचीलापन, अनुशासन और प्रकृति के प्रति सम्मान बनाए रखना ही सच्ची जीवन शैली है, और यही जीवन शैली हमारे जीवन को और भी सुंदर बना सकती है, बिल्कुल उस बारिश की तरह। बरसी बादल महके धरा, हर मन में उल्लास रहे। बरसे बादल महके धरा, हर मन में उल्लास रहे। हर बारिश खुशियां लाए, हर आंगन मधुमास रहे।

0: इस प्यारे से गीत के साथ अब आइए बहनों सुनते हैं वार्ता, जिसका विषय है बढ़ती जनसंख्या और मनचाहा परिवार की आजादी। वार्ताकार हैं रश्मि कुमारी।
1: आज के आधुनिक युग में विकास और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। एक तरफ जहां वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती जनसंख्या एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ हर नागरिक को मनचाहा परिवार बनाने और अपने जीवन के फैसले खुद लेने की बुनियादी आजादी भी प्राप्त है। इन दोनों पहलुओं के बीच गहरा संबंध है और यह विषय व्यक्तिगत अधिकारों तथा सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच के संतुलन को दर्शाता है। कुछ समय पूर्व जब मैं शहर के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन के एक किनारे खड़ी थी, तो मेरे सामने से गुजरता हुआ इंसानों का वह अथाह समंदर मुझे गहरे विचार में डाल गया। ट्रेन के डिब्बों से बाहर लटकते लोग, प्लेटफॉर्म पर अपने सामान के साथ जमीन पर बैठे परिवार और जीवन की जद्दोजहद में भागते दौड़ते चेहरे, चारों ओर बस एक ही चीज का साम्राज्य था, भीड़। यह महज एक स्टेशन का नजारा नहीं था, बल्कि यह हमारे देश और दुनिया की उस वर्तमान वास्तविकता का एक छोटा सा अक्ष था जिसे हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। उस भीड़ को देखते हुए मेरे मन में एक अजीब सी उलझन पैदा हुई। एक तरफ तो यह अनियंत्रित बढ़ती हुई आबादी है जो हमारे संसाधनों, हमारी धरती और हमारे भविष्य को निगलने के लिए तैयार खड़ी है, और दूसरी तरफ एक इंसान की वह बेहद निजी, कोमल और स्वाभाविक इच्छा है अपना एक परिवार बसाने की। इन दोनों के बीच का यह द्वंद्व

मुझे इस बात को सोचने को मजबूर कर गया कि क्या बढ़ती जनसंख्या के इस डरावने दौर में किसी भी इंसान को अपना मनचाहा परिवार बनाने की आजादी है, और अगर है तो उस आजादी की कीमत और जिम्मेदारी भी है। जब हम आज की दुनिया को देखते हैं तो हमें दो विपरीत धाराएं एक साथ बहती दिखाई देती हैं। एक तरफ दुनिया भर के मंचों पर यह चिंता जताई जा रही है कि हमारी आबादी के पैर जमीन से बाहर निकल रहे हैं, संसाधन कम पड़ रहे हैं और धरती पर दबाव बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आधुनिक दुनिया मानवाधिकारों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपनी मर्जी से जीने के अधिकार की बात करती है। क्या ये दोनों बातें एक दूसरे की दुश्मन हैं, या फिर इनके बीच एक ऐसा रास्ता भी है जो देश को भी समृद्ध बनाए और इंसान की आज़ादी को भी महफूज रखे? आज हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है। आबादी का बढ़ना अपने आप में कोई गुनाह नहीं है, बशर्ते हमारे पास उस आज़ादी को देने के लिए पर्याप्त संसाधन हो। लेकिन वास्तविकता क्या है? आज हम एक बेहद सीमित संसाधनों वाली धरती पर रह रहे हैं। पानी की किल्लत, हर साल घटती कृषि योग्य भूमि और हवा में घुलता प्रदूषण, यह सब इस बात का प्रमाण है कि हमारी धरती पर क्षमता से अधिक बोझ बढ़ रहा है। जब एक अनार और 100 बीमार वाली स्थिति होती है तो समाज में असमानता पैदा होती है। सरकारें चाहे जितनी भी नीतियां बना लें, जितनी भी योजनाएं लाएं, लेकिन जब आबादी की रफ्तार विकास की रफ्तार से तेज हो जाती है तो बुनियादी ढांचा चरमरा जाता है। पीढ़ियों से हमारे समाज में परिवार एक बहुत ही संकीर्ण और पूर्व निर्धारित परिभाषा रही है। एक लड़का और लड़की की शादी और शादी के साल 2 साल के भीतर घर में बच्चे की किलकारियां गूंजनी चाहिए और उसे कंपनी देने के लिए एक बच्चा और होना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया में उन दो लोगों से जो इस परिवार की नींव रख रहे हैं, शायद ही कभी यह पूछा गया हो कि क्या वे मानसिक, शारीरिक या आर्थिक रूप से इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं? सदियों से परिवार का निर्माण एक व्यक्तिगत चुनाव न होकर एक सामाजिक जिम्मेदारी और जैविक अनिवार्यता माना जाता रहा है। लेकिन आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि दुनिया बदल चुकी है। हवाओं में घुली जहरीली गैसें, सिकुड़ते हुए जंगल, पीने के पानी के लिए मचता हाहाकार और हर रोज छिनते रोजगार हमें यह चीख चीख कर बता रहे हैं कि धरती अब और बोझ सहने के लिए तैयार नहीं है। 8 अरब से ज्यादा लोगों की इस दुनिया में एक नया जीवन लाना अब केवल एक पारिवारिक उत्सव नहीं रह गया है, बल्कि यह एक बहुत ही बड़ा वैश्विक और पर्यावरणीय निर्णय बन चुका है। ऐसे में आज की युवा पीढ़ी अलग तरह के कश्मकश से गुजर रही है। वे आंख बंद कर सामाजिक रवायतों का पालन नहीं करना चाहती। वे सवाल पूछ रहे हैं, मनचाहा परिवार बनाने की आजादी। मनचाहा परिवार सुनने में शायद एक साधारण सा वाक्य लगे, लेकिन आज के संदर्भ में यह एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी अवधारणा है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी व्यक्ति या जोड़े को यह तय करने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए कि उनके परिवार का स्वरूप कैसा होगा। यह आजादी उन सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने की आजादी है जो कहती है कि शादी के बाद बच्चा तो होना ही चाहिए। मेरे एक करीबी दोस्त और उनकी पत्नी की कहानी इस बदलाव का एक खूबसूरत सा उदाहरण है। दोनों एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। शादी के 5 साल बाद जब रिश्तेदारों और पड़ोसियों के तानों की बौछार उन पर होने लगी कि अब तो घर में एक बच्चा होना चाहिए, तो उन्होंने एक पारिवारिक समारोह में बहुत शांति से सबको जवाब दिया कि हमने तय किया है कि हम बच्चे नहीं करेंगे, हम दोनों एक दूसरे के साथ पूर्ण हैं, यह हमारा परिवार है। यह सुनकर वहां मौजूद बुजुर्गों के चेहरे पर जो अविश्वास और नाराजगी थी वह देखने लायक थी। समाज के लिए यह समझना आज भी मुश्किल है कि एक परिवार बिना बच्चों के भी पूरा हो सकता है। इन जैसे लोग जिन्हें DIN के मतलब डबल इनकम नो किड्स कहा जाता है, अपनी आजादी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपना पैसा समाज के अन्य रचनात्मक कार्यों में लगा रहे हैं। उनका यह फैसला न केवल उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतीक है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से इस बढ़ती जनसंख्या के दबाव को कम करने में एक योगदान भी है। बढ़ती जनसंख्या एक दानव है जो हमारे दरवाजे पर खड़ा है।

0: नदियां सूख रही हैं, हवा जहरीली हो रही है, जंगलों की जगह कंक्रीट के जंगल ले रहे हैं और हर नौकरी के लिए हजारों उम्मीदवार कतार में खड़े हैं। ऐसे में बच्चे पैदा करना अब केवल एक निजी पारिवारिक मामला नहीं रह गया है, यह एक वैश्विक दायित्व है। सचेत पालन पोषण मतलब कॉन्शियस पेरेंटिंग आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। इसका अर्थ है कि जब हम एक बच्चे को दुनिया में लाएं, तो वह एक सचेत और पूरी तरह से सोचा समझा निर्णय हो, न कि कोई हादसा या सामाजिक दबाव का परिणाम। मनचाहा परिवार बनाने की आज़ादी वास्तव में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है। यह आज़ादी हमें यह सोचने का मौका देती है कि हम कैसा भविष्य चाहते हैं। अगर हर व्यक्ति यह समझ ले कि परिवार का मतलब केवल बच्चों की संख्या नहीं है, बल्कि उस परिवार के भीतर मौजूद प्रेम, शांति और गुणवत्ता है, तो शायद हम जनसंख्या की इस विकराल समस्या का समाधान अपने घरों के भीतर ही खोज सकेंगे। बढ़ती जनसंख्या की चुनौती को केवल सरकारी नीतियों या कानून के डंडे से हल नहीं किया जा सकता। इसका असली समाधान उस आज़ादी में छिपा है, जहां हर व्यक्ति को यह तय करने का हक हो कि वह अपना परिवार बनाना चाहता है। जब समाज मनचाहे परिवार के इस नए विस्तृत और समावेशी स्वरूप को दिल से स्वीकार कर लेगा, जहां बिना बच्चों वाले जोड़े, एक बच्चे वाले माता पिता, दत्तक ग्रहण करने वाले लोग और सिंगल पेरेंट्स सभी को समान सम्मान मिलेगा, तब जाकर हम न केवल इस धरती को एक बेहतर जगह बना पाएंगे, बल्कि मानवीय रिश्तों को भी उसकी सबसे शुद्ध और सुंदर परिभाषा दे पाएंगे। परिवार वह नहीं जो समाज हम पर थोपता है, परिवार वह है जिसे हम अपने दिल की आवाज़ सुनकर पूरी जिम्मेदारी और प्यार के साथ चुनते हैं। बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने और मनचाहा परिवार बनाने की दिशा में हम महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह दुनिया भर का आंकड़ा है कि जहां महिलाएं शिक्षित और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं, वहां जन्म दर अपने आप कम हो आती है और जागरूक महिला हमेशा छोटे और स्वस्थ परिवार को चुनती है। जब हम मनचाहा परिवार शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें यह समझ भी शामिल होनी चाहिए कि हमारा चाहा हुआ परिवार ऐसा हो जिसे हम एक अच्छा इंसान, अच्छी शिक्षा और एक बेहतर भविष्य दे सकें। बढ़ती जनसंख्या की समस्या का हल किसी की स्वतंत्रता को बंधक बनाकर नहीं, बल्कि हर नागरिक को जागरूक और जिम्मेदार बनाकर निकाला जा सकता है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें, जहां हर व्यक्ति के पास अपनी जिंदगी के फैसले लेने की आज़ादी हो, लेकिन वह फैसला स्वार्थ से नहीं, बल्कि समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना से प्रेरित हो।
1: बहनों, अभी आप सुन रही थी वार्ता जिसका विषय था बढ़ती जनसंख्या और मनचाहा परिवार की आजादी। वार्ताकार थी रश्मि कुमारी। वास्तव में बहनों, बढ़ती जनसंख्या आज एक महत्वपूर्ण चुनौती बन चुकी है। इसका प्रभाव शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास और प्राकृतिक संसाधनों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऐसे समय में ये जरूरी हो जाता है कि समाज के हर वर्ग तक विकास का लाभ समान रूप से पहुंचे। जब विकास की बात होती है, तो उसका वास्तविक अर्थ तभी पूरा होता है जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक अवसर और सुविधाएं पहुंचे। विशेष रूप से महिलाओं का सशक्त होना किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार है। खासकर अल्पसंख्यक महिलाओं की बात करें, तो उनके लिए कल्याण योजनाओं का उद्देश्य उन्हें शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और आर्थिक अवसरों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार द्वारा समय समय पर छात्रवृत्ति, कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार सहायता तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने जैसी अनेक पहल की जाती है, ताकि महिलाएं अपनी प्रतिभा के अनुरूप आगे बढ़ सकें। हालांकि केवल योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है, उनकी जानकारी सही लोगों तक पहुंचाना, योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और समाज की सकारात्मक भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है। परिवार और समुदाय यदि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे, तो वे अपने साथ साथ पोषण पूरे समाज

समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। बहनों, अल्पसंख्यक महिलाओं का सशक्तिकरण केवल एक वर्ग का विकास नहीं, बल्कि एक समावेशी, शिक्षित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। जब हर महिला को समान अवसर मिलेगा, तभी विकास की तस्वीर वास्तव में पूर्ण होगी। महिलाओं का सशक्तिकरण किसी योजना का अंत नहीं, बल्कि एक विकसित और समृद्ध समाज की शुरुआत है, क्योंकि नारी अब कमजोर नहीं, हर मुश्किल पर भारी है। नारी अब कमजोर नहीं, हर मुश्किल पर भारी है, सपनों को सच करने की अब पूरी तैयारी है। अब ना रोकेगा कोई तुम्हारे हौसलों की उड़ान को, अब ना रोकेगा कोई तुम्हारे हौसलों की उड़ान को, क्योंकि अब तेरी बारी है।

बहनों, ये तो हम सभी जानते हैं कि बारिश का मौसम प्रकृति का एक खूबसूरत उत्सव से कम नहीं। रिमझिम फुहारें धरती को हरियाली की चादर ओढ़ाती हैं, नदियों और तालाब को जीवन देती हैं, और एक तरह से देखा जाए तो कोई रंग नहीं होता बारिश के पानी में, फिर भी फिजा को रंगीन बना देता है। इसी ओर किसी ने क्या खूब कहा है, सतरंगी अरमानों वाले सपने दिल में पलते हैं, आशा और निराशा की धुन में रोज मचलते हैं। सतरंगी अरमानों वाले सपने दिल में पलते हैं, आशा और निराशा की धुन में रोज मचलते हैं। बरस बरस के बरसात सोचे प्यास मिटाई दुनिया की, बरस बरस के बरसात सोचे प्यास मिटाई दुनिया की, वो क्या जाने प्रेम के दीवाने तो

अभी बहनें सुन रही थी कार्यक्रम नारी जगत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोहराया है कि बदलते जटिल रणनीतिक माहौल में रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच साझेदारी का प्रमुख आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। ये दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। घोषणा पत्र में दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। मेलबर्न में संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण में समुद्री सहयोग को रेखांकित किया।
1: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
0: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल शोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होगी। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें परिवहन क्षेत्र और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों से आने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की मंजूरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि ये निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने और पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक के तटीय भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगे, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी दिन में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भाग, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के सत्र में आधे प्रतिशत से अधिक की बढ़त देखी गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से

0: बोल रहे हैं। उद्योग जगत कार्यक्रम में प्रस्तुत है वार्ता, बिहार में एथनॉल उद्योग का विकास। वार्ताकार हैं अविनाश कुमार झा।
1: 30 अप्रैल 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार के पूर्णिया जिले में भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। इस प्लांट की स्थापना ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड ने 105 करोड़ की लागत से की है। यह एथेनॉल संयंत्र गन्ना उत्पादकों को अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद करने के साथ साथ राज्य में हरित ईंधन पैदा करने के साथ वायु प्रदूषण को भी कम करने में मदद करेगा। यह देश का पहला ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट है। इसके जरिए रोजाना 65,000 लीटर एथेनॉल उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है। एथेनॉल यह एक ऐसा शब्द है जिसमें भविष्य के उद्योगों, कृषि, पर्यावरण एवं ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए समेकित रूप से कई महत्वपूर्ण संभावनाएं जुड़ी हुई हैं। यह एक प्रकार का जैव ईंधन है जो न सिर्फ हमारी भावी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है बल्कि हमारे पर्यावरणीय विमर्श को भी एक नया आयाम देता है। जैव ईंधन एथेनॉल एक प्रकार का ईंधन रूप है जो पेट्रोल के साथ मिलकर वाहन जनित प्रदूषण को कम करने और वाहन चलाने की लागत को भी कम करने में सहायक है। भारत सरकार सहित विश्व के अनेक देशों में एथेनॉल का प्रयोग किया जा रहा है। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 द्वारा अपने देश में वर्ष 2025 तक पेट्रोल में लगभग 20% एथेनॉल के मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। इन्हीं सकारात्मक पहलुओं को देखते हुए बिहार में भी एथेनॉल उत्पादन के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील वैश्विक एथेनॉल उत्पादन का लगभग 84% उत्पादन करते हैं। एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जिसे वाहनों में उपयोग किए जा रहे पेट्रोल में मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका उत्पादन मूलतः गन्ने के उत्पादन के उपोत्पाद के रूप में किया जाता है, किंतु शर्करा युक्त कई अन्य फसलों से भी इसे तैयार किया जा सकता है। विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि गन्ना, मक्का और चावल जैसे खाद्यान्नों के जरिए देश में आसानी से लक्ष्य के मुताबिक एथेनॉल तैयार किया जा सकता है। भारत सरकार ने भी वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाकर बेचने का लक्ष्य रखा है। इससे न सिर्फ पर्यावरण में प्रदूषण उत्सर्जन की दर कम होगी बल्कि देश को महंगे तेल आयात पर होने वाले खर्च से भी मुक्ति मिलने की संभावना है। अगर यह लक्ष्य तय कर लिया गया तो देश को लगभग 30,000 रुपए की विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। दुनिया के कई देश इसके इस्तेमाल को लेकर अनेक प्रयोग और चिंतन कर रहे हैं। इनमें ब्राजील सबसे आगे है। ब्राजील में लगभग 40% गाड़ियां 100% इथेनॉल का इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा वहां बाकी वाहन भी लगभग 25% इथेनॉल मिला ईंधन उपयोग कर रहे हैं। विगत दिनों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत की पहली पूरी तरह से एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की है जो जापान की ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा की फ्लेक्सी फ्यूल हाइब्रिड प्रोजेक्ट के तहत निर्मित हुई है। स्वीडन और कनाडा में भी एथेनॉल का पर्याप्त उपयोग किया जा रहा है। कनाडा में तो एथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से पर्याप्त अनुदान भी दिया जा रहा है। गन्ना कृषकों को फायदा, रोजगार सीजन के नए अवसर, एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर इस्तेमाल करने के पीछे इसका इको फ्रेंडली होना, कम लागत में तैयार होना और ऑक्टेन नंबर ज्यादा होना है। यह न सिर्फ पर्यावरण बल्कि हमारी जेब और गाड़ियों के लिए भी बहुत उपयोगी है। इससे पेट्रोल की कीमतों में कमी आएगी और गाड़ियों के इंजन भी लंबे समय तक बेहतर रहेंगे। इथेनॉल के इस्तेमाल से लगभग 35% कम कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। इतना ही नहीं बल्कि यह विनाशकारी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को भी कम करता है, क्योंकि इसमें लगभग 35% ऑक्सीजन होता है जिससे पेट्रोल से ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होती है और प्रदूषण भी कम होता है। भारतीय चीनी मिल संघ इस्मा के अनुसार भारत में एथेनॉल उत्पादन क्षमता वर्तमान में 440

करोड़ लीटर है। वैसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह ऊर्जा का अक्षय स्रोत साबित हो सकता है, क्योंकि भारत में गन्ना सहित अन्य शर्करा युक्त फसलों के उत्पादन में कमी होने की संभावना नहीं है। किंतु इथेनॉल उत्पादन का एक स्याह पक्ष यह भी है कि इसकी मांग और उपयोगिता बढ़ने पर गन्ने सहित अन्य शर्करा युक्त फसलों के उत्पादन पर फोकस बढ़ेगा और इसके बायोफ्यूल के रूप में इस्तेमाल से खाद्यान्न रूप में उपयोग के लिए इनकी कमी का सामना भी करना पड़ सकता है। साथ ही इनके उत्पादन में जल उपयोग की बढ़ी हुई मात्रा को देखते हुए जल संकट का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में एक विशिष्ट कोटि के पर्यावरणीय संतुलन को साधना पड़ सकता है। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार की विधि व्यवस्था में सुधार और कृषि क्षेत्र में क्रांति के उपरांत बिहार को उद्योग क्षेत्र में असीम ऊंचाई पर पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। यह निश्चय किया गया है कि जितनी भी कोशिशें करनी हो, किंतु बिहार को औद्योगिकरण के पर्याप्त लक्ष्य को हासिल करके ही रहना है। बिहार की तकदीर संवारने के मिशन में पहला कदम जो सबसे पहले उठाया गया वह था बिहार को देश का एथेनॉल हब बनाने का। बिहार में इसके लिए बिहार एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 तैयार की गई है। 19 मार्च 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना के मौर्य होटल में आयोजित एक कार्यक्रम में एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 को लॉन्च किया है। इसके साथ ही बिहार अपनी अलग एथेनॉल पॉलिसी लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। बिहार में एथेनॉल उत्पादन इकाई लगाने पर कई तरह की सब्सिडी की व्यवस्था करने वाली यह पॉलिसी आते ही बिहार सरकार के पदाधिकारीगण और बिहार के उद्योगपति इसके प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। उद्योग विभाग बिहार द्वारा आयोजित कई कार्यक्रमों के साथ साथ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता सहित देश के कई शहरों में उद्योगपतियों के साथ बैठकें की गईं, उद्योग संगठनों के साथ संवाद किया गया तथा उन्हें बिहार में इथेनॉल उद्योग लगाने की संभावनाओं और इनके फायदों के बारे में समझाया गया। परिणाम यह रहा कि 30 जून 2021 के इथेनॉल पॉलिसी के तहत आवेदन करने की मियाद खत्म होते होते 151 उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए 30,382 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए, जिसे राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद में स्वीकृत किया गया। लेकिन अचानक इसमें एक नया मोड़ तब आया जब तेल विपणन कंपनियों ने इथेनॉल आपूर्ति के लिए करार के हिसाब से बिहार को काफी कम कोटा दिया। बिहार देश में इथेनॉल उत्पादन का सबसे बड़ा हब बन सके, इसकी सारी संभावनाएं हैं। यहाँ कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता है तो पानी और श्रम शक्ति की भी कमी नहीं है। लेकिन बिहार को सिर्फ 18.5 करोड़ लीटर का सालाना कोटा मिला, जो कि बिहार की क्षमता और निवेशकों की तैयारी की तुलना में काफी कम था। फिर बिहार सरकार ने इसके लिए कोशिशें शुरू की। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से कई मुलाकातों के बाद सहकारिता मंत्रालय का भी जिम्मा संभाल रहे गृह मंत्री अमित शाह के प्रयास से बिहार सरकार का पक्ष रखा गया। केंद्र सरकार में बिहार के अन्य मंत्रियों से भी मिलकर राज्य सरकार ने बिहार का एथेनॉल आपूर्ति कोटा बढ़ाने के लिए प्रयास करने की अपील की। इन प्रयासों के भी काफी अच्छे परिणाम निकले। दीपावली की पूर्व संध्या पर बिहार को एक तोहफा मिला। बिहार का वार्षिक एथेनॉल आपूर्ति कोटा 18.5 करोड़ लीटर से बढ़ाकर 35.28 करोड़ लीटर प्रतिवर्ष कर दिया गया है। इससे बिहार में 17 नई एथेनॉल इकाइयों की स्थापना का रास्ता खुल गया। गोपालगंज के सिंधवालिया और सोनासुती में 2, भोजपुर में 1 एथेनॉल इकाइयां उत्पादन शुरू करने की तैयारी में हैं। भोजपुर जिले के देवड़ी में देश की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री शुरू होने वाली है, जिसकी उत्पादन क्षमता लगभग 4 लाख लीटर संभावित है। इस प्लांट की लागत 500 करोड़ रुपए है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में 4, नालंदा में 4, मधुबनी में 2 और एक एक इकाई बेगूसराय, नवादा, भागलपुर और बक्सर में स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है। एथेनॉल उत्पादन में निहित संभावनाओं को देखते हुए यह कहना वाजिब है कि इससे बिहार के किसानों, व्यापारियों एवं युवाओं को बहुत फायदा होगा तथा इनकी आय में लगभग
दोगुनी

0: वृद्धि संभावित है। साथ ही बिहार के कृषकों और फसल उत्पादकों को अपनी फसल और उसके उत्पादन को बेचने के लिए बाजार में अन्यंत्र भटकने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। बिहार में जो एथेनॉल उद्योग लगाने और विकसित करने के साथ साथ बिहार वासियों की तरक्की का जो सपना देखा गया है, वह एथेनॉल उद्योग की बढ़ोतरी के साथ पूरा करने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही बिहार में औद्योगिकरण की प्रक्रिया भी रफ्तार पकड़ रही है।
1: उद्योग जगत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वार्ता, बिहार में एथेनॉल उद्योग का विकास। वार्ताकार थे अविनाश कुमार झा।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए देश गान।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम के आरंभ में, सुनिए अलका याग्निक को फिल्म सूर्या में। कोई पूछे तो कह देना आवारा था मगर प्यार था।

खता उनकी भी नहीं यारो, वो भी क्या करते, बहुत चाहने वाले थे, किस किस से वफा करते।

सोचा था बताएंगे सब दर्द तुमको, सोचा था बताएंगे सब दर्द तुमको, पर तुमने तो ये भी नहीं पूछा कि खामोश क्यों हो।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्री

0: अमित शाह आज सीमा सुरक्षा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में बिहार समेत सीमावर्ती राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में घुसपैठ, सीमा से जुड़े इलाकों में आबादी के पैटर्न में बदलाव, नशीले पदार्थों की तस्करी और सीमा सुरक्षा समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। IMF के अनुसार मजबूत घरेलू मांग और आर्थिक गतिविधियों के चलते भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी बढ़त बनाए रखेगा। हालांकि अगले वर्ष 2027 में देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP वृद्धि दर घटकर 6.4% रहने का अनुमान है। IMF का कहना है कि इसके बावजूद भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश बना रहेगा। बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी अभिषेक कुमार ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सराफ की जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी समेत NDA के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। नामांकन के बाद भाजपा प्रत्याशी ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि उन्हें कहीं से कोई चुनौती नहीं है। इधर राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। मौके पर राजद समेत महागठबंधन के विभिन्न घटक दलों के नेता मौजूद थे। जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर 11 जुलाई को अपना पर्चा दाखिल करेंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान कटिहार के अहमदाबाद में सबसे अधिक 108.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है। इधर विभाग ने शाम 5 बजे तक नालंदा, पटना, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, वैशाली, शेखपुरा और समस्तीपुर जिले में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के तबादले के लिए पोर्टल आज से चालू हो रहा है। इसके माध्यम से शिक्षक स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार ने स्थानांतरण की नीति बनाई है। उन्होंने कहा कि तबादले के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी हो चुकी है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम सिवान में पदस्थापित उत्पाद निरीक्षक अंकेश कुमार गोंड के पटना के तानापुर स्थित आवास समेत 5 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उनके मुंगेर और सिवान स्थित ठिकानों पर भी छापेमारी जारी है। आय से अधिक संपत्ति मामले में यह कार्रवाई की जा रही है। गया जिले के बोधगया थाना क्षेत्र के सिजुआ गांव के पास एक कार और ट्रक के बीच टक्कर के बाद कार में आग लग गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। कार चालक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत परमालपुर के पास एक तेज रफ्तार ट्रक के अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा जाने के चलते चालक और खलासी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पटना के अमहरा थाना क्षेत्र के बबवनलई गांव से पुलिस ने शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। मधुबनी जिले के फूलपरास थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक तस्कर को 13 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS प्रोबेशनरी ऑफिसर एवं मैनेजमेंट ट्रेनिंग के कुल 6,700

15 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ibps.in से प्राप्त किया जा सकता है।

रेलवे भर्ती बोर्ड टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के कुल 6,565 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार के पास बीटेक इंजीनियरिंग डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग में बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष और टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianrailways.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग BPSSC पुलिस अवर निरीक्षक के कुल 150 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpssc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

0: यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत वयस्कों के लिए निर्धारित साक्षरता मानकों को प्राप्त कर पूर्णतः साक्षर राज्य बना। और वियतनाम में होने वाले पिकलबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारतीय दल की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में आयोजित 30वें भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीज ने संयुक्त वक्तव्य दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी बदलाव का स्वागत किया और क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक रूपरेखाओं को अंतिम रूप दिया।
1: यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं। पारंपरिक व्यापार से हाईटेक डिफेंस कॉरिडोर की ओर बढ़ने, महत्वाकांक्षी सीका समझौते में तेजी लाने और ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अंतर्गत लंबे समय के लिए यूरेनियम निर्यात शुरू करने जैसी पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया गया है। जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि 10 लाख का भारतीय प्रवासी समुदाय इस साझेदारी की असली धड़कन है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के विकास की गति को क्रिकेट की तरह बताया।
2: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग्स भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन T20 जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी।
1: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी भविष्य के लिए निर्मित एक सुदृढ़ और स्थायी संबंध है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। शिखर वार्ता की प्रमुख उपलब्धियों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नई गति देना शामिल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन साझेदारी को क्रियान्वित किया गया और महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर की स्थापना की गई।
2: हमने सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं।
0: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत रूप दिया गया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप का शुभारंभ हुआ।
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर

0: मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के नए शाखा परिसर बंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
2: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
3: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहें। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं।
2: एंड क्रिटिकल मिनरल्स।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स 2026 के तहत तीसरे ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई। कार्यकारी समूह की इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने गतिशीलता, शहरी बुनियादी ढांचा और सतत विकास जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIRF और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत ने आज गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए एक अहम राष्ट्रीय पहल शुरू करके अपने समुद्री विकास में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उड़ीसा के एक दिन के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दूर के समुद्रों में काम करने वाली भारतीय झंडे वाली मछली पकड़ने वाली नावों के लिए अनुमति पत्र जारी करने की राष्ट्रीय प्रक्रिया की शुरुआत की। इससे जिम्मेदारी से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों को संरक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार होगा। उन्होंने उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन डॉक्यूमेंट भी जारी किया, जो राज्य में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को इकोसिस्टम को मजबूत करने और ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक योजना है। उपराष्ट्रपति ने युवा भारतीयों से मछली पालन को वैश्विक मौके वाला एक आधुनिक विज्ञान आधारित पेशे के तौर पर अपनाने का आग्रह किया।
5: I urge our institutions to continue supporting our fishing community with knowledge, technology and finance. May this historic initiative bring prosperity to every coastal family and contribute significantly to the realization of Viksit Bharat by 2047.
4: Prakash Das, Akashvani Samachar, Bhubaneswar.
1: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना तथा कानून प्रवर्तन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों की पहचान कर देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को हिमाचल प्रदेश के केलोंग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि ये सेंटर पूरे भारत के हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च को मजबूत करेगा। कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के तहत सरकार ने अब तक देश भर में किसानों को 9,404 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 22 लाख कृषि मशीनें वितरित करने में सहायता प्रदान की है। ये मिशन वर्ष 2014-15 में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे लाइन की मरम्मत के काम की समीक्षा की। भूस्खलन भीषण था और रेलवे लाइन के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी भारी नुकसान हुआ था। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे की टीमें समन्वय से काम कर रही हैं। नीति आयोग ने उभरते क्षेत्रों के लिए

0: महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक में सरकार, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति के बाद राज्यपाल ने 8 जुलाई 2026 को इस घोषणा को मंजूरी दी। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी ये आगे बढ़ चुका है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज बारिश जारी है। दिल्ली वासियों की सुबह मूसलाधार बारिश और आंधी के साथ शुरू हुई। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था।
1: अगर हम आने वाले दिनों की बात करें, सबसे पहले एनसीआर दिल्ली की बात करें, तो एनसीआर दिल्ली के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट, हम अनुमान लगा रहे हैं कि जहां आज मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, इसके अलावा कल ये रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, परसों हल्का फुल्का रेनफॉल होने का अनुमान। वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट है, वहाँ हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय जिलों के कुछ राष्ट्रीय मार्गों, राज्य राजमार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। बंद सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन व पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने संबंधित विभागों को किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 24 घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करने की भी अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: केरल के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश की तीव्रता कम हो गई है। उत्तरी केरल के 5 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले कल रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट पर थे। वायनाड में 5 से 15 मिलीमीटर तक मध्यम बारिश दर्ज की गई। यहां मंगलवार को भूस्खलन हुआ था। भारतीय पिकलबॉल संघ ने 2026 पिकलबॉल विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। ये दल एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया है। 30 अगस्त से 6 सितंबर तक वियतनाम के दानांग में आयोजित होने वाले पिकलबॉल विश्व कप में पेशेवर वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पिकलबॉल जगत में एक जाना पहचाना नाम हर्ष मेहता दल की कप्तानी करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 565 अंक चढ़कर 77,069 पर और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,050 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

0: ऐसे ऐसे बन के साथ।
1: अभी आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को, फिल्म का नाम है अनजाना।

जी सुनिए मोहम्मद रफ़ी को, फिल्म का नाम है दो रास्ते, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

मन्ना डे को सुनिए फिल्म सफर में।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है समाधि। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार आर डी बर्मन।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बज चुके हैं। इसी के साथ हमारी आज की पहली सभा समाप्त होती है। हम फिर आपके लिए कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे शाम के 4:30 पे। उस समय तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग हमारे दिल्ली केंद्र से, और अब आपने ट्यून किया एफएम रेनबो पटना 101.6 मेगाहर्ट्ज पर, और आज आपके साथ मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट रीता। अब से लेकर शाम के 7:30 तक मैं बनी रहूंगी आपके साथ और करती रहूंगी आपका मनोरंजन अपने इंद्रधनुषी कार्यक्रमों के साथ। तो सबसे पहले एक छोटी सी जानकारी, आज कौन कौन से कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज शाम 7:15 पर सुनेंगे प्रोग्राम मेहमान की बातें। शाम 7 बजे रोज की तरह प्रोग्राम होगा सफरनामा। शाम 6:30 पर आप

0: सहेली
1: सुनने वाली हमारे सभी सखियों सहेलियों और सखा भाइयों को जो कार्यक्रम सखी सहेली सुन रहे उन्हें और सोनाली आपको दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
2: दीपा आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार।
1: बिल्कुल भाई, बहुत बहुत नमस्कार। और ये बदलते मौसम में अपना सब खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे, हम ये उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, और घर का भी ध्यान रख रहे होंगे। और इस बारिश में बहुत सारी बातों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है जो हम इस कार्यक्रम के दौरान करेंगे।
2: एक हमारे सखी ने लिखा है कि सोशल मीडिया न्यूज समाचार पत्रों से मुंबई की बारिश के हालचाल दिख रहे हैं और इसके बाद भी सही समय पर आप सभी का प्रोग्राम पेश करना अपने कार्य के प्रति निष्ठा बहुत बड़ी बात है। भगवान से दुआ है आप सब अपने सुरक्षित रहे और अपने कार्य करते रहे। ऐसे कोई जब हमारी परवाह करता है तो कितना अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम भी तो अपने वादे पे हमें उतरना होता है, सही खरा बनना पड़ता है।
2: और हमारी श्रोता भाई बहन भी इतनी बड़ी ही शिद्दत के साथ में इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखते हैं तो इतना आनंद होता है ना, ऐसा लगता है कि सभी हमारे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और हमसे बतिया रहे हैं इन मैसेजेस के माध्यम से।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखो ना, इस हमारा तभी तो हमारा फर्ज बनता है कि हम खूब सारी जानकारियां लेकर आए, मनोरंजक गीत लाएं और कुछ खट्टी मीठी बातें भी हों,
2: है ना। और जैसे बारिश का मौसम है, झमाझम बारिश पूरे भारतवर्ष में हो रही है और जहां नहीं हो रही है तो बस हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से वहां भी बारिश हो जाए, बस बारिश संतुलन में हो
1: जी।
2: उसके लिए जो है सड़क यातायात और बारिश, यानी ये देखिए ना इन दिनों कितनी सारी दुर्घटनाएं हो रही है सड़क यातायात की, कि कितने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं बारिश के मौसम में, तो किस तरह से हमें ध्यान रखना है इस विषय पर उपयोगी टिप्स ये हमारे श्रोता भाई बहन इनने बहुत सारे लिखकर भेजे हैं, हम भी बताएंगे।
1: बिल्कुल हाँ। और फिर क्या होता है जब स्कूल में छुट्टियां हो जाती बहुत बारिश की वजह से, पिछले कुछ दिनों में हमने मुंबई में देखा, आपके शहर में भी ऐसा कुछ हुआ हो तो जरूर बताइएगा। स्कूल कॉलेजेस की छुट्टियां हो जाती है और फिर वर्क फ्रॉम होम के लिए एक रिक्वेस्ट सरकार की तरफ से भी आती है कि अपील होती है कि भाई जो जहां है वहीं रहें, और फिर ऐसे में बच्चों की जिद जो घर में रहते हैं तो उनके शुरू हो जाते हैं, आज हम स्कूल नहीं गए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये करके दो, हमें वो करके दो, ये सारी तो जो चीजें हैं ना, इस तरह के सीन बहुत सारे घरों में हुआ करते होंगे,
2: दिखते हैं ऐसे सीन। और होता यूं है कि अगर हम काम में लगे हुए हैं, हम उलझे हुए हैं, बच्चे ने जिद की कि भाई आज मम्मी हमें पास्ता बना दीजिए, तो हम मैंने जब काम में रहते तो हमने कहा ठीक है भाई पास्ता बोल रहा है तो बना देंगे, पर तब हम ऐसे ही उनसे वादा कर देते कि हाँ बना देंगे, पर पास्ता बनाने के लिए घर में सामग्री भी चाहिए।
1: बिल्कुल।
2: फिर अगर हमने पास्ता नहीं बना दिया तो फिर बच्चे जो है ना सारा घर सर पे ले लेते हैं और उनकी जिद के आगे पेरेंट्स जो होते हैं हतबल हो जाते हैं।
1: हम कई बार उसमें ऐसे उनको एक बात उनकी इधर उधर करने के लिए उनका ध्यान यहाँ वहाँ भटक जाए तो हम कहते हैं अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो वो कहते हैं मेरे पास है ना
2: मेरा गुल्लक में
1: उसमें से निकाल लीजिए आप, इस तरह से भी कहते हैं बच्चे।

0: तो यानी
1: और
0: गुल्लक
1: जी
0: हमारे बचपन का मनी बैंक, या यूं कह लीजिए बड़े होने के बाद भी अगर घर में गुल्लक होना तो एक अलग ही प्रसन्नता रहती है कि जो कुछ भी इधर उधर घर में चिल्लर पैसे कुछ रुपए इधर पड़े हुए हैं तो हम झट से उसमें डाल देते हैं, तो हमें भी एक सुकून लगता है कि चलो हमारे पास इसमें तो बचत है। भले ही बड़े बड़े हमारे बचत खाते होंगे और बड़े बड़े हमारे FDs होंगे, पर ये जो छोटा सा गुल्लक होता है ना, ये बड़ा ही मासूमियत भरा होता है।
1: बिल्कुल, और एक सुकून सा देता है कि अगर कभी अचानक से कुछ छुट्टे पैसों की जरूरत पड़ गई तो हमारे पास गुल्लक है ना। और इसी साथ में ये भी है कि हम जब बहुत सारी बातें होती घर में बैठे हैं तो कई सारे बातें निकलती, क्योंकि बरसात के दिन अक्सर बाहर जाना हो नहीं पाता, बातें बहुत सारी निकलती हैं। और कभी हम किसी की जद्दोजहद की बातें करते हैं, किसी की कोई प्रेरणा स्रोत कहानी के बारे में जिक्र निकल जाता है। तो आज के दिन हम कहानी पद्मश्री के खंड में बात करेंगे कुछ इसी तरह मंजमा जोगथी की,
0: जिनके जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी इस विषय में कमेंट्स लिखे हैं और हम सारे श्रोताओं को उनके जीवन से जुड़ी कितनी परेशानियां थी और उसके बाद में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो उनके बारे में भी हम जानकारी देंगे। पर अब क्या करना है दीपा?
1: देखो अब मैं क्या कर रही हूँ।

0: सोनाली, कहाँ खो गई तुम?
1: मैं खो गई थी हमारे श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ने में।
0: देख रही थी मैं कि बहुत सारे संदेश आए हैं और तुम चाट रही हो कि कौन ज्यादा से ज्यादा हम संदेश शामिल कर सके अपने कार्यक्रम में।
1: क्योंकि हमारे श्रोता जो होते हैं ना, इतनी मेहनत से कमेंट्स लिखते हैं, तो हमारा भी ये फर्ज है कि उनके कमेंट्स शामिल करना बहुत जरूरी है। और बहुत सुंदर लिखते हैं हमारे श्रोता
0: जी,
1: है ना?
0: ये बात तो 16 आने सच है। और अब ये कि कहानी उनकी, जिन्होंने बहुत बहुत ज्यादा मुश्किलें, परेशानियां, हालात, बहुत दिक्कतों भरे देखे, उनके बारे में। ये एक महिला जिन्होंने दर दर भटकने के दिनों को देखने से लेकर राज्य के लोक कलाओं के प्रतिष्ठित संस्था के प्रमुख बनने तक की उनकी ये कहानी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंजम्मा जोगथी की, उनके असाधारण जीवन की कहानी जो कि आज स्कूली पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बन गई है।
1: बेल्लारी के पास कल्लू कंबा गांव में मंजुनाथ शेट्टी के रूप में जन्मी मंजम्मा ने अपने जीवन में अकल्पनीय पीड़ा झेली है दीपा। ये तब शुरू हुआ जब किशोरावस्था में ही मंजुनाथ ने खुद को एक महिला के रूप में पहचाना शुरू किया। वे कहती है कि जब मैं 15 साल की हुई तब मैंने एक महिला के रूप में अपनी पहचान को पूरी तरह से अपना लिया था और परिवार वाले उनके भीतर हो रहे इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाए और एक दिन उन्हें घर से निकाल दिया क्योंकि वे तृतीय पंथी थी। अकेलापन और भीषण गरीबी के दिन झेलती रही मंजम्मा। इसी दौरान एक दिन उन्हें आशा की एक किरण दिखाई दी। दावणगेरे के पास एक बस स्टैंड पर उन्होंने अपने पिता पुत्र की जोड़ी को देखा और जो पिता ने लोकगीत गाए और पुत्र ने अपने सिर पर लोहे का बर्तन रखकर नृत्य किया।
0: उन दोनों को और उस दिन को याद करते हुए मंजम्मा बताती हैं कि यह जोगप्पा समुदाय का एक लोक नृत्य था और मैं हमेशा से ही इस नृत्य से मोहित रहती थी, इसलिए मैं वो पिता जो ये कर रहे थे बस स्टैंड पे ये वाली कला, वो उनके पास गई और उनसे पूछा कि क्या वे मुझे ये नाच जो है, ये नृत्य है, इसे सिखाएंगे। खुशी की बात ये है कि वे मान गए। फिर क्या होने लगा कि मंजम्मा हर दिन उनकी कुटिया में जाती और ये नृत्य सीखती। तो जो घड़ा, जो उनकी भाषा में, उनकी वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा में जिसे चोंबू कहते हैं, उसको संतुलन करना, कभी कभी तो किसी देवता की मूर्ति को भी सिर पर रखकर सुंदर नृत्य करना बहुत रोमांचक उन्हें लगता था।
1: और उस समय मंजम्मा को ये नहीं पता था कि ये कला उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तनकारी बदलाव लाएगी। एक साथी जोगप्पा ने उन्हें उस समय के लिए प्रसिद्ध लोक कलाकार कालव्वा से मिलवाया। वे याद करते हुए बताती हैं कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब कालव्वा ने मुझे अपने सामने नृत्य करने के लिए कहा था, जिसे आप ऑडिशन कह सकते हैं। उन्होंने किसी से मेरे चेहरे पर मेकअप करवाया। मुझे याद है कि मैंने आईने में देखकर मुझे बहुत शर्म महसूस हुई, ये उनका कहना था, और मैं बहुत सावली थी और इस मेकअप ने मुझे गोरा और सुंदर बना दिया। मैंने कालव्वा के गायन पर नृत्य किया और बस बात खत्म। जल्दी ही वे मुझे नाटकों में छोटी छोटी भूमिकाओं के लिए बुलाने लगे, फिर बड़ी भूमिकाओं के लिए भी उन्हें बुलाने लगे
0: जी। और इसके बाद रंगमंच और नृत्य ने उनके जीवन को व्यस्त कर दिया। वे आगे बताती हैं कि ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे असली रूप को खोज निकाला हो और मुझे मंच पर आजाद कर दिया हो। मंजम्मा जो कल्लव्वा जोगथी के नृत्य समूह में स्थायी एक नृत्यकी बन गई थी और हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन करने लगी। कल्लव्वा की मृत्यु के बाद मंजम्मा ने मंडली का कार्यभार संभाला और नृत्य को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया।
1: जोगथी नृत्य, जिसे आज इसी नाम से जाना जाता है, अपनी पहचान और लोकप्रियता का श्रेय काफी

0: तक उन्हें ही देता है। एक विशिष्ट जोगती नर्तकी लेट कर केवल मुंह से फर्श से सिक्के उठाने और सिर पर घड़ा संतुलित करने जैसे कर्तव्यों में भी माहिर होती है। यानी शरीर इतना फ्लेक्सिबल चाहिए, है ना,
1: बिल्कुल, और
0: कि
1: संतुलन कितना ज्यादा
0: बहुत
1: चाहिए।
0: जरूरी है। और मंजम्मा को 2010 में कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उनकी जीवन कहानी हावेरी जिले के कर्नाटक लोक विश्वविद्यालय में स्कूली पाठ्यक्रम और कला स्नातक पाठ्यक्रम का भी हिस्सा है।
1: वो आगे कहती हैं इंटरव्यू में कि मेरे लिए कला ही ईश्वर है, इसने मेरे भूखे पेट को भरा, ये हर दिन मेरी आत्मा को तृप्त करती है, और जब मेरा कोई सहारा नहीं था तब इसने मेरा साथ दिया।
0: और वर्ष 2021 में उन्हें भारत गणराज्य के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें पहले कर्नाटक जनपद अकादमी के सदस्य के रूप में और बाद में राज्य सरकार द्वारा उसी संस्था के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इसी तरह वे राज्य में प्रदर्शन कला के शीर्ष स्थान का संस्थान का नेतृत्व करने वाली पहली तृतीय पंथी महिला बनी है। कितनी
1: जी,
0: बड़ी बात है ना दीपा।
1: बहुत बड़ी बात। और ये वे कहती हैं कि उनकी ये चाहत है कि जोगती नृत्य को एक विशिष्ट लोक नृत्य शैली के रूप में मान्यता मिले। इसे केवल जोगप्पाओं द्वारा ही प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। वो कहती हैं कि बच्चों को भी अन्य नृत्य शैलियों की तरह ये नृत्य शैली सिखाई जानी चाहिए।
0: और एक इंटरव्यू में अपने बीते दिनों को याद करते हुए बताती है कि जब कर्नाटक जनपद अकादमी का उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो राज्य में लोक कलाओं को बढ़ावा देने वाला विभाग है, उस दिन उनका फोन लगातार बज रहा था। वो सारा ध्यान, प्यार और सराहना मुझे अभिभूत कर रही थी। मंजम्मा आंसू रोकते हुए कहती है कि मैंने अपना पूरा जीवन इसी स्वीकृति और प्यार के लिए तरसते हुए बिताया। यानी कितना संघर्ष था उनके जीवन।
1: बिल्कुल, जब परिवार आपको छोड़ देता है, अकेलापन आपका साथी बन जाता है, ऐसे में जब कहीं से भी प्यार दुलार अपनापन मिलता है ना, तो वो इंसान के दिल पर क्या बीतती होगी ये सोचने, मतलब हमारी सोच से भी बाहर है।
0: और ऐसा होता है ना कि आम इंसान जो होते हैं ना, हर बार हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, हमें तो कुछ मिला ही नहीं है, हमारा तो नसीब ही खराब है। पर देखिए ना, उन्होंने कितनी विषम परिस्थितियों के बाद
1: जी
0: एक पद्मश्री तक पहुंच गई। यानी कितनी बड़े, कितना संघर्ष होगा उनके जीवन में। सच
1: ये बात तो बिल्कुल सही है। बातें बहुत सारी गंभीर हो गई है, क्यों ना कहीं कुछ एक संगीत
0: गीत हो जाए,
1: सुमधुर गीत
0: सुनते हैं गीत।

0: सुना ली, बारिश में भीगना किसे पसंद नहीं होगा?
1: सभी को पसंद है भाई, पर बहुत संभाल के वहां पे हमें भीगना पड़ता है कि बीमार ना पड़ जाए, है ना?
0: ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर बच्चे बहुत ज्यादा जिद करते हैं तो रेनकोट डाल दीजिए उसके ऊपर, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है बरसते पानी में, वो पानी में पैरों से उछालना या उनकी छोटी छोटी छोटी छोटी साइकिलों को चलाना। तो हर बार मना करने के बदले एक दो बार उन्हें उनकी पूरी बरसाती पहना के, रेनकोट पहना के अच्छे से उनको छोड़ भी देना, चल सकता है ना ऐसा?
1: चल सकता है। वैसे अभी गुल्लक की बात चल रही है हमारी। हमारे एक साथी ने लिखा है कि गुल्लक बचपन का मनी बैग। वाह क्या बात है, उन दिनों मिट्टी के गुल्लक कुंभकारों द्वारा अच्छी तरह पक्के पकाए आते थे और उनके ऊपरी हिस्से में पैसा डालने के लिए छेद रहा करता था, लेकिन वो भी खरीद से बाहर की कीमत पर या दीपावली पर दिए लेते समय आते थे, इसलिए डिब्बे में पैसे रखने का शौक था। एक बार मुझे टाइफाइड का बुखार आया, मैं बेड पर सोए हुए पैसों के डिब्बे खनखनाकर संतुष्ट रहता था। 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था, लेकिन माह भर से बुखार था और बहुत परहेज चल रहा था। रोटी की पापड़ी और परवल का चोखा पथ्य में दिया जाता था। एक बार लोग विजयादशमी का मेला देखने गए थे और मेरे देख रेख करने के अनदेखी कर रखा हुआ दही बड़े को भरपेट खाया। पिताजी की ही चिकित्सा चल रही थी। जब वो मेला से लौटे तो मुझे तेज बुखार था और देख रेख करने वाली की अच्छी खिंचाई हुई। ऐसा गुल्लक हुआ करता था, अब तो गुल्लक का नाम एक सीरियल भी आ रहा है।
0: बात
1: बहुत
0: तो सही है।
1: अच्छी यादें आपने साझा की है।
0: तो यादें साझा करें या इसी के बारे में बात करें, एक संदेश और ले लें।
1: हाँ
0: ये संदेश कहता है कि बचपन का ही नहीं, मैं तो अभी भी इस मनी बैंक को अपने पास रखती हूँ। गुल्लक में पैसे रखना मेरी बचपन की आदत है, डेली कुछ पैसे उसमें डालती हूँ और साल भर के बाद उसे तोड़ने में मजा आता है। एक उत्सुकता रहती है कि कितने पैसे जमा हुए हैं। हालांकि कुछ साल पहले मेरे घर में चोर घुस आए थे, ओहो, और मेरे दो बड़े बड़े गुल्लक दूसरे सामान के साथ ले गए। लगभग 8 से 10 हज़ार रुपए थे दोनों गुल्लक मिलाकर। तब मैंने सोचा अब गुल्लक नहीं रखूंगी, पर आदत का क्या किया जाए, अब सिर्फ सिक्के ही रखती हूँ, बड़े बड़े रुपए उसमें नहीं डालती हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसी बात हो जाती है घर में कि चोर आ जाते हैं और आप देखिए ना, आपका गुल्लक ही वो लेके गए। लेकिन एक बात इसमें ये जान बहुत अच्छी लगी, आपने 8-10 हज़ार रुपए इकट्ठे कर लिए
1: तो
0: तो गुल्लक
1: इसलिए
0: गुल्लक
1: हमें ये
0: करके।
1: संदेश मिलता है इस मैसेज से कि भाई हमें गुल्लक में सिर्फ छोटे छोटे पैसे ही रखना है, जैसे 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए इतने ही रखना है। बड़े बड़े नोट रखने के लिए बैंक है, तो
0: बैंक
1: बैंक
0: है,
1: में
0: या आप
1: रखें।
0: कुछ ऐसी जगह पर घर पे रखिए जो कि बिल्कुल सुरक्षित हो, कि कभी ऐसी अनहोनी घटना हो जाए तो आपके मेहनत के जमा किए हुए पैसे कोई यूं ही उठाकर ना ले जाए।
1: गुल्लक सिर्फ पैसे रखने का डिब्बा नहीं, बल्कि बचपन का पहला बैंक है जो बच्चों के को बचत का महत्व, धैर्य और वित्तीय जिम्मेदारी सिखाता है। ये पारंपरिक रूप से मिट्टी का बना होता है, जिसमें सिक्के डालने के लिए पतली दरार होती है। बचपन की यादें और गुल्लक का महत्व, बचपन का खजाना। इसमें जमा किए हुए एक एक सिक्के की खनक में खिलौने, आइसक्रीम और साइकिल जैसे छोटे छोटे सपने छुपे होते हैं। ये बच्चों को छोटी उम्र से ही आय और व्यय, यानी पैसा बचाने और खर्च करने के बुनियादी सिद्धांत सिखाने के लिए सबसे बड़ा मददगार है। और तोहफे की परंपरा अक्सर त्योहारों या जन्मदिन पर माता पिता और रिश्तेदारों से गुल्लक तोहफे में मिलता था, जो आज भी यादों में ताजा है। आधुनिक रूप में आजकल पारंपरिक मिट्टी के गुल्लक के साथ साथ लकड़ी के नक्काशीदार

0: बॉक्स और पासवर्ड और डिजिटल लॉकर वाले प्लास्टिक के स्मार्ट मनी बैग भी बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय है।
1: आजकल तो बहुत अलग अलग डिजाइन वाले मिलने लगे हैं गुल्लक। और देखो ना सोनाली, उसमें हर जमा सिक्का केवल धन नहीं होता, वो मेहनत, धैर्य, अनुशासन और सपनों का प्रतीक भी होता है, क्योंकि वो पैसा किसी ने कमाया है, मेहनत से कमाया है। और जब आप उसमें डालते हैं वो, या छोटा बच्चा जब डालता है, तो वो एक अनुशासन भी सीखता है कि हाँ, मुझे अगर 5 रुपए मिले हैं तो ये सारे के सारे मैं डाल दूंगा, या 10 रुपए मिले हैं तो उसमें से आधा डालूंगा,
0: और
1: आधा
0: कुछ खर्च कर
1: खर्च
0: लूंगी।
1: करेंगे। और एक सपने भी बुनते हैं बच्चे उसमें
0: हाँ।
1: कि अब मेरे जब इतने इकट्ठे हो जाएंगे तो फला खिलौना लाना है, या फला चीज मुझे जो पसंद है या जरूरत है वो मैं लेकर आने वाली हूं।
0: और ये जो है ना, ये आदत आज भी बच्चों को लगाना चाहिए। मुझे ऐसा
1: बिल्कुल
0: लगता है कि
1: सही।
0: आज हम ये भूलते जा रहे हैं ना ये सब बातें, कि गुल्लक अब तो घर में शायद ही किसी के घर में गुल्लक दिखता होगा, पर ये गुल्लक की आदत है ना बच्चों को मिला। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर में दादा दादी आए, नाना नानी आए, रिश्तेदार आए, तो जेब खर्च के लिए 1, 2 या 5 रुपए, 10 रुपए देते थे। उन बच्चों वो बच्चे जो हुआ करते थे पैसों को संभाल कर अपने गुल्लक में डाल देते थे, और हर बार सिक्का गिनने की वो मधुर खनक मन में एक नई खुशी देती थी।
1: जी
0: धीरे धीरे जब
1: हाँ,
0: सिक्कों की संख्या बढ़ती थी तो बच्चों के मन में उत्सुकता भी बढ़ती थी दीपा, कि उनका गुल्लक में कितना धन जमा हो गया है। ये उत्सुकता उन्हें अनावश्यक खर्च से भी दूर रखती थी।
1: बिल्कुल। और गुल्लक को देखो ना, सबसे पहले बचत का जो गुल्लक है बच्चों में, सबसे पहले ये बचत का महत्व सिखाता है, और ये भी समझाता है कि छोटी छोटी बचत भी समय के साथ बड़ी पूंजी बन सकती है। अगर बच्चों को ये सिखाना है हमें कि थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करो और फिर देखो एक दिन कितना बड़ा हो जाएगा, तो गुल्लक से बढ़िया कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है, सही कहा, बचपन की बचत बैंक या मिनी बैंक कहिए, वो गुल्लक ही है जिसमें छोटे सिक्के से लेकर रुपया के छोटे मोटे नोट भी हम डाल सकते हैं, लेकिन निकाल नहीं सकते, ताला लगा हुआ होता है। गुजराती मुहावरा है जो इस गुल्लक के लिए लागू पड़ता है, टिप्पे टिप्पे सरोवर भराए, मतलब बूंद बूंद से हौज भरा जा सकता है। बच्चों में बचपन से ही बचत की आदत डालने का सबसे पुराना तरीका है जो वित्तीय अनुशासन पैदा करता है। हमने भी बचपन में ऐसे गुल्लक बनाए थे। उस जमाने में हमारे घर कोई मेहमान आते थे तो जाते वक्त हम बच्चों को 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया हाथ में थमा देते थे, उसे हम सभी गुल्लक में डाल देते थे। वो दिवाली या जन्माष्टमी त्योहार पर खर्च करने के काम आते थे।
1: बिल्कुल सही कहा। एक एक रुपए जोड़कर बड़ी राशि तैयार करना, ये जीवन का उस वक्त का ऐसा अनुभव था सोनाली, जो आगे चलकर हमें आर्थिक रूप से जिम्मेदार बनाने में मदद करता है। और यही आदत बड़े होकर बैंक में बचत करने, या भविष्य की योजना बनाने, या सोच समझकर खर्च करने की हमें प्रेरणा भी देता है।
0: और दीपा, ये बात है ना कि गुल्लक धैर्य और संयम का भी पाठ पढ़ाता है, कि आज की दुनिया में हर चीज तुरंत पाने की जो चाह बढ़ गई है, लेकिन गुल्लक हमें इंतजार करवाता है कि उसे भरने में कई महीने लगते हैं। और यही प्रतीक्षा बच्चों को ये समझाती है कि सफलता और उपलब्धि समय तथा निरंतर प्रयास से मिलती है।
1: एक संदेश कहता है कि दिवाली की खरीदारी में गुल्लक भी आता था। हमें घरौंदा में जो भुना अनाज मिठाइयों से भरते थे, वे खिलाते थे, उसके बदले में पैसा मिलता था, वही हम गुल्लक में डाल देते थे। आज का दिन शुभ है, लक्ष्मी बढ़ेगी, पर मुझे याद नहीं है कि कभी पैसे बढ़े, क्योंकि डालने के बाद निकलते निकलते मिट्टी के गुल्लक का मुंह बड़ा हो जाता था और पैसे ऐसे ही निकल जाते थे।
0: और कभी कभी फोड़ना पड़ता था ना।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
0: और
1: सही
0: एक
1: कहा।
0: साथी ने लिखा है कि गुल्लक बच्चों के लिए केवल पैसे जमा करने की जगह नहीं, बल्कि उनकी छोटी छोटी इच्छाओं जैसे खिलौना या पसंदीदा चीजें खरीदने को पूरा करने का साधन और एक प्यारी यादों का पिटारा होता था। और
1: देखो हाँ, एक और संदेश पढ़ लीजिए।
0: एक एक साथी ने लिखा है, गुल्लक जिसे पिगी बैंक भी कहते हैं, मिट्टी या धातु या प्लास्टिक से बना हुआ छोटा पात्र होता है जिसका उपयोग छोटे सिक्के और पैसे जमा करने के लिए किया जाता है। ये विशेष रूप से बच्चों में बचत की आदत डालने का पारंपरिक और लोकप्रिय साधन है।
1: और देखो सोनाली, वक्त कहता है अनुशासन, क्योंकि हमें भी सीखना है, तो एक अंतराल के बाद हम फिर
0: फिर
1: आते हैं।
0: हाजिर होते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ चुके, कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं दीपा माहेश्वरी और
1: सोनाली पाठक। चलिए, एक हमारे साथी ने लिखा है कि बचपन की गुल्लक हमारे लिए किसी अलादीन के चिराग से कम नहीं थी। उसमें सिर्फ पैसे नहीं बल्कि गर्मियों के छुट्टियों में खाई जाने वाली बर्फ की चुस्की, मेले से खरीदी जाने वाली मनपसंद गाड़ी और दोस्तों के साथ मिलकर बांटी जाने वाली टॉफियों की उम्मीदें जमा होती थी। जब कभी गुल्लक भर जाती और उसे तोड़ने का वक्त आता तो दिल में एक अजीब सी खुशी और थोड़ी सी मायूसी दोनों एक साथ होती थी। गुल्लक के टूटने पर फर्श पर बिखरे वो सिक्के किसी खजाने से कम नहीं होते थे। उस वक्त हमें ऐसा लगता था ना कि अरे हम तो कितने अमीर हैं, हमारे पास कितने सारे पैसे हैं।
0: बिल्कुल। और बच्चों को वित्तीय साक्षरता और धैर्य सिखाने का ये पहला माध्यम भी है। त्योहारों से जुड़ाव और हमारे देश में दीपावली के त्योहार पर लक्ष्मी पूजन के समय नई मिट्टी की गुल्लक खरीदने और उसकी पूजा करने की परंपरा है। भावनाएं, बच्चे बचपन में गुल्लक को हिलाकर सिक्कों की खनक सुनना और उसके भरने का इंतजार करना, बच्चों के लिए ये एक अनूठा आनंद होता है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने लिख भेजा है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है, गुल्लक सिर्फ पैसे रखने का डिब्बा नहीं बल्कि बचपन का पहला बैंक है जो बच्चों को बचत का महत्व, धैर्य और वित्तीय जिम्मेदारी सिखाता है। ये एक पारंपरिक रूप से मिट्टी का बना होता है जिसमें सिक्के डालने के लिए पतली दरार होती है। इसी तरह की बातें हमारे सारे श्रोताओं ने लिखी है और बहुत सुंदर सुंदर गुल्लक से जुड़ी हुई यादें संजोई हुई है। पर आप क्या करना है दीपा,
0: हमें तो एक गीत सुनना है,
1: तो सुनवाते ही गीत।

0: आदमी आए और बात हुई, और जब उन्होंने पैसा निकाला, मतलब सारी बात तय हो गई होगी पैसों की, तो उन्होंने जब पैसा निकाला तो सिर्फ 10, 20 और 5 के सिक्के थे। मेरे देवर ने पूछा कि इतना पैसा तुम कहाँ से लाए हो, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी सब जमा करके रखी थी साइकिल लेने के लिए। हमारे मुँह से कुछ शब्द नहीं निकला, हमें ऐसा लगा जैसे हम जड़ हो गए हैं। कितना भी उसने कहा कुछ पैसे ले लीजिए, मेरे देवर ने उसमें से सिर्फ 11 रुपये लिए और बोला कि अपनी बेटी को दे दो, फिर से इसे गुल्लक में जमा करें और यह हमारा आशीर्वाद है।
1: कितना भावुक कर गया ना ये संदेश।
0: बिल्कुल,
1: सचमुच मेरी तो आंख नम हो गई। हाँ। इस तरह से भी यानी देखिए यहाँ पर ऐसा विरोधाभास है कि यहाँ पर कितने सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें पैसों की कदर नहीं होती, और कितने ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए इतना इंतजार करना पड़ता है, इतने सारे पैसे जमा करना पड़ता है।
0: बिल्कुल, और हम अपने, ये हमारे ऊपर होता है सोनाली, कि हम अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं,
1: किस तरह की परवरिश
0: कर रहे हैं। कहीं देखिए ना, बच्चे छोटी सी बात बिल्कुल मान जाते हैं, वो हम जैसा कहते हैं वैसा सुन लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं देखने में आता है कि बच्चे बहुत ज्यादा जिद पर एकदम अड़ जाते हैं। बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इस बारे में संदेश लिखा है, ये पहला संदेश मैं पढ़ रही हूँ, कि मुझे ये कहना है बच्चे जिद कभी कभार ऐसी जिद कर देते हैं जिन्हें पूरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ना पूरी करो तो बच्चे घर में तूफान मचाकर बैठ जाते हैं और पूरे घर को सर पर उठा लेते हैं। लेकिन बच्चों की हार जीत को पूरी करना चाहिए, ये जरूरी नहीं। बच्चों को ये समझना चाहिए कि वो जिस चीज की जिद कर रहे हैं वो कितना जरूरी है या कितना नहीं, उन्हें यह करना चाहिए या नहीं, ये बात उन्हें समझा देना चाहिए। और अगर कभी कभी वो ना माने तो उन्हें थोड़ा सा, आप स्ट्रिक्ट भी ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा कड़क होकर के उन्हें ये बात समझाना बहुत जरूरी है।
1: और बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं ना दीपा, वो हमें ऐसा लगता है कि मासूम है, उन्हें क्या पता है, पर उनकी नजर सब तरफ रहती है। कभी ऐसा होता है ना कि हमने पैसे निकाले बैंक से और ऐसे ही रख दिए, और फिर ऐसे ही हम बार बार करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अरे हमारे घर में तो बहुत पैसे हैं, या फिर हमारी मम्मी भी तो ऐसे ही बिना सोचे समझे सामान लेकर आती है, या फिर हमारे यहाँ तो फिर हमारे लिए ही क्यों अनुशासन है। तो पहली पहल तो हमें करना चाहिए कि बच्चों के सामने हमें इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के वही बच्चे ने इतने ज्यादा जिद्दी बन जाते हैं, और फिर हम सिर्फ बच्चों को दोष देते हैं पर उसमें कुछ कारण हमारा भी होता है कि हम उनकी परवरिश कैसे
0: कैसे कर रहे हैं।
1: एक साथी ने लिखा है दीपा कि बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे नटखट जिद करते हैं जैसे खिलौनों के लिए, तो माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सभी के लिए सुखद अनुभव होता है, लेकिन बड़े बच्चे अगर ऐसी जिद करने लगे तो उनके हित में ना हो तो माता पिता और घर के बड़ों को समझा कर साफ मना करना चाहिए। हमारे बच्चे जब से नर्सरी क्लास में स्कूल जाने लगे तभी से सभी ने हमारा सम्मान करते हुए सिर्फ अपनी पढ़ाई से रिलेटेड वस्तुओं की ही डिमांड करते हुए आज भी उनकी यही सोच है और जिद नहीं करते। कितने संस्कारी बच्चे हैं।
0: बिल्कुल, देखो ना। और इसी तरह से एक और संदेश है कि राजहट, त्रियाहट और बालहट तीनों ही जिद मनुष्य का स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और आगे कहती है कि भगवान प्रभु कृष्ण चंद्रमा को ही लेने की बात ठान बैठे थे, तब माता यशोदा ने अपनी बुद्धि से उनकी जिद को पूरा करने के लिए आंगन में थाली में पानी भर कर रखा और उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाया और बोली कि ये ले लो। तो बच्चों का जिद्दी होना उनके विकास का एक सामान्य हिस्सा है, इसे संभालने के लिए चिल्लाने या डांटने के बजाय शांत रहना चाहिए। उन्हें आदेश देने के बजाय विकल्प दें, पहले अपना होमवर्क कर लो तब टीवी देखना, या पहले दूध पी लो तब तुम्हें चिप्स मिलेंगे, और उनकी बात सुनने के बाद उन्हें तर्क से समझाना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये भी जरूरी है कि आप हर बार अगर वो चिप्स की जिद करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि आप बोलो कि पहले आप होमवर्क करो फिर चिप्स देंगे। चिप्स उनको खाना उनके सेहत के लिए ठीक नहीं है, ये भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सामग्री लिखी होती है उस पैकेट में पीछे वो उनको समझाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिल्कुल उनका इस पे कोई कंट्रोल कहीं भी कुछ भी नहीं है, वो उठा उठा करके चिप्स लेते हैं। ये वाकई में एक अलग विषय जो कि विचारणीय है।
1: जी, एक साथी ने लिखा है कि वह क्या कहने उस जिद के, भाई गुल्लक पर जीने के अभ्यस्त होकर उसके पैसे खर्च करने की छूट नहीं थी, यदि जिद की भी जाती तो भली भांति समझाया जाता था, और जिद को पूरी नहीं करने के उद्देश्य से गुलाब जामुन तक घर में बनवाया जाता था और केवल भुनी हुई मूंगफली ही पिताजी खरीद लाया करते थे। इतने सख्त और अनुशासन प्रेमी थे, जबकि बच्चों के जिद को पूरे करने के लिए माँ यशोदा ने तो थाली में ही चांद को उतार दिया था। ठीक उसी तरह जिद को ठोक ठाक कर ही उसके विकल्प स्वरूप ही पूरे होने वाले जिद को ही तरजीह दी जाती रही है। इन्होंने कहा है कि भाई यानी हर समय बच्चों की जिद पूरी करना जरूरी नहीं है जहां पर तुम्हें योग्य है। और ये भी बात है ना कि अगर बच्चों ने जिद की है ना तो हम तुरंत ही उन्हें बोल देते कि हाँ हाँ हाँ कर देंगे हम, तो

0: ऐसा भी नहीं करें, सोच समझ के उनसे वादा करना
1: क्योंकि
0: उतना
1: आजकल के
0: भी।
1: बच्चे बहुत तेज होते हैं और बहुत
0: स्मार्ट होते।
1: सतर्क और हाँ सब जानकारी लिए हुए होते हैं। एक संदेश ये भी आया है सोनाली, ये कहते हैं कि सिर्फ बच्चे ही क्यों, बड़े भी जिद करते हैं, जो ज्यादातर अपने अनुचित मांगे पूरा करवाने के लिए जिद करने के लिए रूठ जाके या गुस्सा होके या जोर से चिल्लाने वाले जैसी उनके ये मुख्य लक्षण होते हैं। कभी थकान, कभी खराब स्वास्थ्य या कभी तनाव के कारण भी चिड़चिड़ापन आ सकता है। हाँ बड़ों में ये आ सकता है, लेकिन चूंकि बड़े, क्योंकि घर के बड़े हैं, वो बार बार अगर इस तरह से करेंगे तो बच्चों को लगेगा कि अगर बड़े ही इस तरह से चिड़चिड़े हो रहे हैं या जिद कर रहे हैं तो आप हम छोटों को क्या समझाएंगे। तो बड़ों को भी यहाँ पे बड़ा संभल रखना पड़ता है।
0: और जो ये ना जिद्दीपन का जो गुण है ना, ये बचपन में ही जिसका पनप जाता है तो फिर आगे जाके वो बढ़ते ही जाता है। कि
1: हाँ
0: बचपन में माँ
1: जी
0: ने नहीं सुना तो दादी ने बात पूरी कर दी, पिताजी ने नहीं सुना तो दादाजी नाना जी ने जिद पूरी कर दी, नहीं तो बुआ ने जिद पूरी कर दी। तो फिर जो बच्चों को मालूम होता है, बड़े स्मार्ट होते हैं बच्चे, उन्हें मालूम होता है कि अभी इनसे, इनने नहीं की ना, तो उनसे मांग लेते हैं। और
1: हाँ
0: ऐसे करते उनका जिद्दी स्वभाव बन जाता है, वो बड़ेपन होने के बाद में तो और भी बढ़ते जाता है। एक साथी ने लिखा है कि बच्चे जिद वाली बात चली है बच्चों की, तो मैं बचपन में बहुत जिद्दी था, गर्मी में कोट पहना था, एक बार माता जी गर्म कोट छुपा दिया तो मैं रोने लगा, जिद पकड़ ली कि कोट पहनाया गया, तब मैं चुप हुआ। बचपन से मुझे कोट अच्छा लगता था और मैं सर्दी के मौसम में पहनता हूँ, पहना था जब मैं 7 साल का था। तो
1: यानी
0: ये तो
1: सर्दी की जो मोटी कोट
0: हाँ,
1: होते हैं
0: वो भी
1: वो
0: गर्मियों में
1: गर्मी में पहनना इस
0: हाँ
1: तरह की जिद करने लगे थे। तो भाई कहीं पे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा ये माहौल में गर्मी ना हो जाए, थोड़ी सी ठंडक लेकर आते हैं।
0: सुनते हैं।

0: और ये ठंडी हवा में डोलते डोलते कहाँ पहुंच गए हम?
1: हम एक ऐसे शहर में पहुंच गए जहां पर हमारी सखी ने कहा है कि अब हमारे शहर में अभी इतनी बारिश नहीं हो रही है, तो हो जाएगी बस थोड़े ही दिन में, इधर का पानी उधर भी चला जाएगा। वैसे एक साथी ने लिखा है कि हम बचपन में इतने नटखट थे, इतने शरारती थे कि गुल्लक के जो नोट ऊपर आ जाते थे ना, तो हम चिमटे से निकाल लेते थे।
0: ये देखिए, ये भी बड़ी खूब एक तरकीब है कि कहाँ से क्या क्या चीजों की में दिमाग चल जाता है सबका। और देखिए, हमें भी एक आइडिया मिल गया कि पतली सी चीज कोई निकालनी हो तो चिमटे का इस्तेमाल किया दिया जाए।
1: हमारे एक पहचान वाले थे, तो उनके घर में ना एक ऐसा डिब्बा आता है ना, जैसे रबड़ी वाला, जो जो खीर बनाने में वगैरह इस्तेमाल करते, तो उसमें वो उनकी मम्मी ने कहा था कि त्योहार के दिन ही खोलना है, तो उन्होंने क्या किया कि उसमें सुई डाल दी उसमें और छोटा सा छेद कर दिया और उसे मुंह में लगा लगा के वो पीने लग गए थे। तो ऐसी भी शरारत
0: ऐसे
1: बच्चे
0: भी
1: करते।
0: शरारत होती है। और एक जिद की बात पर हमारी एक बहन ने लिखा है कि इस बार गर्मियों में हम सास बहू ने मिलकर थोड़े चिप्स बनाए हैं, बस इसलिए कि कभी बच्चे अगर जिद करते हैं तो घर में ही इसे तल कर एयर फ्रायर में भून कर दे दिया जाए। तो ये
1: क्या
0: बात
1: बात
0: सही
1: है।
0: है कि आप बाजार के वो पैकेट के बदले में अगर आप ये घर में ही तल लें तो भी कोई उसमें बुराई नहीं है, या एयर फ्रायर में आप उसको उसको फ्राई करके दीजिए तो वो भी बहुत अच्छा एक विकल्प है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और बारिश की जो बात हम कर रहे थे ना सोनाली, तो हमारी एक सखी ने लिखा है कि आज मैं डॉक्टर के पास गई थी, लौटते समय बड़ी तेज बारिश आई और सारा ट्रैफिक जल्दी जल्दी उसमें बहुत जल्दी जल्दी सब लोग भागे जा रहे थे। मुझे भी लौटना था, बारिश की वजह से सड़क फिसलने वाली हो रही थी, तो मैंने ओला की, मतलब उन्होंने कैब बुक कर लिया था और जल्दी से बैठकर वापस आई। बार बार ऑटो वाले से धीमे चलने को कह रही थी कि कहीं फिसलने में कहीं गाड़ी स्किड कर जाती तो वो ना हो।
1: तो अपना अपना ध्यान रखना है। एक हमारे सखी ने लिखा है कि बारिश के मौसम में सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए सड़क यातायात सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अत्यधिक सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। मानसून के दौरान सड़कों पर फिसलन बढ़ जाती है और विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे सड़क यातायात नियंत्रण प्रभावित होता है। हेडलाइट्स चालू रखें। भारी बारिश में दृश्यता कम होने पर लो बीम हेडलाइट्स का प्रयोग करें। वाइपर्स की जाँच शुरू करें। यात्रा शुरू करने से पहले विंडशील्ड वाइपर्स सही ढंग से काम करने की पुष्टि करें। और इन्होंने कहा कि कार के शीशों पर जमी भाप को हटाने के लिए भी डिफॉगर ऑन करें। और सबसे ज़रूरी बात है कि जो बारिश में जो मेन होल खुले रहते हैं
0: जी
1: तो संभल के चले। बहुत सारे लोग मोबाइल देखते हुए चलते हैं तो
0: अभी
1: उसमें
0: भी ये, जबकि इतनी बातें और इतनी घटनाएं हम देख लेते हैं, फिर भी इस बारे में हम थोड़े से हल्के में ले लेते हैं इस
1: केयरलेस
0: चीज़ को,
1: हो जाते हैं,
0: केयरलेस हो जाते हैं।
1: तो लापरवाही ना बरते। जब भी रास्ते से पैदल चल रहे हो, गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल भी हमें सड़क का ध्यान रखना है कि कहाँ पर गड्ढा है, तो ऐसा ना हो कि हम उस गड्ढे में गिर जाएं।
0: बिल्कुल। और अभी क्या कर सकते हैं?
1: गाना सुनते हैं।

0: बारिश में कहीं कोई ज़रूरतमंद दिखे तो उसका बाहें थाम लीजिए, उसके हाथ पकड़ लीजिए, या कहीं ऐसा लगता है कि किसी के साथ की ज़रूरत है तो अपना हाथ आगे कर दीजिए, है ना।
1: बिल्कुल, इसी का नाम तो ज़िंदगी है
0: जी। बिल्कुल, और इसी ये साथ में ही हर मौसम बड़े प्यार से निकल जाता है।
1: बिल्कुल, ऐसी सोच हो ना तो ये मौसम क्या ज़िंदगी ही बड़ी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ जाती है।
0: बात तो बिल्कुल सही कही, संदेश पढ़ रही हो ना
1: जी। बारिश के दिनों में रोड पर जब भी हम निकले तो अच्छे से देख कर चले, कहीं रोड में गड्ढा तो नहीं, कोई मेन होल तो नहीं खुला, कहीं कोई बिजली के करंट या खंबे में से तो पानी नहीं आ रहा है। अगर आपको पता चलता है तो तुरंत आसपास के लोगों को इकट्ठा करके विभाग को खबर करना चाहिए। यात्रा करते समय ट्रैफिक नियम की कुछ बात लिखते रहे, और उन्होंने कहा कि इस तरह से अपने जो साथी है उनकी मदद करते रहिए। कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि वायर कहीं लटका हुआ है, कहीं पेड़ कोई गिरने वाला है, तो उसकी भी जानकारी तुरंत देना चाहिए। कि कोई अगर बिल्डिंग ऐसी है कि दिख रही है कि उसमें दरारें दिखने लग गई है या टाइल्स गिरने लग गए हैं उसके, तो इससे हमें दूसरों को सचेत करना बहुत जरूरी है।
0: और एक संदेश कहता है कि हम जहाँ पर रहते हैं रोज आना जाना करते हैं तो हमें वहाँ पता होता है कि रास्ते पर कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ ब्रेकर है। तो जब हम किसी नए शहर में जाते हैं या कोई अन्य शहर में जाते हैं तो बारिश में संभाल के चलना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि रास्ता कैसा है, वो रोड जहाँ पे हमें रोज का आना जाना है वो कैसा है। तो उस वक्त आप जरूर इस मौसम में ख्याल रखिए।
1: एक साथी ने लिखा है कि बारिश शुरू होने पर सड़कें सबसे ज्यादा फिसलन भरी हो जाती है, क्योंकि पानी जमा हुए तेल, ग्रीस और धूल के साथ मिलकर टायरों की पकड़ को कम कर देता है। यहाँ तक कि पानी की पतली परत होने पर भी, खासकर बारिश के पहले कुछ मिनटों में हाइड्रोप्लानिंग हो सकती है, इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। साथ ही और आप गाना सुनते हैं,
0: चलिए।

0: सोनाली देखिए, अब वक्त तो वाकई में हो चुका है सयोनारा यानी कि बाय कहने का, विदा लेने का।
1: पहले श्रोताओं को हम धन्यवाद कहेंगे, इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखे। इसी तरह कमेंट्स लिखते रहिए, विविध भारती से जुड़े रहिए और सखी सहेली सुनते रहिए। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप सभी को सोनाली पाठक
0: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सहेली।

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। और मुंबई की इस झमाझम बारिश में हो रही है श्रोताओं की बातचीत की बरसात और साथ में पड़ रही है गानों की फुहार। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला बातचीत का, देखते हैं ये

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: विराम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी भगवान जी, बताइए क्या हाल है आपका और सीहोर का क्या हाल है?
1: सीहोर में दीदी बारिश हो रही है और हमारा हाल भी अच्छा है दीदी। हम खेती किसानी करते हैं और हमारे इधर सोयाबीन और मक्का की बुआई हो चुकी है दीदी। 12-13 दिन की फसल हो चुकी है हमारे इधर।
0: वाह भाई वाह, क्या बात है। तो आपका अपना क्या शौक है बताइए
1: दीदी? मुझे तो क्रिकेट देखना का बहुत शौक है और मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था, अब तो नहीं खेलता हूँ दीदी।
0: अब क्यों छोड़ दिया
1: दीदी? अब क्या है, खेती किसानी में रहते हैं ना, इसलिए टाइम नहीं मिलता दीदी।
0: तो क्रिकेट खेलने के शौकीन रहे हैं, तो रेडियो से क्रिकेट कमेंट्री का बहुत चार्म रहा है, तो आप सुना करते थे क्रिकेट कमेंट्री रेडियो पर?
1: जी दीदी, हम बहुत सुनते थे। पहले क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी दीदी, तो हम रेडियो पे कमेंट्री सुनते थे दीदी और बहुत अच्छा लगता था हमको।
0: जी जी, और एक अलग नॉस्टैल्जिया होता था रेडियो से क्रिकेट कमेंट्री का, एक ही रेडियो और चार चार पांच पांच लोग मिल के सुना करते थे, है ना? वो गजब के दिन थे
1: दीदी। चार पांच क्या, हमारे यहाँ तो दीदी पूरे गाँव के करीबन 20-25 इकट्ठा लोग हो जाते थे गाँव में से, फिर सुनते थे दीदी।
0: एक घर में रेडियो होता था और आंगन की मुंडेर पर रख दिया जाता था और बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर रेडियो सुनते थे, है ना? बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है खुददार और गाने के बोले तुम सा कोई प्यारा मासूम नहीं है, ये वाला भी सुनना है दीदी।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया। सुनते हैं

0: राजस्थान के डिडवाना कुचामन जिले के छोटी बेरी गांव से सिकंदर खान बोल रहा हूँ जी।
1: जी बताएं सिकंदर जी, क्या हाल है? ये कोयल की आवाज आ रही है भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या बाघ से बोल रहे हैं क्या किसी?
0: नहीं एक्चुअल में क्या, अभी मैं खेत में बैठा हुआ हूँ तो वहाँ से कॉल कर रहा हूँ आपको।
1: अच्छा बहुत बढ़िया, बारिश नहीं हो रही है?
0: राजस्थान में अभी एंट्री हो रही है धीरे धीरे, दक्षिण राजस्थान में तो मानसून आ गया अभी।
1: बढ़िया, ये कोयल की कूक तो बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ी मीठी तान छेड़ी है कोयल ने। कौन कौन से पेड़ हैं खेत के आसपास?
0: खेत के अंदर तो ये जामुन के हैं, पपीते हैं, आम वगैरह हैं।
1: तो खेत में किस चीज की बुआई चल रही है अभी?
0: अभी तो ये मानसून की बारिश में जो ये बाजरा है, गंवार है, ये मोठ वगैरह की बिजाई चल रही है जी।
1: और उसके बाद फिर धान की बुआई होगी जब बारिश होगी, तब
0: फिर वो जो रबी वाली फसल है वो स्टार्ट हो जाएगी।
1: जी जी, खेती किसानी की सुविधाएं क्या क्या उपलब्ध हैं आपके यहाँ?
0: यहाँ पे हमारे वैसे तो ये इंदिरा गांधी नहर की भी सुविधा है, उसके अलावा ये ट्यूबवेल है, कुएं वगैरह, इनसे भी सिंचाई हो जाती है। इन दिनों में मानसून जो हो जाता है तो उसकी भी फसल वो अच्छी होती है।
1: बढ़िया, बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
0: फकीरा पिक्चर है उनका गाना है, ओके रहूंगी तेरी,
1: दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी जी, तेरी।
0: मैं साहब बहुत पुराना श्रोता हूँ, जब से वो जो ये हेलो फरमाइश शुरू हुआ था कमल शर्मा ने 1996 में स्टार्ट किया था, वो मैंने पहला प्रोग्राम सुना था मैम साहब।
1: जी जी बहुत बढ़िया, तब से आप सुन रहे हैं, तब से तो कितने सारे बदलाव हुए प्रोग्राम्स में,
0: बहुत काफी चेंजेस हुए हैं साहब। लेकिन 26 साल में कॉल लगा नहीं, लेकिन 2026 में मेरी दूसरी बार बात हो रही है विविध भारती में।
1: जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम फकीरा।

0: जी सत्य प्रकाश जी, बताइए क्या हाल है आपका, इंदौर का क्या हाल है, बारिश वगैरह हो रही है?
1: हाँ, अभी पिछले एक हफ्ते से प्रकृति की बहुत अनुपम कृपा है कि अच्छी बारिश हो रही है और चारों तरफ हरितिमा और प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ गया है।
0: जी क्या
1: और
0: बात है।
1: ऐसा लगने लगा है कि सावन बहुत निकट ही है और आनंददायी वातावरण हो गया है। जी
0: सावन का जब इंतजार होता है तो मन यादों के गलियारे में पहुंच जाता है, तो जब
1: जी जी
0: सावन आता था तो आप अपने यादों के गलियारे में जाइए और बताइए कौन सा सावन आपके लिए बड़ा यादगार रहा है। बचपन में जो सावन के झूले पड़ते थे नीम के पेड़ पर, तो कभी
1: बिल्कुल,
0: झूलने का
1: वो
0: मौका
1: झूले
0: मिला?
1: भी याद आते हैं। पेड़ों पे जब गांव में जाते थे तो पेड़ों पे झूले झूलते थे, बड़ा मनोरम वातावरण लगता था सावन का। चारों तरफ एक जो प्राकृतिक सुषमा प्रकृति की दिखती थी, बहुत ही मन भावन रहती थी और आज भी वह सब देखने के लिए मन तरसता है। अब शहर में जरूर रह रहे हैं पर गांव की वो हरितिमा और वसुंधरा जो प्राकृतिक वातावरण में जो सावन में हो जाती है वो बहुत याद आती है। और अक्सर हम जाया भी करते हैं गांव में,
0: जी
1: तो वो पुराने दिनों को याद करके, सावन को याद करके मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है, हर्षित हो जाता है।
0: तो उन दिनों में कजरी वगैरह गाई जाती थी सावन में, याद है क्या आपको?
1: हाँ, मैंने बहनों से भी सुने हैं वो है। अभी तो खैर मैं चूंकि अभी वरिष्ठ नागरिक हूँ, 71, तो थोड़ी सी याददाश्त भी थोड़ी सी क्षीण हो चली है, पर हाँ मैंने बहुत सुने हैं, बड़े मन भावन गीत और कजरी
0: हाँ
1: रही है।
0: आप बताइए आज
1: जी
0: कौन सा गाना सुना चाहेंगे, और ये भी बताइए आपने कहा इतने वरिष्ठ नागरिक हैं, कहाँ पर आपने काम किया और कितने साल से रेडियो सुन रहे
1: मैंने
0: हैं?
1: बैंक में आधिकारिक के रूप में काम किया करीब 40 वर्ष
0: अच्छा
1: और अभी 10 साल से सेवानिवृत्त हूँ। सामाजिक सेवा में और दूसरे कार्यों में समय निकल जाता है, पारिवारिक दायित्व भी है, उनका भी निर्वहन करते हैं। लोग रिटायरमेंट को ये कहते हैं कि अब आपकी सेकंड इनिंग चालू हो रही
0: पारी।
1: है,
0: हाँ
1: तो वो एक तरह से सही भी कहते हैं कि
0: हाँ
1: अपन उन दायित्वों को पहले सर्विस में रहते नहीं पूरे कर पाए, तो उन दायित्वों का निर्वहन कर लें। और जो आनंद कहीं किसी विशेष स्थान की यात्रा वगैरह का नहीं ले पाए हों, कंपोजिट टूर प्रोग्राम हो, जब समय मिलता है तो पर्यटन के लिए, तो उन स्थानों पर जब भी जाने का मौका लगता है तो समूह के साथ चले जाते हैं
0: बताएं,
1: और बड़ा
0: बिल्कुल
1: आनंद
0: बिल्कुल,
1: आता
0: घूम के आएं और एंजॉय करें। तो सत्य प्रकाश दीक्षित जी का फोन बीच से डिस्कनेक्ट हो गया, बातचीत उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से की, शुक्रिया अदा कर रहे हैं उनका, और उनके लिए हम सुनवा रहे हैं अनजाना फिल्म का ये गाना।
2: है।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं अशोक आनंद बोल रहा हूँ, लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से।
0: आपने लेक सिटी उदयपुर कहा, तो पूरे देश में बहुत सारी जगहों पर खूब बारिश हो रही है, मुंबई में भी। तो क्या आपके उदयपुर में बारिश हुई, तो झीलें भर गई?
1: कल शाम को भी बहुत झमाझम बारिश हुई थी।
0: क्या बात है, झीलें लबालब भर गई होंगी फिर तो।
1: नहीं, अभी उसमें बहुत टाइम लगेगा, अभी उसमें जुलाई अगस्त तक में भरेगी। झीलों की नगरी है तो काफी सारी झीलें हैं, और जैसे जैसलमेर लेके तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
0: जब बारिश होती है तो आप सोचते हैं कि राजस्थान में खास तौर से पानी की कमी होती है, तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुछ सोचते हैं, कुछ प्लान करते हैं लोगों से मिलजुल कर?
1: मैंने जैसे कई बार देखा अपने घर पे भी, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जैसे अपने छत पे जो पानी होता है उसको पाइप से अपने वापस बोरिंग के अंदर जैसे सेट करवा रखा है, और
0: जी
1: वेस्ट पानी करते नहीं है। पर राजस्थान में हमारा उदयपुर शहर जैसे है ना, इतना पानी का यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम जैसे राजस्थान में लोग बोलते हैं कि सूखा होगा, वो एक्चुअली क्या है, जोधपुर जैसलमेर उससे ज्यादा सूखा होता है।
0: जी जी वहाँ की और जगहों के बारे में बताइए, उदयपुर के आसपास क्या कुछ है
1: जी, मैं उदयपुर
0: पर्यटन?
1: के बाद में बताना चाहूंगा कि जैसे उदयपुर के पास में एक सज्जनगढ़ फोर्ट किला है, जिसकी दीवार विश्व की सबसे दूसरे नंबर की दीवार है, और उदयपुर पर्यटक की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो विश्व में एक नंबर पे आता है।
0: वाह,
1: तो पहले किसी जमाने में फर्स्ट प्रायोरिटी कश्मीर और दिल्ली हुआ करती थी, अब उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी मोस्टली होती है कि राजस्थान में उदयपुर या और दूसरे किले फोर्ट वगैरह,
0: जी
1: और
0: जी
1: राजस्थान के कुछ अच्छे मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध थी
0: बिल्कुल,
1: उनको देखने के लिए, विजिट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं।
0: क्या बात है, आप जो जानकारी दे रहे हैं, हमारे श्रोताओं की जानकारी समृद्ध हो रही होगी, और
1: जी,
0: बड़ा अच्छा लग रहा है इतनी सारी बातें आपने
1: एक
0: बताई।
1: चीज मैं और आपसे अर्ज करना चाहूंगा,
0: जी हाँ,
1: गाना आज का मेरा जो पसंद का है वो खुदगर फिल्म का है, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, नितिन मुकेश। नितिन मुकेश जी मेरे फेवरेट सिंगर हैं, बहुत अच्छा लगता है उनका गाना सुनना मुझे।
0: और मुकेश के
1: और
0: गाने।
1: जी मुकेश के भी सुनता हूँ, किशोर जी के भी, लता जी के भी, खासकर मदन मोहन जी और लता जी का जो कम्बिनेशन है ज्यादा लाइक करता हूँ।
0: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया और इतनी सारी बातचीत की। तो बस विविध भारती से भी सारे श्रोताओं से आपकी दोस्ती यूं ही सलामत रहे, इस बात के साथ
1: जी
0: बातचीत को दे रहे हैं
1: जी
0: विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: दीदी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: दीदी आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया बोल रहा हूँ।
0: राजू जी, आगरा में क्या खास है बताइए, कोई विशेष धरोहर है?
1: जी दीदी, आगरा में तो सबसे पहले तो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल ही है, लाल किला है, सिकंदरा है, आगरा का पेठा।
0: आगरे का पेठा भी बहुत मशहूर है, क्या बात है भाई।
1: जी बिल्कुल, और आज मेरा सौभाग्य है कि मेरी बात आज ममता दीदी से हो रही है, बड़ा खुशी हो रही है दीदी मेरे को।
0: जी बहुत शुक्रिया, हमें भी बहुत खुशी हो रही है। अब जरा आगरे के ताजमहल के बारे में बताइए, आपने देखा है ताजमहल?
1: देखिए दीदी, मैं तो ब्लाइंड पर्सन हूँ।
0: अच्छा अच्छा, ओ
1: तो मैं तो कभी ताजमहल गया नहीं, मैं तो उन्हीं जगह जाता हूँ जहाँ भगवान का मंदिर होता है, क्योंकि भगवान के मंदिर में हमें मंदिर नहीं देखना होता, भगवान हमें खुद देखते हैं। हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हमें भगवान को दिखाई दे या न दे, लेकिन भगवान हमें दिखे।
0: जी जी
1: दीदी, मैं
0: बिल्कुल, बहुत सही बात है। तो बताइए और क्या करते हैं आप दिन भर घर में?
1: जी दीदी, मुझे संगीत से शौक है, मैं रेडियो सुनता हूँ, आपके विविध भारती के सभी कार्यक्रम सुनता रहता हूँ अपने रेडियो के माध्यम से।
0: अब हमें बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, और आपने कहा कि संगीत का शौक है तो निश्चित रूप से आप भी गाते होंगे, क्या सीखा है आपने गाना क्या?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आज की फिल्म है लम्हे, आवाज है लता जी, इला अरुण जी और सखियों की, और गाने के बोल हैं
2: मेघा रे मेघा, मेघा रे मेघा, मेघा रे मेघा, मेघा रे मेघा,

0: अरे तूने किसको याद किया, ये वाला गाना सुनना था दीदी।
1: वाह, बहुत अच्छा गुनगुनाया आपने। तो आपने कौन सा संगीत सीखा, शास्त्रीय संगीत या सुगम संगीत?
0: जी जी जी मैं ज्यादातर लाइट म्यूजिक में चलता हूँ, कथाओं में, भागवतों में, सुंदरकांड में, सत्संगों में। मैंने कुछ नहीं सीखा, चोरी कभी मैंने कहीं से कुछ नहीं सीखा, मेरे ऊपर भगवान की कृपा है जो कुछ भी है।
1: अच्छी बात है। तो कोई लोकगीत भी याद है उत्तर प्रदेश का?
0: जी बिल्कुल, ब्रज का लोकगीत मेरे को बिल्कुल याद है।
1: तो सुनाइए फिर हमारे श्रोताओं को भी।
0: अरे बंसी।

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी पटना है। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 हुए हैं। आरंभ हो रही है हमारी आज की दूसरी सभा। इस सभा में आप सभी का बहुत स्वागत, आप सभी को प्रणाम। अभी आपके साथ मैं हूं जया। अभी से लेकर रात्रि के 11:10 तक हम आपके साथ रहेंगे। अपनी सभा में हम आपके लिए ढेर सारे कार्यक्रमों के साथ उपस्थित हो रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन कार्यक्रम का आगाज हमेशा की तरह कर रहे हैं कार्यक्रम युव वाणी से। आइए सुनिए कार्यक्रम युव वाणी।

0: बाबू मशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
1: यूं तो ये एक फिल्म का डायलॉग है, मगर इससे सच्ची बात कुछ भी नहीं। जिंदगी जीने के लिए जोश, जज्बा और खुद से प्यार होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनंदनी।
0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ स्मृति।
1: आज शाम हम हाजिर हुए हैं आपके और हमारे मन पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी को लेकर।
0: दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम में हम कितनी सारी बातें करते हैं, चर्चा करते हैं अनेकों विषयों पर और सुनाते हैं आपको बेहतरीन गाने, है ना?
1: हाँ बिल्कुल, और हमारे श्रोता भी इस कार्यक्रम को की भरपूर आनंद लेते हैं और इंजॉय करते हैं, क्यों? ठीक कहा ना?
0: बिल्कुल, और क्या, हमारा कार्यक्रम है ही सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग। आज भी हम आपके लिए लाए हैं बहुत सारी बातें, ढेरों जानकारियां और मनपसंद मजेदार गाने।
1: जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे फैशन डे के बारे में, फिर जानेंगे वर्ल्ड मिसोफोनिया डे के बारे में, फिर हम सेलिब्रेट करेंगे दो ऐसे महान सितारों का जन्मदिन जिन्होंने अपने डायरेक्शन और एक्शन से सबका दिल जीत लिया।
0: जी हाँ, फिर हम आपको ले चलेंगे थ्रोबैक थर्सडे की ओर और जानेंगे कुछ रोचक तथ्य भी, साथ ही साथ आपको सुनाएंगे प्यारे प्यारे गाने। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि
1: होने वाला है धमाका और आने वाला है ये पहला गाना।

0: अभी आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह की आवाज में ये गाना। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे फैशन डे के बारे में। फैशन, ये वर्ड खुद में ही बहुत ही फैशनेबल है।
1: हाँ दोस्तों, आप भी इस बात से खुद को रिलेट कर पा रहे होंगे। खुद को सुंदर दिखाना, खुद के लिए रेडी होना, प्रेजेंटेबल दिखाना, एक तरह से हमारी कॉन्फिडेंस को का लेवल अप करता है।
0: बिल्कुल, तैयार होके जब हम अपने आप को सोचते हैं, जब हम ये वर्ड के बारे में सोचते हैं फैशन, तो हमारे मन में एक इमेज बनती है जिसमें हम खुद को सबसे बेस्ट अटायर में इमेजिन करते हैं, सबसे बेहतर पहनावे में खुद को सोचते हैं, देखते हैं।
1: हाँ, सोशल मीडिया पर रील्स देखते हुए तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे फैशन का मतलब बस सिंपल कंफर्ट और कॉन्फिडेंस होता है। तुम जैसे जो भी पहनो, अगर तुम वैसे ही हो और उसमें आप सहज महसूस कर रहे हैं, तो वो आपके लिए एक अच्छा अटायर है। आत्मविश्वास के साथ उसे कैरी करना भी अच्छा होता है। जबरदस्ती किसी ट्रेंड को के पीछे भागकर खुद को असहज करना फैशन नहीं है मेरे हिसाब से।
0: बिल्कुल, कपड़े आरामदायक न हो तो सारा लुक और मूड दोनों खराब हो जाता है।
1: बिल्कुल, फैशन का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों को दिखाने के लिए खुद को तकलीफ देना
0: बिल्कुल
1: देने में
0: सही
1: लगे।
0: बात,
1: असल में कपड़े हमारे व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का आईना होते हैं। हम बिना कुछ बोले अपने कपड़ों के जरिए दुनिया को बताते हैं कि हम कौन हैं।
0: बिल्कुल। वैसे सुनंदनी, आजकल ऑफिस के माहौल में भी फैशन काफी बदल गया है ना? पहले कॉरपोरेट का मतलब होता था सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट या बोरिंग चेक्स या कुछ ऐसा सिंपल सा, बट अब ऑफिस में भी एथनिक, फ्यूजन और ब्राइट कलर्स लोग पहनने लगे हैं।
1: हाँ, यह बदलाव बहुत अच्छा है। इसे हम बिजनेस कैजुअल या फिर इंडो वेस्टर्न लुक भी कहते हैं। आजकल खादी के कुर्ते, लिनन की शर्ट्स और कॉटन की साड़ियाँ ऑफिस के लिए बहुत ट्रेंड में हैं। ये फॉर्मल भी लगते हैं और भारतीय मौसम के हिसाब से बहुत आरामदायक होती हैं।
0: सही कहा। और वैसे भी आजकल तो सस्टेनेबल फैशन का जमाना चल रहा है। मैंने हाल ही में एक आर्टिकल में पढ़ा था कि कपड़े बनाने वाली जो फैक्ट्रियां होती है ना, वो पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। बिल्कुल, कई तरह के केमिकल्स यूज होते हैं, धागे यूज होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं, तो पर्यावरण को तो बिल्कुल हानि पहुंचती ही है। इसीलिए अब लोग इन्वायरमेंट के अनुसार ही कपड़े चुन रहे हैं।
1: हाँ, मैं भी इस बात को बहुत सपोर्ट कर रही हूँ। सस्टेनेबल फैशन का मतलब है कि ऐसे कपड़े चुनना जो लंबे समय तक चलें, जिसकी क्वालिटी अच्छी हो और जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचाए। इसका एक और मज़ेदार तरीका है
0: क्या?
1: मिक्स एंड मैच। जैसे अपनी पुरानी सिल्क की साड़ी से कोई भी सुंदर श्रग या फिर कुर्ती बनवा लेना, या एक ही स्कर्ट को तीन अलग अलग टॉप्स के साथ पहनना। स्टाइलिंग का कोई तरीका नहीं है, वो बस आपके लुक पे डिपेंड करता है।
0: वाह, ये तो सच में बहुत बढ़िया आइडिया है। मेरी अलमारी में भी कई ऐसी साड़ीज और स्कर्ट्स रखे हुए हैं जिन्हें मैं ज्यादा नहीं पहनती, बट इस बार तुम्हारे कहने पे मैं बिल्कुल वो ट्राई करने वाली हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल करना आप, क्योंकि फैशन डे मनाने का असली मकसद भी यही है कि हम अपनी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को बाहर लाएं। फैशन सिर्फ महंगे ब्रांड्स या फिर महंगे शोरूम्स तक सीमित नहीं है। यह एक बात पर निर्भर करती है कि आप साधारण सी चीज़ को भी कितने सलीके से पेश करते हैं।
0: सच में सुनंदिनी, आज इस बारे में बात करके तुमसे बहुत कुछ पता चला और फैशन को लेके जो लोगों के

0: लोगों के मन में ये मिथ होंगे या बहुत सारे डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। फैशन मतलब नए कपड़े खरीदना नहीं होता, फैशन मतलब हम कैसे पुराने कपड़ों को भी नए तरीके से पहनकर उन्हें अच्छे से ड्रेसअप कर सकें।
1: बिल्कुल, यही तो है असली स्टाइलिंग, है ना स्मृति? तो चलिए इसी से जुड़ा एक प्यारा सा गाना आपको सुनाते हैं।
0: बिल्कुल।

0: अभी आप सुन रहे थे अलका यागिनी और उदित नारायण की आवाज में ये गाना फिल्म ताल से।
1: तो श्रोताओं, अब हम बात करेंगे मिसोफोनिया डे के बारे में। तो सुनंदनी, हमारे श्रोताओं को बताइए कि ये मिसोफोनिया डे है क्या आखिर?
0: देखो, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो मिसोफोनिया का मतलब है आवाज से नफरत। यह एक ऐसी दिमागी या न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसमें इंसान को कुछ खास और आम आवाज़ों से बहुत ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ाहट

0: डर या तनाव होने लगता है।
1: अच्छा, पर ऐसी कौन सी आवाजें होती हैं जिससे किसी को इतना गुस्सा आ जाए या कोई इतना इरिटेट हो जाएगा?
0: इसमें बहुत ही सामान्य और रोजमर्रा की आवाजें शामिल होती हैं, जैसे किसी के खाना चबाने या सूप पीने की आवाज, पेन की टिप टिप, कीबोर्ड पर टाइपिंग की आवाज, किसी के जोर से सांस लेने की आवाज, या यहाँ तक कि घड़ी के टिक टिक से भी परेशानी होती है। हम और तुम इस आवाजों पर ध्यान भी नहीं देते, लेकिन मिसोफोनिया से पीड़ित व्यक्ति का दिमाग इन आवाजों को एक खतरे की तरह लेता है। वह चाहकर भी इस आवाज को इग्नोर नहीं कर पाते।
1: इसका मतलब मिसोफोनिया से ग्रसित लोग वाकई किसी बड़ी परेशानी से जूझ रहे होते हैं। मेरी एक फ्रेंड थी, पता है, उसे भी शायद यही बीमारी रही होगी, क्योंकि वो अक्सर इन छोटी छोटी आवाज़ों पर बहुत ही इरिटेटेड हो जाया करती थी, या कभी कभी उत्तेजित हो जाती थी, गुस्सा हो जाती थी कि अरे ये क्या आवाज़ कर रहे हो तुम लोग, पेन से ऐसे इस तरह से।
0: यही तो सबसे बड़ी समस्या है। इस बीमारी या स्थिति के बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं है। लोग सोचते हैं कि सामने वाला ओवर रिएक्ट कर रहा है या नाटक कर रहा है, लेकिन असल में उस व्यक्ति के पीड़ित जो पीड़िता है या पीड़ित है, उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना बढ़ जाता होगा, सोचो जरा।
1: सही बात है।
0: उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और वह अंदर ही अंदर बहुत असहज महसूस करने लगता है। कई बार तो वे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और लोगों से मिलना जुलना एकदम बंद कर देते हैं।
1: ये तो वाकई बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मामला है सुनंदिनी। तो क्या इसका कोई इलाज या कुछ थेरेपी वगैरह नहीं है?
0: फिलहाल तो इसका कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन इसे मैनेज किया जा सकता है। ऐसे लोग ऑफिस में काम करते हैं करते वक्त नॉइस कैंसिलेशन वाले हेडफोन्स या फिर एयरप्लेन का जो इस्तेमाल करते हैं, ताकि उन्हें बाहरी आवाजें ना सुनाई दें।
1: ईयरप्लग्स भी इसमें बहुत फायदा कर सकता
0: हाँ,
1: है।
0: ईयरप्लग्स। इसके अलावा
1: कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का ना?
0: हाँ,
1: हाँ।
0: जिसे सीबीटी भी कहा जाता है, वो भी थोड़ी मदद करता है।
1: तो इस वर्ल्ड मिसोफोनिया डे मनाने का मेन एजेंडा क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है इसका?
0: इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों में जागरूकता और सहानुभूति को फैलाना, ताकि लोग समझें कि अगर उनका कोई भी दोस्त, परिवार का सदस्य या सहकर्मी ऐसी ही किसी आवाज़ से परेशान हो रहा है, तो उसका मजाक ना उड़ाएं, बल्कि उसके सामने थोड़ा सचेत रहें। जैसे अगर हमें पता है कि उसे इस चीज़ से परेशानी है, तो हम उसके हिसाब से थोड़ी धीरे आवाज़ में बात करें, थोड़ा
1: बिल्कुल
0: शोर कम करें, ताकि उसे अच्छा महसूस हो।
1: बिल्कुल, हमें अपने आसपास के लोगों की मानसिक शांति का भी सम्मान करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो किसी तरह से कंफर्टेबल हैं या अनकंफर्टेबल हैं, ये भी हमें ज़रूर चेक करना चाहिए।
0: बिल्कुल स्मृति, एक अच्छे सहकर्मी या दोस्त की यही तो पहचान है। अब श्रोताओं, अब हम आपको सुनाते हैं ये अगला गाना।

0: तो श्रोताओं, अब हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत की जन्मदिन के बारे में जिनको हम सभी जानते हैं और शायद वो हमारे फेवरेट भी रहे होंगे, गुरुदत्त।
1: तुमने बिल्कुल सही कहा स्मृति, यह गाना, यह नाम और इनके फिल्म के गाने सबसे बेहतर फिल्म अमर फिल्म आर पार का है। और तुमने पहला तुम्हें पता है आज यानी 9 जुलाई को भारतीय सिनेमा के इसी सबसे महान और जानीता कलाकार का जन्मदिन है।
0: बिल्कुल, आपको बताते चलिए श्रोताओं कि उनका पूरा नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। वे सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता ही नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी निदेशक, डायरेक्टर या और निर्माता भी थे। उन्होंने प्यासा, कागज के फूल, साहिब बीबी और गुलाम, आर पार जैसी ऐसी फिल्में बनाई जो आज भी दुनिया भर के फिल्म मेकर्स के लिए एक मिसाल है।
1: हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि जब उनकी फिल्म कागज़ के फूल रिलीज हुई थी तो उस जमाने में
0: फ्लॉप हो गई थी।
1: फ्लॉप हो गई
0: हाँ
1: थी,
0: हाँ
1: लेकिन आज उसे दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से गिना जाता है।
0: बिल्कुल सही सुना था तुमने। गुरुदत्त साहब एक ऐसी शख्सियत थे जो समाज की कड़वी सच्चाई, इंसानी जज्बातों और कलाकारों के दर्द को पर्दों पर उतार देते थे। कागज के फूल भारत की पहली सिनेमा स्कोप फिल्म थी। उसमें लाइटिंग और कैमरे का जो इस्तेमाल इन्होंने किया था, वैसा आज के दौर में भी करना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है।
1: वाकई कमाल के डायरेक्टर थे और उनकी फिल्मों के गाने तो आज भी सदाबहार हैं। चाहे चौधरी का चांद हो या बाबूजी धीरे चलना, हर गाना अपने आप में एक कहानी कहता है।
0: बिल्कुल, और इसका श्रेय उनकी पारखी नजरों को जाता है। उन्होंने संगीतकार एसडी बर्मन, गीतकार साहिर लुधियानवी और गायक मोहम्मद रफी के साथ मिलकर हिंदी सिनेमा को सबसे बेहतरीन संगीत दिया था। इसके अलावा उन्होंने

0: ने इंडस्ट्री को वहीदा रहमान और जॉनी वॉकर जैसे दिग्गज कलाकार भी दिए, और इन दोनों को कौन नहीं जानता।
1: लेकिन जितना नाम और शोहरत उन्होंने कमाई, उतनी ही निजी जिंदगी में उनका उनका निजी जिंदगी उतनी ही दर्दनाक रही, है ना। केवल 39 साल की उम्र में वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए।
0: बिल्कुल, ये भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। वे अंदर से बहुत ही अकेले और संवेदनशील इंसान थे। सफलता की ऊंचाइयों पर होने के बावजूद भी वे मानसिक तनाव और अकेलेपन से जूझ रहे थे। उनकी ये रहस्यमयी मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। ऐसा लगता है जैसे फिल्म प्यासा का वो किरदार विजय असल जिंदगी में खुद गुरुदत्त ही थे।
1: कितनी अजीब बात है ना, जो इंसान पर्दे पर दूसरों की भावनाओं को इतनी खूबसूरती से दिखाता था, वह खुद अंदर ही अंदर कितना टूट चुका था। पर जो भी हो, आज उनके जन्मदिन पर हमें उनके इस दुखद अंत को नहीं, बल्कि उनके उस महान काम को याद करना चाहिए जो वे हमारे लिए छोड़ गए हैं।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। आज भी जब दुनिया भर में बेहतरीन सिनेमा की बात होती है, तो गुरुदत्त जी का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। वे भले ही शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपनी कालजयी फिल्मों के जरिए वे हमेशा अमर रहेंगे।
1: सही कहा। चलो आज मैं भी घर जाकर प्यासा फिर से देखूंगी, ताकि मैं उनकी आत्मा को एक अच्छे तरीके से याद कर सकूं और उन्हें श्रद्धांजलि दे सकूं।
0: बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया सोच है तुम्हारी। तो चलो अभी फिलहाल हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं उनकी एक और प्यारी सी फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना।
2: मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है इसमें भी धोखा है। मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है,

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म आर पार से गीता दत्त की आवाज़ में ये गाना। दोस्तों, आज एक और दिग्गज कलाकार का जन्मदिन है और उनका नाम आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे, और उनके वर्सेटाइल एक्टर और कोई नहीं है उनसे ज़्यादा।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। जब भी कोई संजीव कुमार जी का नाम लेता है तो सबसे पहले दिमाग में शोले के ठाकुर का ही चेहरा याद आता है। बिना हाथों के, सिर्फ अपनी आंखों और दमदार आवाज से उन्होंने एक्टिंग की थी। उनसे उस किरदार को अमर बना दिया गया। गब्बर सिंह के सामने उनका वो गुस्सा आज भी रोंगटे खड़ा कर देता है।
0: हाँ स्मृति, लेकिन उनकी सबसे खास बात जानते हैं क्या आप?
1: क्या
0: वे कभी भी अपनी हीरो वाली इमेज में बंध कर नहीं रहते। जब वे केवल 30 से 35 साल के थे, तब भी वे पर्दे पर 60 साल के बुढ़े का किरदार निभाते थे।
1: तो वो भी बड़ी सहजता से है ना।
0: बिल्कुल, फिल्म आंधी और कोशिश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कोशिश फिल्म में तो उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया था जो बोल और सुन नहीं सकता था। बिना एक शब्द बोले, सिर्फ इशारों से उन्होंने लोगों को रुला दिया था।
1: सचमुच आजकल के एक्टर्स तो अपनी उम्र से बड़े दिखने में कतराते हैं, लेकिन संजीव कुमार जी के लिए यह सिर्फ उनका किरदार मायने रखता था। और सिर्फ गंभीर रोल ही क्यों, उनकी कॉमेडी टाइमिंग का भी तो कोई जवाब नहीं था। गुलजार साहब के निर्देशन में बनी फिल्म अंगूर तो आज भी कॉमेडी की पाठशाला मानी जाती है। उसमें उनका डबल रोल देखकर हंसते हंसते गाल में दर्द हो जाता था। लिटरली वो फिल्म है, वो जरूर देखने लायक है दोस्तों।
0: हाँ, अंगूर तो मेरी भी बहुत ऑल टाइम फेवरेट मूवी है। इसके अलावा फिल्म नया दिन नई रात में उन्होंने अकेले 9 अलग-अलग किरदार निभाए थे। हर किरदार का उठना बैठना, बोलना और स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। ऐसा कमाल सिर्फ संजीव कुमार जी ही कर सकते थे।
1: ये तो बड़ी नई बात बताई तुमने। और जितनी खूबसूरत उनकी फिल्में थी और उतनी ही असल जिंदगी में वो अकेले रह गए थे। उन्होंने कभी शादी नहीं की, लेकिन और बहुत कम उम्र में ही वो दुनिया से चल बसे थे।
0: हाँ स्मृति, नियति का खेल देखो। फिल्मों में अक्सर बूढ़े दादा या पिता का रोल निभाने वाले संजीव कुमार असल जिंदगी में कभी बूढ़े हो ही नहीं पाए। दिल की बीमारी की वजह से महज 47 साल की उम्र में ही साल 1985 में उनका निधन हो गया था। उनके परिवार में पुरुषों को दिल की बीमारी का इतिहास था, और वे हमेशा से जानते थे कि उनके पास समय कम है। शायद इसीलिए उन्होंने अपनी छोटी सी जिंदगी में इतना काम कर लिया कि लोग उन्हें सदियों तक याद रखते हैं।
1: कितनी भावुक करने वाली बात है, लेकिन आज उनके जन्मदिन पर हमें उदास होने के बजाय इस बात पर गर्व करना चाहिए कि हमारे देश में एक ऐसा महान कलाकार पैदा हुआ। उन्होंने स्टारडम के पीछे भागने के बजाय हमेशा एक्टिंग को सर्वोपरि रखा।
0: बिल्कुल सही कहा स्मृति आपने। संजीव कुमार जी भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन ठाकुर, हरिभाई या अंगूर के अशोक के रूप में वे हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। चलिए, इस शाम में आज उनकी फिल्म का ये एक और गाना सुनते हैं।

0: एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे और युवाओं के खास कार्यक्रम युववाणी में। अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म आंधी से यह प्यारा सा गाना।
1: तो श्रोताओं, अब वक्त हो चला है थ्रोबैक थर्सडे का, जो हमारे कार्यक्रम का सबसे स्पेशल सेगमेंट होता है। तो चलिए सुनाते हैं आपको ईशा नागवंशी से अंबिका सराफ की हुई बातचीत।
2: दोस्तों, अब वक्त है हमारे आज के इंस्पायरिंग सेगमेंट का, जहां हम मिलवाने जा रहे हैं आपसे एक ऐसी प्रतिभा को जिन्होंने अपने हुनर, आत्मविश्वास और लगन से AIR@90 प्रतियोगिता में विजय हासिल की है। ये प्रतियोगिता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में मुजफ्फरपुर में आयोजित की गई थी। एक ऐसा विश्वविद्यालय जो अपनी शिक्षा और सांस्कृतिक वातावरण के लिए जाना जाता है। तो चलिए स्वागत करते हैं आज की हमारी खास मेहमान अंबिका शरफ जी को। अंबिका जी, युववाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद ईशा जी, मैं आपका और आकाश

0: आकाशवाणी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया।
1: अंबिका जी, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप कहाँ से हैं और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स आप कर रही हैं?
0: जी, मैं मूल रूप से मुजफ्फरपुर की निवासी हूँ और BRA BU के महिला शिल्पकला भवन कॉलेज की छात्रा हूँ, और मेरे कोर्स का नाम है बैचलर्स इन पॉलिटिकल साइंस। मैं फ़िलहाल थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेने वाली हूँ, अभी बस सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स ओवर हुए हैं।
1: जी, तो बताइए, इस कोर्स को चुनने के पीछे क्या सोच थी? क्या आपका चाइल्डहुड पैशन था या फिर धीरे धीरे इस ओर इंटरेस्ट बढ़ा?
0: चाइल्डहुड पैशन तो नहीं कहेंगे, क्योंकि बचपन से मुझे साइंस भी बहुत पसंद था, लेकिन मैथ्स पसंद नहीं था।
1: अच्छा,
0: तो मैं ऐसे करियर को वो एक्सप्लोर करने लगी जहाँ पर मैथ्स का ज़्यादा रोल ना हो। तो मुझे पता चला हाँ, ऐसे भी करियर होते हैं। तो बस उसी समय इसका ऑप्शन मेरे सामने आया, और ये सब्जेक्ट इसलिए मुझे अच्छा लगता है, ह्यूमैनिटीज़ में पॉलिटिकल साइंस ही क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे मैं अच्छे से पढ़ भी सकती हूँ और किसी को पढ़ा भी सकती हूँ।
1: अच्छा, अब आते हैं उस कंपटीशन की बात पर जिसने आपको ये मंच दिया, AIR 90 प्रतियोगिता। अंबिका जी, हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि ये प्रतियोगिता किस विषय पर आधारित थी और इसका उद्देश्य क्या था?
0: ये आयोजित की गई थी क्योंकि AIR 90 वर्ष का हुआ था। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स थे, लगभग 10 टॉपिक थे, उनमें से हमें किसी एक को चुनना था। तो मेरा जो टॉपिक था वो था सैनिकों का मनोबल और आकाशवाणी का संदेश। इसमें मुझे बताना था कि ऐसे कौन से समय हुए, मुश्किल समय, जब आकाशवाणी ने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया, टूटने नहीं दिया।
1: तो इसमें भाग लेने का ख्याल आपको आया कैसे?
0: ख्याल आया ऐसे, खुद से मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, मेरी जो HOD हैं शालिनी गुप्ता जी, उन्होंने मेरा नाम नॉमिनेट किया
1: अच्छा, उनके
0: था।
1: मोटिवेशन से, है
0: जी
1: ना?
0: हाँ, और कारण ये था कि इसके पहले भी मैंने कुछ कॉम्पिटिशन्स जीत रखे हैं, इसलिए उन्होंने मेरा नाम दिया था।
1: जैसे कौन से कॉम्पिटिशन्स?
0: जैसे अभी फिलहाल जुलाई में ही एक हुआ था दैनिक जागरण की तरफ से, उनका
1: अच्छा,
0: 50 वर्ष कंप्लीट हुआ था बिहार
1: ओ
0: में, तो रजत जयंती के अवसर पर उन्होंने स्पीच कंपटीशन रखवाई थी 3 लेवल्स पे, पहले कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर स्टेट लेवल यानी इंटर यूनिवर्सिटी। तो उन तीनों पे मेरा हमको मुझे विजय हासिल हुई, और जो स्टेट लेवल पर जो हुआ
1: जी,
0: उसमें मुझे गवर्नर साहब और बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं उनके तरफ से 1 लाख का कैश प्राइज और ट्रॉफी दिया गया था।
1: बहुत
0: और
1: बहुत बधाई आपको
0: थैंक
1: अंबिका
0: यू,
1: जी।
0: थैंक यू ईशा जी। और इसके पहले भी नेहरू युवा केंद्र संगठन की तरफ से नेशनल यूथ पार्लियामेंट का आयोजन हुआ था, उसमें हमें बिहार विधानसभा जाना था, तो वहां जाकर मुझे 6th रैंक प्राप्त हुआ था।
1: अच्छा, और जब आपने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, माहौल कैसा था वहाँ का? कितने प्रतिभागी होंगे वहाँ और कंपटीशन कितना टफ रहा होगा आपके लिए?
0: वहाँ लगभग 80 से 90 प्रतिभागी थे। कंपटीशन टफ था क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छा बोला था, तो मुझे डर तो बहुत ज़्यादा नहीं लगा क्योंकि मैंने पहले भी कॉम्पिटिशन्स ऐसे किए हैं, लेकिन हाँ अच्छा था, हेल्दी कॉम्पिटिशन था और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी।
1: बहुत बढ़िया अंबिका जी, जब आपका नाम विजेता के रूप में घोषित हुआ होगा, उस पल आपको कैसा लगा? दिल की धड़कनें बढ़ी थी या टीयर्स ऑफ जॉय?
0: टीयर्स ऑफ जॉय तो नहीं, लेकिन हाथ, दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं जीतूंगी, पर लेकिन मेरा नाम आया शायद इस कारण से क्योंकि मैंने जो पॉइंट्स रखे थे वो बहुत अलग थे, बहुत ज़्यादा यूनिक थे, और ऐसे पॉइंट्स थे जो बहुत अच्छे थे, वो पॉइंट्स किसी ने भी ऐड नहीं किए थे।
1: हम सबके जीवन में कोई ना कोई प्रेरणा होती है, तो अंबिका जी, आपको इंस्पिरेशन किन से मिलती है?
0: मेरे इंस्पिरेशन तो मेरी फैमिली में ही है, मेरे मम्मी पापा और जो मेरी एल्डर सिस्टर है, मेरी दीदी, हमेशा से, स्पेशली मेरी दीदी, वो मेरी हमेशा से इंस्पिरेशन रही है। ऐसी बहुत सारी मुश्किलें आई जो मेरे और मेरे छोटे भाई पर ना आकर मेरी दीदी नहीं झेल ली। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो खुद झेल लेती है मुझे और मेरे भाई को बचाकर, तो
1: अक्सर ऐसा
0: बस
1: होता है कि
0: अक्सर
1: एल्डर जो सिस्टर या ब्रदर होते
0: हाँ
1: हैं, वो आप अपने छोटे भाई बहनों को प्रोटेक्ट कर लेते
0: हाँ
1: हैं।
0: हाँ बस वही मेरी इंस्पिरेशन है, उसी को देख के रोज मोटिवेशन मिलता है, किसी मोटिवेशन वीडियो की जरूरत नहीं है।
1: किस छात्रों के लिए जो करियर सिलेक्शन को लेकर अनश्योर हैं?
0: सबसे पहले तो उन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए, पहले ही किसी चीज़ में नहीं चले जाना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, या फिर इंटरनेट से, या फिर किसी एक्सपर्ट से, या फिर अगर आपके घर में कोई है फैमिली मेंबर रिलेटिव, आप उनसे पहले पूछिए, फिर आप खुद सोचिए कि अगर मैं उस स्थान पर होऊंगा या होऊंगी तो क्या मैं उस काम को ठीक से कर पाऊंगा या पाऊंगी।
1: बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस थी ये। वैसे अंबिका जी, इस कंपटीशन में आपने कौन सा टॉपिक चुना था?
0: मेरा टॉपिक था सैनिकों का मनोबल और आकाशवाणी का
1: जी,
0: संदेश।
1: तो उस सैनिक कंपटीशन के बारे में आप थोड़ा, आपने क्या क्या कहा था वहाँ पे, क्या क्या चीज़ें पॉइंट्स मेंशन किए थे, थोड़ा हमारे श्रोताओं को भी बताइए।
0: मैंने शुरुआत की थी कि एक इंट्रो था कि कैसे आकाशवाणी ने अपना संदेश पहुंचाया है सैनिकों से। उसके बाद मैंने एग्जांपल्स दिए थे, जैसे 1962 का वॉर हो गया, इंडो चाइना वॉर, फिर 1965 का इंडो पाक वॉर, फिर जो 1970 का बांग्लादेश वॉर हुआ था, इंडो पाक वॉर, उसमें सैम मैनेकशॉ ने एक बहुत वो ब्रेवरी वाली चीज़ की थी।

0: ऑल इंडिया रेडियो से उन्होंने पाकिस्तान के सैनिकों को मैसेज भेजा था कि अगर
1: जी
0: आप हार मानोगे तो मान लो, नहीं तो फिर आप लोग का तो वैसे ही खात्मा होने वाला है। तो
1: हाँ
0: ये एक ऐसा चीज था कि उसके बाद लगभग 1 लाख वहां के सैनिकों ने सरेंडर किया था। तो ये था, और उसके बाद कुछ ऐसे शोज के मैंने नाम बताए थे, होते हैं आकाशवाणी में, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं सैनिकों के लिए खास करके, जैसे कि सैनिकों का संदेश, वीर गाथा। बस ये कुछ पॉइंट्स थे।
1: बहुत इंस्पायरिंग। मुझे लगता है आपकी यही सोच आपकी जीत का कारण बनी है। अंबिका जी, अगर हम आपसे कहें कि आप अपनी जर्नी को 3 शब्दों में बताएं, तो वो कौन से होंगे?
0: मेहनत, विश्वास और निरंतरता,
1: बहुत ही
0: क्योंकि
1: सुंदर जवाब दिया आपने।
0: ये अगर 3 रैंडम रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप मेहनत करोगे लेकिन आप डिसिप्लिन और निरंतर नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता है। आपको अगर ऐसा नहीं है कि आपको दिन में 8 घंटे ही पढ़ना है, आप रोज भी 4-4 घंटे पढ़ोगे ना, लेकिन वो रोज आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा तो ही कुछ हो सकता है।
1: बहुत ही सुंदर जवाब। अब हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई शॉर्ट मैसेज दें, कुछ ऐसा जो उन्हें मोटिवेट करे।
0: मेरा मैसेज है, स्वामी विवेकानंद का ये एक मैसेज था कि कमजोरी, वीकनेस इज द बिगेस्ट सिन, कमजोरी ही सबसे बड़ा पाप है। अगर ऐसी कोई भी चीज है जो आपको पीछे खींचती है, यानी वो आपकी कमजोरी है, तो सबसे पहले आप उस पर काम कीजिए, उस कमजोरी को आप त्यागिए, क्योंकि वही है जो सबसे बड़ा पाप है जो आपसे करवा रहा है। अपनी कमजोरी को त्यागिए, वो कमजोरी जो भी हो उसे पीछे छोड़ने की कोशिश करिए।
1: सच में अंबिका जी, आपकी बातें सुनकर सच में दिल बहुत खुश हो गया है। आप जैसी युवा आवाजें ही तो हमारी समाज की नई पहचान है। और
0: धन्यवाद ईशा जी।
1: अब इस खूबसूरत बातचीत को एक प्यारे से गाने के साथ खत्म करते हैं। अंबिका जी, बताइए आपका मनपसंद गीत कौन सा है?
0: वैसे तो मेरे बहुत सारे फेवरेट सॉन्ग्स हैं, लेकिन एक है जो बहुत अच्छा है, जब भी मिट का तुमसे ही।
1: तो दोस्तों, अंबिका जी की फरमाइश पर हम ये गाना जरूर सुनेंगे। अंबिका जी, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका और पूरे आकाशवाणी परिवार का मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद।
1: आइए दोस्तों, सुनते हैं ये गाना अंबिका जी की फरमाइश पर।

0: दोस्तों, इसी के साथ आज का युववाणी कार्यक्रम यहीं समाप्त करने का समय हो गया है।
1: उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा।
0: और इसी के साथ मैं हूं सुनंदनी,
1: और मैं हूं स्मृति।
0: हमें दीजिए अनुमति, हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी पटना। नमस्कार।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। आइए अब सुनिए कार्यक्रम। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारती।

मैथिली कार्यक्रम भारती सुननिहार समस्त श्रोता के प्रभातक सादर नमन। श्रोता मित्र, आजुक कार्यक्रम में हम सब सुनब एक गोट नाटक। बिखे होयत सारा परहक आमक गाछ। संगे समय बाँचत तो गीत नादक आनंद सेहो लेब, मुदा ओहिसँ पूर्व किछु अपना में दुटप्पी सेहो करब। देखु श्रोता मित्र, जनसंख्या नियंत्रण कोनो देशक सतत विकास आ लोकक जीवन स्तर के लेल अत्यंत आवश्यक होइत अछि। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि सँ प्राकृतिक संसाधन पर पैघ दबाव पड़ैत छैक, बेरोजगारी बढ़ैत अछि आ स्वास्थ्य शिक्षा जेहन जरूरत पर प्रतिकूल असर पड़ैत छैक। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान आ नीक स्वास्थ्य व्यवस्था सँ मृत्यु दर में कमी जरूर आयल अछि, मुदा जन्म दरक अनुपात

0: देख बेमानी नहीं कर।
1: नहीं नहीं देख देख, एक दो तीन चार पाँच।
0: अच्छा तोरे बात
1: ठीक। अखने फोन है बाहर चले।
0: ये फोन कवाहत भोगिल। अबे जी हेलो के पूनम की समाचार? प्रसन्न रहो, ओझा जी ठीक छथि ने? हाँ तीन चार दिन से खोखी रहत अछि, एक्सरे करौलहुँ अछि।
1: बाबा बाबा
0: एक्सरे रिपोर्ट ठीक अछि, डॉक्टर दवा देलक अछि, आराम करैक लेल कहलक अछि। नहि नहि नहि तेहन कोनो मोन खराब नहि अछि, तैयो अयबो तऽ आबो, भेटो घाट भेनाइ बहुत दिन भऽ गेल।
1: बाबा हमरा लूडो में मन नहि लगैत अछि, हमरा वीडियो गेम चाही।
0: हाँ आर सब ठीक अछि, माय कथु बुलऽ गेल छथुन। ठीक छै राखू, प्रसन्न रहू।
1: बाबा हमरा वीडियो गेम कीन दिय।
0: बाद में कीन देब?
1: नहि हमरा अखने चाही।
0: अखन हाथ में पाई नहि अछि, अगला महीना पेंशन उठेबे त कीन देब।
1: नहि नहि अहाँ झूठ बजैत छी।
0: अरे हम अपन पोता से झूठ बाजब? बौआ बाद में कीन देब। देखू पापा ऑफिस आबि गेला।
1: पापा पापा हमरा पाई दिय।
2: किया?
1: वीडियो गेम किनबे।
2: वीडियो गेम किनबे?
1: हाँ
2: अखन नहीं अछि पाई।
1: नहि हमरा चाही, हमरा अखने चाही अखने।
2: बबलू ऑफिस आबि त मूड खराब नहीं कर, जो जो मम्मी ल जो।
0: अरे छो त दहक ने, वीडियो गेम लेल कते दिन से जिद लागल छी।
2: बाबूजी अहाँ एकरा दूर करे पर लागल छी, जखन तखन ई किनब तो ओ किनब, कतौ से एते एते पाई? सुनै छी कने एम्हर आयब।
3: हैया अबै छी। लुटन लुटन।
4: जी मलकैन।
3: गैस पर दूध चढ़ल छै, देखी कनी उधिया ने।
4: ठीक छै मलकैन।
3: कहो की कहै छी?
2: ओ 1000 टका जे देने रही रखै लए से दिय, बॉस के मैरिज डे पार्टी में जेबाक अछि।
3: ओ टाका तो माँ के दऽ देलियनि।
2: माँ के दऽ देलियनि से किया? माँ माँ
3: घर में नहीं छथिन।
2: एकरो पैर में

0: घोरघोरा बांधल छे। भोर साँझ बौआइते रहैत अछि, कखनो चौधरी जी ओहिठाम तऽ कखनो दत्त जी ओहिठाम जायत आ लागत बेटा पुतौहक शिकायत करऽ।
1: की हमरा अहाँक शिकायत करै छथिन?
0: तऽ हम झूठ बाजि रहल छी? सामने के फ्लैट में छथि चौधरी जी, हमर सेक्शनक हेड बॉस वह छथि। ऑफिस में कहै छला
1: की
2: हो संजय, आइ काल्हि तू किछु तनाव में रहै छह, घर में खटपट चलै छह की?
0: खटपट से की मिश्रा जी, हम किछु बुझलहुँ नहि।
3: एहि में समझबाक कोन बात है, माय बाप के बूढ़ होला पर तनी विशेषे ख्याल राख पड़ो है।
0: मने हम माँ बाबू जी के मने ख्याल
2: यो सर, माय बाप संपूर्ण जिंदगी अपन धिया पुता के लेल दुख सहित है।

0: आ तनी विशेषे ख्याल राख पड़ है।
1: मने हम माँ बाबूजी के मने ख्याल
2: यौ सर, माय बाप संपूर्ण जिंदगी अपन धिया पुता के लेल दुख सहित है, एहि लेल जे बच्चा सब पढ़ लिख कहुना लायक भ जाए, आ धिया पुता जहाँ लायक भेल माय बाप के माथक भार बुझ लगैत है।
1: सर, अहाँ सबके किछु भ्रम भेल अछि, माँ बाबू के कोनो तरहक कष्ट नहीं छनि, तखन तऽ हम सब सौख मनोरथ तऽ पूरा नहिए कऽ पबै छियनि।
0: तथापि जे मिले है वही में
1: ई सब बात अपने के कहलक के सर?
0: यहो सब बात छुपो है और अपने फैल जा है।
1: माँ चौधरी जी को ओहिठाम जाय छथि, चौधरी जी लग वह नेप चुओने हेती।
3: से बुझू तो ऑफिस स्टाफक लग बेटा पुतोहक उलहना।
4: उलहना? केहन उलहना कनिया?
1: माँ, तोरा सब ठाम छिछियाब नीक लगै छौ, रे खो पी आ घर में आराम कैल कर।
4: हौ बच्चा, घर में बैसल बैसल मोन नहीं लगैत अछि, तऽ कखनो काल सामने से कने भबै छी।
1: चाय में नहीं आपत्ति छे, मुदा घरक आहे माहे नहीं सुनायल करही।
4: की बजै छी बच्चा? हम घरक नीक बजाय दोसर लग बाजब? एहो, तू हमर स्वभाव नहीं बुझे छौ?
1: आबे ना कान खींच के हमरा नहीं डरो, हमहू सब बुझे छी। सुन, 1000 टका दे।
4: कौन 1000 टका हो?
1: रे पुतौह जे देने रहथुन।
4: ओहि पाई के तो तोहर बाबूजी एक्सरे करा के अपन दवाई सब लो अनल खून।
1: ओहो, घर में दूटा पाई रहत तो अंट संट में खर्च भइए जात, कखन कौन जरूरत पड़त से क्यों नहीं बुझत। आई बॉसक मैरिज डे पार्टी छे, प्रमोशन लेबाक अछि, अब खाली हाथ तो जा नहीं सके छी।
5: बस बस करा संजय, हमर दवाई से बेसी जरूरी तोरा बॉसक मैरिज डे पार्टी बुझ पड़े छ, सह न?
1: ओह बाबूजी, आब अहाँ के हम कोना बुझाऊ?
5: सब बुझे छी, हमहू एहि शहरक हवा पानि में 36 बरख नौकरी कयने छी संजय।
1: सह तो पेंशन भेटैये तैयो अहाँ के?
4: पेंशन बचतन तखन ने, मकानक किराया देथुन बाबूजी, दूध किनौत तो बाबूजी, साग सब्जी किन के आनत बाबूजी, पाहुन परक आबे कि बेटी जमे ओकर शौक सेहनता सबटा पूर करत बाबूजी, आखिर बाबूजी की करता, कत्ते हिनका पेंशन भेटै छन? एहिमे दो पाई बचा के चलै छी जे मरला पर अहाँ सब पर भार नहीं भ जाय। हम सब अहाँ सबक जब बस चलत तो मरला पर घिसिया के सड़क पर फेंक देब हमरा लोकन के।
1: मां, अहाँ सब अनेरे बात के बतंगर बनबै छी।
5: हां हो, सब दोख हमरे सबक।
6: मां, साज भर लीजू इनका नथ।
5: ये चलू, बेटा पुतौ से की मुंह लगबै छी, चलू।
1: बबलू खा के सुतल है?
6: कहाँ, सांझ में कनेत कनेत बाबा लंग सुत रहल।
1: बहुत जिदिया भेल जा रहल है।
6: वो तो बच्चा छी, मुदा अहू के तो सह हाल है, ऑफिस से आबते माँ बाबूजी से लड़ लेलू, उनका सबके होते थे जे हमरे बकेला पर अहाँ एना करे छी।
1: ये माँ बाबूजी छथि तो उचित नहीं कहियो, समय कतौ से कतौ भागल जा रहल छी, तकर ज्ञाने नहीं। पार्टी के बहाने बॉस के किछ गिफ्ट दीता प्रसन्न करता हूं, से तो नहीं ना भेला।
6: 3-4 दिन से बाबूजी के उकासी बेसी जोर के नहीं रहन, तैं हुनकर दवाई बेसी जरूरी छले।
7: दवाई बेसी जरूरी छले, महीना लगला पर एक्सरे करे बिताए थी तो अनर्थ भ जैते, मुदा बॉस की सोचता हुनकर मैरिज देता अगले साल ने आओत।
6: हाँ, से तो छे, कम दरमाहा में परिवार चलाए बड़ मुश्किल छे। हाँ, आयुष होस्टल से फोन केने रहे।
1: की हालचाल छे ओकर?
6: ठीक छे, 10000 टका पठावे लेल कहलक अछि, फिजिक्स के कोचिंग करत।
1: अच्छा, दरमाहा भेटत तो पठा देबे।
6: कहलक अछि शीघ्रे पठावल।
1: शीघ्रे पठावल तकी माथ फोड़ लियो अपन, बीच मास में कतौ से पठेबे आप?

0: बच्चा के हॉस्टल में राख के पढ़ेबे तो खर्च करे पड़त।
1: मैडम टाका गाछ से तो नहीं झड़े छे कि जरूरत पड़ल आ झका दियो ओकरा।
0: खर्चक नाम पर क्रोध किएक भ जाइत अछि?
1: की करू?
0: सुइत रहू। 12 बाजि गेल, भोरे उठबाक रहैत अछि।
1: उठबाक रहैत अछि।

0: की सोच रहल छी?
1: किछु नहि, रात भर ठीक से नींद नहि भेल।
0: बुझाइत अछि बुढ़ारी में हमरा दुनू के दुर्गंधन लिखल अछि।
1: संजय वहिना बाजि देलक, कहे नहीं छे घाव कतौ अपा कतौ।
0: नहीं यौ, बच्चा के हम सब आब सोहाइत नहीं छियन।
1: संजय के माय, सबक मूल अछि अर्थ। आजुक महत्वाकांक्षा आ बढ़ैत आवश्यकता के पूर्ति जखन बाधित होमय लगै छै त जन्म लै छै फिरसानी बेचैनी, तखन होइ छै क्रोध आ कलह। ई क्रोध आ कलह आजुक पीढ़ी के पछोर धऽ लेने छै।
0: हमरो सबक समय छल, हम सब माय बापक संग एना कहाँ कहियो के लिए।
1: ओ समय आ आजुक समय में बहुत फर्क भ गेलैए। हमरा सबक समय में एतेक आवश्यकता नहीं चले। मोबाइल आ इंटरनेटक युग में मनुष्यक सहनशीलता समाप्त भेल जा रहल छे।
0: अहूँ तो पेंशन से जतेक होइत अछि घरक लेल कइये दैत छियै ने।
1: कोनो अनका लेल करै छियै, खेबे त करैये पड़त।
0: हाँ, से त अहाँ ठीके कहैत छी।
2: महानंद बाबू छियो यौ? महानंद बाबू
1: के छी
2: यौ? महानंद बाबू हम छी कर्ण जी।
1: अच्छा अच्छा कर्ण जी, आओ आओ आओ। नमस्कार नमस्कार
2: नमस्कार।
1: सुनलहुँ जे मोन गड़बड़ अछि, तखन घर से किया बहर अयलहुँ?
2: हाँ यौ, गेल रही सब्जी आनक लेल, घुरलहुँ तऽ मोन भेल भेंट करैते जाय।
1: अवश्य की, तरकारी तऽ बेटा पोता ककरो से मंगा लेतौ।
2: महानंद बाबू, सबके अपन अपन व्यस्तता छैक, ककरो ऑफिस छैक, ककरो किटी पार्टी से फुर्सत नहि, पोता पोती के स्कूल आ कोचिंग से पलखैत नहि। काल्हि से रट लगौने रही जे कतेक दिन से करेलक भुजिया नहि खेलहुँ अछि, मुदा कियो किएक सुनत। थाकि हारि कऽ आइ अपने बाजार विदा भऽ गेलहुँ।
1: ठीके कहै छी कर्ण जी, जा धरि देह में ताकत अछि ता धरि बड़ बढ़िया, अन्यथा धियापुता लेल भार छियै हम।
2: रिटायर भेलाक बाद सूपक भाटा भेल छी। 4 मास एक बेटा लग, 4 मास दोसर बेटा लग, 4 मास तेसर बेटा लग, जिंदगी असहनीय भऽ गेल अछि।
1: वृद्ध माय बाप गुदरी चेतरी से भरल एकटा मोटा छैक, जकर कोनो मोल नहि।
2: इएह गुदरी चेतरी से सुजनी बनै छी महानंद बाबू, जाहि पर पोता पोती नात नातिन पोसाइत छैक।
1: आबक लोक के से ज्ञान कहाँ छै।
2: सेहो बात तऽ ठीके कहै छी। अहाँक मोन ठीक रहैत अछि ने?
1: हँ ठीके छी, बुढ़ारीक शरीर बीमारी तऽ लगले रहैत छै।
2: अहाँक बेटा पुतौ तऽ हीरा अछि, हीरा, सदखिन सेवा में लागल रहैत अछि। एकटा हमर अछि हरासन।
1: नारायण नारायण नारायण नारायण, एहन अशुभ कथा नहि बाजी, सभक घर में एहिना होइ छै।
2: एह किया नहि बाजी, अहीं कहू, हमर बूढ़ी के अखन मरबाक समय रहन, सेवा बेतरे समय से पहिने चलि गेली, पाई रहैत पति परहेज नहि भऽ सकलनि, ओ तऽ विदा भऽ गेली, मुदा हमरा असगर कऽ गेली।
1: की करबै, जन मृत्यु तऽ ऊपर वला के हाथ में छन।
2: आँय यौ, जे अपने सब खाय से हमरो आगा दऽ देत,
1: से बेचारा के जे जुड़तै सैह ने खायल देत।
2: की कहै छी, चाउमीन पिज्जा एहि उम्र में खायल हैत?
1: पुतहु स्नेह सँ दैत हेती।
2: स्नेह सँ यौ, सब दिन अपने सब रेस्टोरेंट में खायत, हमरा लेल बाजारक अंट पंट नेने आयत। बुझू तो सब साँझ भूखले सुतैत छी, मरि जैतौ तऽ एकरा सबके मुक्ति भेटतै। अच्छा चलै छी।
1: चाह तऽ पीब लिअ।
2: नहि चलै छी, नमस्कार।
1: प्रणाम यौ।
3: एट वन जा एट,
1: ठीक से हो? 16 दर्द करैया, मारिए देबह की?

0: आपका डाँड पर हाथ डाते अरे की टू जा टू जा एक सप्ताह से रखने छ अटका आठ आठ दो नहीं सोलह आठ या चौबीस को का पढ़वे तो जल्दी याद भ जतो
1: बाबा एना पढ़ला से मिस डटैत अछि कहैत अछि देहाती जैसा मत पढ़ो
2: अयो बबलू मालिक अहुक बाबा तो सब दिन शहरे में रहला तो देहाती कोना भेला
0: हौ लुट्टन तो नै बुझबक पहिने नैना के लोग पहिल शब्द सिखबै छल बाबा आब सिखबैत अछि मम्मा पप्पा सड़क चलैत बीत भरिक छौड़ा सब हमरा सन बूढ़ के अंकल कहैत अछि बाबा शब्द बिलायल जा रहल छै
3: हुए सब किछु मुदा कतौ से कोना हैत तकरा पर ककरो ध्यान नै कमाई वाला एकटा खाई वाला दसटा
4: त की चाहक पत्ती हम फाँक गेलौं पिछला सोम 200 ग्राम चाह पत्ती एले दिन भर में 100 कप चाह बनैत छै त खर्च हेबे करतै
3: खूब करू खर्च खूब करू आमदनी अठन्नी आ खर्चा रुपया नहीं जाएनी घर कोना चलत लुटना रे लुटना
2: जी मालिक
3: की करे छे
2: बड़का मालिक के देह जोते छियन मालिक
3: जो दुकान जो आ चाह पत्ती लेने आ
2: जी मालिक
3: अहू बाबू बेर नहीं देखे छे लुटना संगे गप लड़ा रहल छी
0: हो घर में गप करू त ककरा सो जो हम दुनू प्राणी कोनो गप करा लगलौं तो तोरा सब के संदेह होमे लगै छ जे बुढ़वा बुढ़िया हमर खिधांस त नहीं करैत अछि बबलू के अपना ढंग पढ़ेबे तो दूर करै छियै तोरा त हमरा सब लेल फुर्सत नहीं रहै छ
5: अहूं की साँझ भरली बड़बड़ा लगलौं चुप भ जाऊ
0: हम दिन भर में 7-8 कप चाह पीब जाय छी तें चाय पत्ती घट जाय छै
3: अहाँ त अर्थक अनर्थ कह दै छी बाबूजी
0: हाँ हो घर में एडजस्ट नहीं कर पाबि रहल छी सह न संजय सत्य त ई छै जे हम सब व्यर्थ भ गेल छी तोरा सब लेखे बोझ भ गेल छी
5: बाबूजी ई अपने की बजे छी सास ससुर के तो बोझ भेले के ई त हमर सौभाग्य जे अहाँ सब छी
0: ई अहाँक विचार अछि कनिया मुदा संजय ई नहीं सोचैत अछि
5: बाबूजी हिनकर स्वभाव एहने भेल जा रहल छन बच्चो सभक संग क्रोधे में गप करैत छथि
0: हम बच्चा नहीं छी कनिया
5: छोड़ू ने चिरौरी कोनो बात धो लेलो तो ओकरा चिरो लगलो
0: सब फसादक जड़ अहाँ छी रिटायरमेंटक बात कहलो कि आप गाम चलू तो कह लगलो नौ पुतो अछि कोना छोड़ के जाएब बाद में पोता सभक मुँह में पड़ गेलो आप भोगू
5: अच्छा हे क्रोध जिन करू सब ठीक भ जेतै कनिया हे अहाँ कानू जी जाओ अपन कोठरी में जाओ जय जय जय
4: माँ बाबू जी की ये बुझे अब तू ना
6: केना
4: बाबू
6: कहू तो गाम पर तू सब के ना रह जाए जब आप तोरा सब के गाम पर
0: रहे ओझा जी ओझा जी पूनम का बुझा दियो हमार रास्ता नहीं रोके हम ककरो पर बोझ नहीं रहब आप हमरा गाम जे बात है
7: बाबूजी जमे बेटिक समान होइत अछि हमरा सब संगे कलकत्ता चलत
5: ओझा जी ठीके कहै छथि चलो किस दिन कलकत्ता से भौ आबी हे अहाँ के मोनो बदल जात
8: हाँ बाबूजी चलू ने एना जिद किया धो लेलिए
7: बाबूजी हमरा सब लग अपने सब के कोनो टा कष्ट नहीं हेतन चलत चलत हमरा सब संगे
0: ओझा जी कष्टक बात नहीं छे संपूर्ण जिंदगी तो हम कष्टे में रहलों तब बुढ़ारी में सुखक कौन आस
8: बाबूजी हम सब अहीं सब के लऽ जेबाक लेल अयलौं अछि माँ तू बाबूजी के बुझाबू ने
0: नहीं पूनम हम सब आप गामे में रहब
7: गाम में ई ककरा लग रहता स्वास्थ्य ठीक नहीं रहै छन एहि अवस्था में धिया पुता से दूर रहता
5: हे धिया पुता गप नहीं धरी
0: अहाँ के रहबा कैस तो रहू बड़ मुँह अछि तहाँ रहू आब हम एक दिन एतौ नहीं रहब
8: भैया लग नहीं रहब हमरा सब लग त रहिए सकैत छी
0: कर्ण जी जका हम सूपक भाटा नहीं बनो चाहे छी
8: गए माँ तू बाबूजी के किएक नहीं बुझबे छुन
5: हिनकर जिद त तोरा सब के देखले छौ एक बेर सोच लेलौ त ब्रह्मा के लकीर भ गेल
9: बाबू।

0: जी, हमरा सबसे कोनो गलती भेल अछि तऽ क्षमा कऽ दिया।
1: नहि कनिया, कोनो गलती नहि, सबके अपना जकाँ रहबाक सोचबाक स्वतंत्रता छै।
2: माँ, बाबूजी कलकत्ता नहि जेथुन तऽ तू ही चल।
3: की हम इनका छोड़ि तोरा संग चलू? है जीवन पर्यंत जकरा संग हम रहलहुँ, दुख सुख कटलहुँ, से हम आब अलग भऽ कऽ रहू सेहो अपन सुखक लेल? नहि, ई नहि भऽ सकैत अछि, किन्नो नहि भऽ सकैत अछि।
4: माँ ठीके कहै छथिन, जतय बाबूजी रहता ओतय हिनकर धाम छनि। तहन तऽ इएह कहबनि जमायओके बेटा बुझि।
1: ओझा जी, हमर निर्णय अटल अछि, गाम जायब, गामेमे रहब, गाय पोसब, दलान पर गरीबक बच्चा सबके पढ़ायब, भोर साँझ भगवती स्थान जायब।
3: ई अहाँ नहि बजैत छी, अहाँक मोनक पीड़ा बाजि रहल अछि।
1: नहि, ये शहर गुंगवाय लगलैक अछि, खोपड़ी भेल मकान, मकान भेल काटेज, काटेज भेल विला, आ विला भेल कॉम्प्लेक्स, जाहिमे घोसिया लागल, हेजक हेज लोक आ चिकड़ लागल, आर चाही आर चाही आर बेसी चाही।
0: बाबूजी इला जिन कहतुन।
2: भौजी, अहाँ किया कानि रहल छी?
0: ई सब गाम जेथिन तऽ हमरे अजस हैत।
3: नहि नहि कनिया, नहि, एहन पुतहु तऽ भगवती सबके देथुन।
1: ये दवाई ठकान के लऽ ले।
3: सबटा राखि लेलहुँ हैं।
1: पानि सेहो राखि ले।
3: हाँ हाँ,
1: अहाँ एक्सरे लऽ ले।
3: अहीं के झोरा में राखल अछि।
1: कनिया कनिया, बट खर्चा लेल विशेष किछु नहि बनायब। आ सुनू, ये स्वेटर राखि ले।
3: हाँ।
1: संजय
5: जी। बाबूजी।
1: हे, एकटा काज करा दिह।
5: की?
1: ई एप्लीकेशन बैंक में जमा कऽ पेंशन अकाउंट के गामक बैंक में ट्रांसफर करा दिह, हेतौ कि नहि?
5: बाबूजी, हमर बात मानू ने बाबूजी, अहाँ गाम नहि जाउ।
1: आय हो, काल्हि से तू सब एना मुँह लटकैने छह जेना हम आन ठाम जा रहल छी। अरे, गाम जा रहल छी, अपन गाम।
5: मुदा अहाँके एहि अवस्था में आप गाम में नहीं रहल हैत।
1: हाँ हो, गामक स्वच्छ वातावरण में रहब, मन स्वस्थ रहत, गामों का विकास भ रहल छैक, गली गली सड़क छैक, अस्पताल छै, बाजार छै, हो संग में टाका आ मोबाइल फोन रह तक कोनो सुविधा।
5: मुदा बाबूजी,
1: गाम से मैट्रिक को एही शहर आयल रहे, ई शहर नौकरी दिलक, धियापुता के गरीबी में पढ़ेलों, पूनमक ब्याह एही शहर से भेल, ई शहर सब किछ दिलक मुदा अपन नहीं भ सकल, आप गाम मन पड़ रहल अछि।
6: बाबा बाबा, तो अहाँ हमरा सब लग कहियो नहीं आब?
1: से के कहलको, बाबा के तो अपन पोता लग नहीं आबे। अवश्य एबो मुदा रहबो नहीं।
6: से कियाक बाबा?
1: आय रे बा, तहन गाय के खेनाई के देते, धियापुता के पढ़ेते।
6: जी
1: बुझली।
6: जी बाबा।
1: किए तैयार भेलो?
3: हाँ हाँ, या एलो, चलो।
1: हाँ चलू, गाम वाला बस नहीं छूट जाए, प्रसन्न रहो।
3: खूब आशीर्वाद दे छी, सब गोटा नीके ना रहो,
1: सौभाग्यवती भव। कनिया
0: जी। बाबूजी।
1: पूनम।
7: हाँ बाबूजी।
1: अहाँ सब कने छी, एमे सबके प्रसन्न हेबाक छै कि हम एकटा नव यात्रा पर निकललौ अछि। ओझा जी।
8: जी।
1: संजय
8: जी। बाबू
1: सुनू, रिटायरमेंटक बाद व्यक्ति सोचैत अछि ओ अथबल भऽ गेल, तैं ककरो पर भार भऽ कऽ रहऽ लगैत अछि, जे नहि हेबाक चाही। सबके अपना पर रहबाक चाही आ अपना जकाँ रहबाक चाही। वृद्ध भेला पर अहूँ सब इएह करब। बबलू।
6: जी बाबा।
1: ले ई वीडियो गेम आ सुन।
6: जी बाबा।
1: हम अपन बाबूजीक सारा पर जे आमक गाछ रोपने रही
6: जी,
1: से फड़ लगलै है, गर्मी छुट्टी में अभी है, गोपी खुएबो।
6: ठीक छे बाबा, टाटा दादी माँ, टाटा बाबा, टाटा, बाय बाय।
3: निके रहू।
1: बाय
6: बाय
1: बाय।

एखन सुनि रहल छलहुँ ई नाटक सारा परहक आमक गाछ। कार्यक्रमक समापनसँ पूर्व आओ सुनैत छी ई शिव भजन।

ऐसी भजन के संग आजुक भारती कार्यक्रम में तबे पुनः अगला कार्यक्रम में अपने सबसे भेंट होयत। प्रभात के विदा दिल जाए। बेस्ता शुभ सांझ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भारती। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। आइए अब आपको जानकारी दे देते हैं आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की।

अब से कुछ ही देर के बाद आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा 6:10 पर, संस्कृत समाचार सुन पाएंगे 6:20 पर, और ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल का वक्त होगा 6:30।

शाम 7 बजे सुन सकते हैं खेती गृहस्थी, जिले की हलचल। आप सुनेंगे संध्या 7:47 पर।

सुगम संगीत सुन सकते हैं 7:52 से, और समाचारों का वक्त होगा 8:45 से। समाचार आप हिंदी, अंग्रेजी और

0: श्रोताओं, ये संक्षिप्त जानकारी थी आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी पटना है। आगे आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन।
1: और इस गीत के बाद
2: छाया गीत।

प्रणाम, ई आकाशवाणी पटना है। अब रउआ आशुतोष से सुनी भोजपुरी समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च स्तरीय बैठक कैले। बैठक में बिहार समेत राजस्थान, जम्मू काश्मीर, पंजाब, पश्चिम बंगाल सहित सभी सीमावर्ती राज्यन के उच्च अधिकारी और SP शामिल भइलन। बैठक में अवैध घुसपैठ, सीमा से जुड़ल इलाकन में आबादी में बदलाव, नशीला पदार्थ के तस्करी और सीमा सुरक्षा समेत विभिन्न मुद्दन पर चर्चा भइल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी प्रदेश में 1 करोड़ नया राशन कार्ड बनावे के निर्देश दिले बने। मुख्यमंत्री विभागीय योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लेके आज पटना में केंद्रीय उपभोक्ता मामला और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ बैठक समीक्षा कैले। बैठक में मुख्यमंत्री विभागीय योजना के लाभार्थियों के डेटाबेस तैयार करे और राशन वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करे के कहले। केंद्रीय मंत्री बिहार के ऑनलाइन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन के सराहना भी कैले। पटना से गया जी आरा, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय खातिर रैपिड रेल सेवा शुरू कैल जाय। एकरा खातिर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS बनी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अध्यक्षता में कैबिनेट के भइल बैठक में इस प्रस्ताव के स्वीकार कैल गई। इस संबंध में अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करावे के जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के दहल गई बा। यह पर 31,59,00,000 रुपया खर्चा हुई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी बतौले कि बिहार के प्रमुख शहरन के बीच परिवहन व्यवस्था के तेज और बेहतर करे खातिर फैसला लेहल गई बा। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 1 साल और 2 साल स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम खातिर 1 समान फीस लेहल जाय। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन इस संबंध में यूनिफॉर्म ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन 2026 के मंजूरी दे देले बाड़े। एक साथ विश्वविद्यालय में साल 2018 से लागू 24 बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के पूरन

नियम खत्म हो गईल बा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव खातिर बीजेपी के प्रत्याशी अभिषेक कुमार बंटी और राजद के प्रत्याशी रेखा गुप्ता अपन अपन नामांकन पर्चा दाखिल कर देले बा लोग। अभिषेक नामांकन के पहले अपना माई के गोर छू के प्रणाम कैले। ए मौका पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत एनडीए के कई गो नेता लोग मौजूद रहे। जन सुराज के प्रशांत किशोर 11 जुलाई के अपन पर्चा भरी है। नामांकन 13 जुलाई तक हुई, 30 जुलाई के चुनाव हुई और 3 अगस्त के नतीजा आई। कांग्रेस आरजेडी के रेखा गुप्ता के समर्थन कैले बिया। बता दी कि ई सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के छोड़ला के बाद खाली भइल रहे। प्रदेश के सरकारी स्कूल के मास्टर के तबादला खातिर पोर्टल आज से खुल गइल बा। ए माध्यम से मास्टर अपना मनपसंद विद्यालय में तबादला खातिर ऑनलाइन आवेदन कर सकेले। कमाई से अधिका संपत्ति के मामला में आर्थिक अपराध इकाई के टीम सिवान में तैनात उत्पाद निरीक्षक अंकेश कुमार गोंड के पटना, सिवान और मुंगेर के 6 गो ठिकाना पर छापेमारी कैले बा। अंकेश कुमार पर कमाई से 200% अधिका लगभग 2.38 करोड़ रुपया से ज्यादा संपत्ति इकट्ठा करे के आरोप बा। बिहार में मानसून सक्रिय हो गई बा। बगहा में भारी बरखा हो रहा बा। मौसम विभाग के राज्य के 30 गो जिला में तेज बरखा बरसे के अलर्ट जारी कैले बा। पिछलका 24 घंटा में कटिहार के अहमदाबाद में सबसे अधिका 108.2 मिलीमीटर बरखा बरसल बा। विभाग के मुताबिक पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा में भारी बरखा के संभावना बा। अगला 7 दिन तक बिहार में मानसून सक्रिय रही। गोपालगंज में बिजली गिरला से 1 किसान मर गई बाड़े और 4 लोग झुलस गई बा, जेकर गोपालगंज के सदर अस्पताल में इलाज चलता। गया जी जिला के बोधगया थाना क्षेत्र के सिवा गांव के लगे एगो कार और ट्रक के बीच टक्कर के बाद कार में आग लग गई। हादसा में कार में बैठल 2 गो लोग जर के मर गए। ड्राइवर के स्थिति खराब बा। वह कैमूर जिला के कुदरा थाना के परमालपुर के लगे ट्रक बेकाबू होके एगो पुलिया से टकरा गए, जिसमें ड्राइवर और खलासी वही जी मर गए। पटना के अमहरा थाना के बभन लई गांव से पुलिस शराब पी के हंगामा करे वालन 8 आदमी के गिरफ्तार कैले बिया। मधुबनी जिला के फुलपरास थाना से पुलिस एगो तस्कर के 13 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार कैले बिया। एकरे साथ है आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एहिजा समाप्त भइल।

ये आकाशवाणी पटना है। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:10 हो गए हैं और इसी के साथ वक्त हो गया है फिल्म संगीत सुनने का। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

dum dum dum.

में।

और अब सुनिए फिल्म राजा और रंग का ये गीत, मोहम्मद रफी की आवाज़ है, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

आकाशवाणी पटना से भी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आगे आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

0: इयं आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः उद्घोषः एकविंशतिशताब्द्याः नूतन भारतं विकसित राष्ट्रनिर्माणस्य लक्ष्यं प्रति द्रुतगत्या अग्रेसरति। मेलबोर्न नगरे भारतीय समुदायस्य भव्यं सम्मेलनं चासौ सम्बोधयति। भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः मध्ये रक्षा सुरक्षा सहयोगाय ऐतिहासिकं संयुक्त घोषणापत्रं हस्ताक्षरितम्। अनेन सहैव ऑस्ट्रेलिया देशस्य यूरेनियम धातोः दीर्घकालिक आपूर्तेः महत्वपूर्ण सन्धिः अपि निष्पादितः। उपराष्ट्रपतिना सीपी राधाकृष्णनेन भुवनेश्वरे गभीर समुद्र मत्स्यपालन सम्पदः शाश्वत उपयोगाय राष्ट्रियाभियानस्य विहितं विधिवत् अनावरणम्। राष्ट्रिय शिक्षा नीतेः अन्तर्गतं वयस्क साक्षरता मानदण्डानवाप्य उत्तराखण्ड राज्यं देशस्य पूर्ण साक्षर राज्यानां गौरवपूर्ण सूच्यां सम्मिलितम्। प्रावृष्टावत् कृत्स्नेहि देशे व्याप्ता दिल्ल्यां विगतरात्रिकालात् अश्रान्त वृष्ट्या सामान्य जनजीवनम् अत्यन्तं बाधितम्। अपि च भारत इंग्लैण्डयोः मध्ये पञ्च क्रीडात्मिकायाः चतुर्थी अन्ताराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा अद्य रात्रौ तावत् दशवादने क्रीडिष्यते। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् एकविंशतिशताब्द्याः भारतं विकसित भारतं भवितुं संकल्पबद्धो वर्तते। तेनोदीरितं यत् साम्प्रतं भारतं तादृशः देशः यः अधिक विकासे विश्वसिति।
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी

0: विगत द्वादश वर्षेषु स्वस्य तृतीयं ऑस्ट्रेलिया भ्रमणं हैट्रिक इति विज्ञापयता तेन प्रतिपादितं यत् एषः प्रवासः भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधानां ऊर्ध्वगामितां सूचयति। अत्रावसरे ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज इत्यसावपि तत्र उपस्थितः आसीत्। तेन तत्रत्यं जन उत्साहं दृष्ट्वा एषा सहभागिता दृढतरा इत्युक्तम्। अस्मात् पुरा उभयोः देशयोः नेतृभ्यां मेलबर्न नगरे तृतीये भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा शिष्टमण्डलस्तरीया द्विपाक्षिकी वार्ता विहिता। हिन्द प्रशांत क्षेत्रे शान्तिं स्थिरतां च स्थापयितुं द्वाभ्यां नेतृभ्यां रक्षा सुरक्षा सहयोग संयुक्त घोषणापत्रे हस्ताक्षरं विहितम्।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: वार्ताहरान संबोधयन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी न्यगादीत यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशाभ्यां परमाणु ऊर्जा क्षेत्रे कश्चन ऐतिहासिकः सहयोगः साधितः। अनेन ऑस्ट्रेलिया देशात् भारताय यूरेनियम इत्यस्य आपूर्तिः सुलभा भविष्यति। अयं संयोगः भारतस्य स्वच्छोर्जा लक्ष्याय नवीनां गतिं प्रदास्यति। अनेनैव सह साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एवं सप्लाई चेन प्रणाल्याः संचालनेन सहैव एकात्म महत्वपूर्ण खनिज वीथि निर्माणेन सामरिक औद्योगिकी सुरक्षा क्षेत्रम अनवरतम समेधते।
1: आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है।
0: अद्य प्रातः तावत् उभौ प्रधानमन्त्रिणौ भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम इत्यस्मिन् भागं गृहीतवन्तौ। उपराष्ट्रपतिना सीपी राधाकृष्णन इत्यनेन अद्य भुवनेश्वरे ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयस्य प्रांगणे भारतस्य उच्च समुद्र मत्स्यपालन सम्पदः शाश्वत उपयोगाय एकस्य ऐतिहासिक राष्ट्रीय अभियानस्य विधिवत शुभारम्भः अकारि। अत्रावसरे ब्लू इकोनॉमी इति समुद्राधारितार्थव्यवस्था इत्येतत् राष्ट्रीय समृद्धेः एकं दूरगामी परिवर्तनकारी इंजनिति वर्णयन् उपराष्ट्रपतिः देशस्य यूनां प्रति आह्वानं कृतवान्। तैः विकसित भारतस्य आधारशिलात्वेन आधुनिकाः प्रौद्योगिकी संचालिताः मत्स्यपालन सामुद्रिक वृत्तयः पूर्णोत्साहेन अंगीकरणीयाः। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। उत्तराखण्ड राज्यं राष्ट्रीय शिक्षा नीति विंशतेः उल्लास इति नूतन भारत साक्षरता कार्यक्रमस्यान्तर्गतं निर्धारितान् वयस्क साक्षरता मानदण्डान् सम्प्राप्य देशस्य षष्ठं पूर्ण साक्षर राज्यं भवितुं गौरवास्पदं स्थानम् अवाप्तवान्। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालयस्य विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारितानां मानदण्डानां पूर्त्यनन्तरं ह्यः राज्यपालेन अस्याः ऐतिहासिक घोषणायाः अनुमोदनं कृतम्। अन्यासाम् उपलब्धीनां श्रृङ्खलायाम् अनेन कीर्तिमानेन सह उत्तराखण्डः अधुना मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचलप्रदेश, सिक्किम इत्यादीनां पूर्णसाक्षरराज्यानां सूच्यां सम्मिलितो जातः। यः राज्यस्य शैक्षणिक विकासस्य यात्रायामेकः महत्वपूर्णः अवसरो वर्तते। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इमाम् उपलब्धिम् ऐतिहासिकी इति वर्णयन् सहर्षं प्रावोचत् यत् सफलतेयं सर्वकारस्य

0: नमस्कार मीनू बहन।
1: नमस्कार प्रिया बहन। तो बताएं क्या हाल समाचार
0: हाल
1: बाते।
0: चाल तो बहुत ठीक है। मॉनसून के आने के बाद जो अभी मौसम का जो मिजाज है उससे नमी होने की वजह से मतलब बहुत ही मजा आ रहा है।
1: मजा तो अभी के चाहिए। मौसम बदले से मन मिजाज भी बदल जाला और नीमन खूब लगेला।
0: अच्छा तो लग ही रहा है, लेकिन मन मिजाज के बदलने की जो आपने बात कही उसमें अगर ध्यान ना दे तो लोगों को बुखार, सर्दी, खांसी इस तरीके से भी हो रहा है, क्योंकि जब भी मौसम बदलता है तो ये सब
1: मतलब सर्द
0: आम बात
1: गरम
0: है,
1: होके से।
0: आम बात है। लेकिन
1: हाँ
0: इसमें जो सबसे अहम भूमिका होती है वो होती है महिलाओं की, क्योंकि हम महिलाओं का एक स्वाभाविक व्यवहार होता है शुरू से
1: हाँ
0: कि हम बड़े जिम्मेदार होते हैं घर परिवार के प्रति।
1: देखिए, मतलब कि सही कहते नहीं कि महिला सभन के आज ये पसंदीदा कार्यक्रम आंगन में, जे आज हमनी सब दोनों बैठल बनी, आज जब दूगो महिला बैठ जाएं तो कोनो नीमन बात ना हो कि ऐसा तो हो ही ना सकेला।
0: तो महिलाओं की जो ये मौसम की भी बात है, तो हम खुद से ज्यादा अपने घर परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान देते हैं। ऐसे में क्या
1: हाँ
0: होता है कि हमारे अंदर जो कौशल है
1: हाँ
0: जिसे हम अपनी पहचान बना सकते हैं, बहुत बार ऐसा सोच करके कि नहीं छोड़ो जाने दो हम घर परिवार को ही देखते हैं, और कभी कभी जब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है तब लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए था।
1: एकदम
0: तो घर
1: एकदम
0: बैठे परिवार को देखते हुए आप इस तरीके के कार्य कर सकते हैं, यानी

0: बात कर रही हूँ महिलाओं के लिए कुटीर उद्योग की। देखिए बहन, जब एगो महिला आत्मनिर्भर बनेली तो ओकरा से खाली उनकरे जीवन ना बदलेला, बल्कि पूरा परिवार और समाज के दिशा बदल जाएला।
1: बिल्कुल
0: काहे कि महिला के मेहनत, प्रतिभा और आत्मविश्वास ही राष्ट्र के सबसे बड़का शक्ति है। आज की महिला खाली घरे द्वार के जिम्मेवारी के ना समझेली, बल्कि अपन हुनर, जिसन की रवा कहनी, और अपन मेहनत के बल पे एगो सफल उद्यमी बने के समाज के विकास में एगो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहल बाड़ी।
1: बिल्कुल, महिलाओं के लिए कुटीर उद्योग आर्थिक आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण का एक बेहतरीन माध्यम है।
0: हाँ, देखिए महिला सभन के खातिर कुटीर उद्योग एगो ऐसा उद्योग है जिकरा से महिला घर से या फिर छोट छोट व्यवसाय करके अपन जीवन में बदलाव ला रहल बा।
1: सही कहा, घर बैठे कम निवेश में मोमबत्ती, अगरबत्ती बनाना, सिलाई कढ़ाई, पापड़ अचार बनाना, जैविक खेती और हस्तशिल्प जैसे काम बेहद लाभदायक हैं।
0: हाँ, देखिए कुटीर उद्योग करके आत्मनिर्भर बन के अपन घर परिवार ला आय के स्रोत भी बन रहल बाड़ी।
1: वहीं इन कार्यों के लिए भारत सरकार और विभिन्न बैंक महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं भी चला रही हैं।
0: हाँ, देखिए कुटीर उद्योग करके आत्मनिर्भर बन के अपन घर परिवार के आय के स्रोत के तो बना ही रहल बाड़ी, घर के स्थिति के भी सुधार रहल बाड़ी। काहे कि उनकर भीतर जो प्रतिभा बा, जेकरा से वो अपन जीवन में कुछ करे के क्षमता रखेली, जैसन कि सब लोग जान रहल बाड़न कि कुटीर उद्योग में जैसन कि रवा कहनी महिला कौन कौन उद्योग करेली। देखिए ओकरा में कुटीर उद्योग में जैसन कि रवा अभी बोलनी कि सिलाई कढ़ाई बा, बुटीक के काम होखेला, जेकरा में कपड़ा के सिलाई कैनी, फॉल पिक्को कढ़ाई, ब्लाउज डिजाइनर बनाई, ये सब आवेला। दूसरा बात बा कि बहुत ही आसानी से घर बैठल पूजा पाठ के अगरबत्ती हो गेल, मोमबत्ती हो गेल, ई सब हो सकेला, जेकर बाजार हाट में बहुत मांग बा,
1: बहुत ही मांग
0: लोग के अगरबत्ती के मांग
1: बा। ये व्यवसाय करने के बाद मतलब इसकी मांग कभी खत्म नहीं हो सकती।
0: हाँ, अभी जैसन की कहनी कि अचार हो गेल, पापड़ हो गेल, बड़ी, तिलौरी, मसाला, ई सब भी पीस के मतलब ओकरा पैक करके बाजार हाट में या ऑनलाइन भी बेचल जा सकेला।
1: अच्छा, तो इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका हमारे भारत सरकार और जो बैंकों की है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हुनर तो है, सब कुछ आता है, लेकिन पैसे की तंगी की वजह से हम ये उद्योग शुरू नहीं कर पाते हैं।
0: हाँ।
1: तो इसमें स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत महिला उद्यमी अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का ऋण प्राप्त कर सकती हैं।
0: वाह, तो ओकरा से और भी निमन निमन काम हो सकेला।
1: हाँ।
0: जैसे कि देखी हाथ से बनल चीज, जैसे कि अभी देखी राखी आवे वाला।
1: हाँ।
0: बा राखी बनावस या फिर सजावट के चीज हो गेल, जूट के बैग, टोकरी, डगरा, दीवार पे टांगे वाला सुंदर सुंदर सजावट के सामान हो गेल, तो ई सब कुटीर उद्योग के बढ़ावा एकरा से मिली। हस्तशिल्प जेकरा कहल जाला, हाथ से बनल चीज, वहीं दूध दही या फिर पनीर बना के छोट छोट व्यवसाय हो सकेला, जे या फिर हो सकेला सौंदर्य के साधन, जे ब्यूटी पार्लर जेकरा कहल जाला, जहाँ आदमी जेकरा बहुत हुनर बा, जेकरा सजे सवरे के, दूसरा के सजावे के, तो ब्यूटी पार्लर भी खोल के ई छोट व्यवसाय के बढ़ावा दे सके लिए।
1: वही अगर योजनाओं की जैसे मैंने बात कही और क्या क्या कर सकती हैं ये तो मीनू बहन बता ही रही हैं।
0: हाँ।
1: लेकिन योजनाओं को भी आप जरूर नोट कर लें। वही सेंट कल्याणी स्कीम की बात करें, यह सेंट्रल बैंक और इंडिया द्वारा संचालित है, जहाँ विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की महिला 1 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकती है। वहीं मुद्रा लोन की बात करें तो छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए शिशु, किशोर और तरुण श्रेणियों के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन प्रदान करती है।
0: वाह, देखिए महिला सभन के कम पूंजी लगा के ढेर मनी मुनाफा वाला इस सब काम बाटे, जेकरा से आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास के भी बढ़ावा दे सकेली, और जिसन सरकार भी एकरा में सहयोग कर रहल बड़न। तो देखिए सशक्त महिला से सशक्त परिवार, सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र के नींव होगी।
1: बिल्कुल, और ये नींव जो है ना, हम महिलाओं के जैसे कहते हैं ना कि हम घर परिवार को जिस तरीके से संभालते हैं, हमें लगता है कि सब कुछ बड़ा बढ़िया रहे।
0: एकदम एकदम, महिला हर काम में आगे बढ़ी, चाहे वो घर के होखस, चाहे बाहर करस, हर काम के वो कर सकेली। और ये कुटीर उद्योग तो समझी कि वो अगर उनका अंदर हुनर बा तो खूब नीमन से करके आय के स्रोत बढ़ाई हैं, अपन परिवार के भी खुशी
1: और जिस तरीके से कंडीशनिंग की जाती है।

0: है महिलाओं को बचपन से ही कि
1: हाँ
0: आपको आपकी जिम्मेदारियां होंगी घर परिवार के प्रति, आपको किचन का काम सीखना चाहिए, आपको पापड़ अचार ये सब
1: हाँ
0: मतलब
1: बचपने से
0: हमारी हमारी
1: सिखावल जाला।
0: माओं को हमने देखा है और हम बहुत कुछ जानते हैं पहले से। तो इसे व्यवसाय के तौर पे जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि अरे आर्थिक तौर पे आज की तारीख में जो भी संबल है, पुरुष प्रधान देश जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं हम छोटी छोटी चीज़ों
1: तो
0: के
1: महिला
0: लिए,
1: के भी साथ में हाथ बढ़ावे से
0: हाँ तो लेकिन
1: कि
0: लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए कि हमें
1: पुरुष
0: ये
1: पे मतलब
0: पुरुष पे
1: निर्भर
0: निर्भर
1: हो
0: है, तो
1: जाइला।
0: ऐसे में क्या होता है, एक पुरुष को हम गलत भी नहीं कह सकते, उनको पूरा परिवार चलाना पड़ता है, तो वो सोचते हैं कि इसमें खर्च क्यों करें, तो एक ये बात होती है। लेकिन जब अगर आप स्वयं सशक्त हैं, आप
1: हाँ
0: आर्थिक तौर पे संबल हैं, तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से अपने मन से कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी को खुद के जीवन जीने का पूरा अधिकार है अपने अनुसार।
1: देखिए।

0: प्रधान देश जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम छोटी छोटी चीजों
1: तो
0: के
1: महिला
0: लिए,
1: के भी साथ में हाथ बढ़ावे से
0: हाँ तो लेकिन
1: कि
0: लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीजों के लिए कि हमें
1: पुरुष पे
0: ये
1: मतलब
0: पुरुष पे
1: निर्भर
0: निर्भर
1: हो
0: है, तो
1: जाइला।
0: ऐसे में क्या होता है, एक पुरुष को हम गलत भी नहीं कह सकते, उनको पूरा परिवार चलाना पड़ता है, तो वो सोचते हैं कि इसमें खर्च क्यों करें, तो एक ये बात होती है। लेकिन अगर आप स्वयं सशक्त हैं, आप
1: हाँ
0: आर्थिक तौर पर संबल हैं, तो ये सारी चीजें आप आसानी से अपने मन से कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी को खुद के जीवन जीने का पूरा अधिकार है अपने अनुसार।
1: देखिए, आज हमने के बहुत नीमन बात कहनी आंगन
0: हाँ
1: में बैठ के महिला सभन खाती कुटीर उद्योग के बारे में, और इतना नीमन बात भइल तो मन तो करता कि अंचला कुमारी से एगो लोक भजन सुन लही।

तो अभी अंचला कुमारी से हमने लोक भजन और झूमर सुना, और इनसे और भी समय रहा तो ज़रूर लोकगीतों का आनंद लेंगे, लेकिन अभी समय हो चला है प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान का, तो चलिए सुनते हैं आयुष्मान।

आयुष्मान। ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, जमुआर सासाराम के सौजन्य से।

पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान में आप सबों का एक बार फिर से राजेश, जी हाँ मेरा नाम राजेश है, स्वागत करता है। ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं, आपके घर आंगन में लेकर आते हैं कि आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और जिंदगी का भरपूर मजा लेते रहें। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा करते हैं आपके इस कार्यक्रम में। बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, कोई भी हो, सारे लोगों की बात होती है, हेल्दी रहने की बात होती है। विशेषज्ञ डॉक्टर आते हैं, जानकारियां दिलवाते हैं। जी हाँ, ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के मातहत चलने वाला मेडिकल कॉलेज, नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। बहुत ही उम्दा अस्पताल, 1200 बेड का ये अस्पताल है और NMCH अपने आप में पूरे इलाके के हेल्थ सेक्टर को संभाले है। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड पर भी यहां इलाज किया जाता है। ऐसे इस अस्पताल की एक विशेषता बताएं कि यहां से पैसे के लिए कोई वापस नहीं जाता। नोट करें नंबर कि अगर आपके पास कोई समस्या है, घर में, बाहर, उसके बाहर, उसके बाहर, यानी जहां भी समस्या है, इस फोन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं और सही लगे तो जाकर अपना इलाज भी करवा सकते हैं। नंबर नोट करें, नंबर है, ध्यान से सुनिएगा, नंबर बता रहे हैं और संकोच नहीं करना है कि हम फोन करें कि नहीं करें। नंबर है 6206803040

0: 3040 ये नंबर है। आप दिल खोलकर हाँ कहीं से संकोच नहीं कीजिएगा कि हाँ क्या इस समय फोन करें कि कब फोन करें। नहीं नहीं, हमने आगे से आपके लिए ये नंबर दिया है, फोन करने के लिए नंबर दिया है, तो शर्माने की या सकुचाने की या संकोच करने की या आहाइफ बट ये सोचने की जरूरत नहीं है। आप स्वस्थ तंदुरुस्त रहें, हमारा पहला और अंतिम मकसद यही है। हम बच्चों की भी बात करते हैं, समय समय पर डॉक्टर रजत कालरा को भी लेकर आते हैं, क्योंकि बच्चों के इलाज के लिए, उसके हृदय के इलाज के लिए अगर कोई समस्या है बच्चे के हृदय में, तो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बहुत ही उम्दा व्यवस्था है। आज हमारे साथ रजत कालरा है, लेकिन हम कहेंगे कि वो खुद से अपना परिचय दें, क्योंकि बहुत सारे लोग हाँ इस कार्यक्रम से नए नए जुड़ रहे हैं, क्योंकि फोन कॉल्स बताते हैं, कोई कहता है पहली बार मैंने सुना, कोई दूसरी बार सुना, कोई कहता है हमने आपको फोन किया था। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है, और आप अपना परिचय पहले खुद से दीजिए पूरे बिहार और झारखंड के लोगों को।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रजत कालरा है, मैं एक हार्ट सर्जन हूँ, यानी मैं हार्ट के ऑपरेशन करता हूँ, खासकर बच्चों को जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उसका हम नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम में अब इलाज कर रहे हैं। मैंने अपनी ट्रेनिंग दिल्ली एम्स से करी थी, और उसके बाद खासकर बच्चों की ट्रेनिंग के विषय में मैं अमेरिका से ट्रेनिंग लेके वापस इंडिया आया, और इस समय पिछले 2 सालों से नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम में हम बच्चों के हार्ट का फ्री इलाज कर रहे हैं।
0: डॉक्टर साहब बातचीत की शुरुआत करते हैं, और बच्चों की बात होगी, उसके हार्ट की बात होगी, हृदय की बात होगी, लेकिन कुछ अटपटा सा नहीं लगता है कि बच्चों में हार्ट की बीमारी, हाँ क्या कहना चाहिएगा इस पर?
1: देखिए, आज से 10 साल पहले तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बच्चों में हार्ट की प्रॉब्लम होना अविश्वास था, खासकर गाँव जैसे जगहों पे, पर अब धीरे धीरे खासकर डिजिटल मीडिया की प्रेजेंस की वजह से लोगों में अवेयरनेस तो आ रही है कि हाँ रेडियो के वैसे कि भाई ऐसी अवेयरनेस है कि बच्चों को भी हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, बट अब मेन प्रॉब्लम है उसका डायग्नोसिस करना। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं, आउटरीच प्रोग्राम बढ़ रहे हैं, तो अब समय पे डायग्नोसिस हो पाता है, जिससे उनको माता पिता को इतला दे पाए कि भाई इस वजह से बीमारी है, और फिर वो सोचते हैं, आगे हिम्मत करते हैं, कुछ इलाज कराते हैं, कुछ ओपिनियंस देते हैं, बट पहले और अब में ये फर्क है कि धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है।
0: क्या लोगों में विश्वास आ रहा है क्या?
1: देखिए, जैसे जैसे बच्चे ठीक होके जा रहे हैं, कम्युनिटी में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और पहले हमारे पास लोकल पेशेंट आते थे, अब सीतामढ़ी, मोतिहारी, झारखंड के अलग अलग इलाकों में, बनारस से, यहाँ तक कि दिल्ली NCR से भी पेशेंट आ रहे हैं।
0: कार्यक्रम चल रहा है आयुष्मान, पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान में राजेश हूँ, आप सबों के घर आंगन में, आपके आपके आपके आकाशवाणी केंद्र से ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है, सारे लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, खास करके जब बच्चों की बात आती है, आप बड़ों की भी बात आती है, तो हम चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें, जानकारियां आप तक भरपूर रहे, कि कोई समस्या आए तो आप सही जगह जा सकें। एक फोन नंबर भी बताते हैं कि आप इसे डायल करके जानकारियां ले सकते हैं, नंबर है 6206803040 ये नंबर है। और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, ये बच्चों के लिए जो हार्ट की समस्या या इस तरीके का जो आपने आपके नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो चिकित्सा दी जाती है, अकेले या आपकी पूरी टीम है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए पूरे बिहार वालों को, क्योंकि विश्वास एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है हेल्थ सेक्टर में, खास करके और खास करके जब बच्चों की बात आती है।
1: कहते हैं ना, प्लेयर इज एज गुड एज अ टीम, है ना, तो ऐसे ही केवल डॉक्टर के अकेले होने से हार्ट का इलाज नहीं हो पाता, तो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सुविधा चाहिए, टीम चाहिए, मैन पावर चाहिए, वो सब इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तभी हम डिलीवर कर पा रहे हैं। और ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पूरे देश भर में कुछ ही गिने चुने सेंटर हैं जहाँ पे बच्चों का इलाज सब्सिडाइज कॉस्ट या फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, खासकर जहाँ पे वजन का कोई क्राइटेरिया

0: बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे 10 किलो के ऊपर के बच्चे उन्हीं का इलाज हो सकता है, लेकिन हमारे सेंटर में हम वजन पे कोई मायना नहीं रहता, बच्चे की गंभीरता पे देखा जाता है, चाहे 2 किलो का हो, 2.5 किलो का हो, और अगर बहुत सीरियस है जिसको इलाज की जरूरत है, हम लोग वो भी आयुष्मान में फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं।
1: इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, आपके जो साधन हैं, हाँ, उसमें आप कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या क्या है यहाँ?
0: देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स है, मॉडलर ओटी है, आईसीयूज में हेपा फिल्टर लगे हुए हैं, मॉडलर आईसीयूज है, वेंटिलेटर अप टू डेट है, यानी सारा इक्विपमेंट जो भी एक एडवांस कार्डियक सेंटर में होना चाहिए, देश में नहीं विदेश में, वो भी हमारे पास। ये एक क्वार्टनरी केयर सेंटर है, यानी यहाँ पे सीरियस मरीजों के इलाज किया जाता है, तो बाय वर्चू ऑफ दैट हम 24 घंटे सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं।
1: अच्छा, एक बात डॉक्टर साहब, ये बताइए कि बच्चों में हार्ट की समस्या कब आती है, क्या गर्भ में या गर्भ से बाहर जब बच्चा जन्म लेता है, और क्यों क्यों होता है ये ऐसी तरीके की समस्या बच्चों में, कैसे आती है?
0: जो बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जब बच्चे पनप रहा होता है गर्भ में, तभी हो जाता है। तो ये पता तभी लगता है, ऑफ कोर्स, जब बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन आजकल एंटीनेटल इकोज होते हैं, यानी जब बच्चा गर्भ में होता है तो इको के जरिए बच्चे के हार्ट की सेहत भी देखी जा सकती है, ताकि ये प्लान करके डिलीवर कर सके। अब दूसरा, ये होता क्यों है? तो हर 3 या 4 बच्चे, हर 1000 में से 3 या 4 बच्चों को ये कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन, यानी हार्ट के बनावट में दिक्कत आ जाती है। तो इसका कोई एक कारण नहीं है, मल्टीफैक्टोरियल बोलते हैं। तो इसीलिए ये केवल भारत में ही नहीं, विकसित देशों से भी हटाई नहीं जा सकती, तो वहां पे भी उतना ही इंसिडेंस है जितना हमारे यहाँ है। तो कोई इसका एक विशेष कारण नहीं है, और ये इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप में दोष ढूंढा जाए।
1: कोई कारण पता नहीं चल पाया है इसका, डॉक्टर साहब का कहना है। कार्यक्रम चल रहा है पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान, बच्चों के हृदय रोग क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या इलाज होता है, कार्डियक सर्जरी क्या होती है, सारी चीजों पर डॉक्टर रजत कालरा से बातचीत चल रही है। और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से, 6206803040, 6206803040 ये नंबर है। इस पर आप डायल करके जानकारियां हेल्थ से संबंधित ले सकते हैं, या नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में क्या क्या सेवाएं दी जाती है इसके विषय में भी जानकारियां ली जा सकती है। वैसे हम आपको बताएं कि आयुष्मान कार्ड से यहां इलाज होता है। डॉक्टर कालरा, एक छोटा सा सवाल, क्या मैल न्यूट्रिशन भी इसका कारण हो सकता है, क्या हम ढूंढ सकते हैं क्या?
0: देखिये, मैल न्यूट्रिशन जहां तक बोला जाए, जैसे फोलिक एसिड डिफिशियंसी है, उसकी वजह से कुछ हद तक हो सकता है, बट बहुत सारे समाज में लोग हैं जो मेल नरिश नहीं है, खासकर माता पिता, हाँ, फॉरेन में भी होता है, तो फिर वहां पे क्यों हो रहा है ये, राइट? तो कहीं पे मल्टी फैक्टोरियल बोलते हैं, थोड़ा सा जेनेटिक्स, थोड़ा सा खान पान, थोड़ा सा रहन सहन, तो मल्टीपल चीजें बनकर ये कॉज करती है। तो किसी एक चीज को एलिमिनेट कर दें तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा जिससे इसका इंसिडेंस कम कर सकें। हाँ, ये जरूर है कि फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, कुछ दवाइयाँ जैसे वॉरफरिन हो गया, लिथियम हो गया, इनको अवॉइड करना चाहिए, जिनकी वजह से पता है हमको कि हार्ट के बनावट में प्रॉब्लम हो सकता है। बट बहुत सारे कारण हैं, सबको नहीं, एक पिन पॉइंट से नहीं बोल सकते कि इसकी वजह से ही हार्ट की प्रॉब्लम।
1: अच्छा, एक बात डॉक्टर रजत कालरा, फटाफट, हाँ, लोगों तक जानकारियां पहुंचाना बहुत जरूरी है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
0: अभी हम लोग एक तो आउटरीच ओपीडीज कर रहे हैं, खासकर सीतामढ़ी, मोतिहारी, फिर जमुई, इधर देवघर, बनारस, जौनपुर, तो इन जगहों पे जाकर कम्युनिटी में लेवल पे जाकर स्क्रीनिंग करके वो कर रहे हैं। फिर दूसरा ये है कि जगह जगह एडवर्टाइजमेंट्स, यानी पोस्टर्स लगा रहे हैं, ताकि लोगों को पता लगे कि यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। और तीसरा है कि ऑडियो मीडिया जैसे रेडियो या प्रिंट मीडिया, अखबार में एडवर्टाइजमेंट, इनके जरिए कोशिश कर रहे हैं। बट आई थिंक बेस्ट

0: इज कम्युनिटी मैसेज, जितने बच्चे ठीक होकर जाएंगे वो दूसरे को बताएंगे, बहुत पब्लिसिटी, उसी से ही कॉन्फिडेंस। और
1: बहुत अच्छी पहल है डॉक्टर रजत कालरा, आप ओपीडीज में जा रहे हैं, अलग अलग शहरों में जाकर बता रहे हैं एडवर्टीजमेंट, और इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से भी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हमारी रीच करोड़ों लोगों तक होती है ना, जिसमें हम बताते हैं कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के तहत जो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है क्या क्या सुविधाएं दे रहा है, जन सेवा में खड़ा है। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारे सवाल शेष रह गए हैं, अगले एपिसोड में हम आपसे बातचीत कर जानेंगे। पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका में अभी बातचीत चल रही थी डॉक्टर रजत कालरा से, बच्चों के डॉक्टर हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि चिकित्सा का जो स्थान है ना, वो भरोसा है, और आपका भरोसा हमें मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास में, जी हाँ, आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है, पैसे के चलते कोई भी इंसान वापस नहीं लौटता। नंबर नोट करें 6206803040, 6206803040 ये नंबर है। तो बस आज हमें यानी अपने दोस्त राजेश को दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह नहीं 15 दिनों के बाद फिर से मुलाकात होगी, क्योंकि ये है पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान। हाँ, संकोच नहीं कीजिएगा, चलें, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और जिंदगी का भरपूर मजा लेते रहिए।
2: आयुष्मान
1: नमस्कार,
2: ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे थे नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जमुआर सासाराम के सौजन्य से।
3: हाँ, तो अभी हमने के सुनत रहे प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान, तो एक संगे आंगन के समय संपन्न भेल, और हाँ। आगे हमने के खेती गृहस्थी में बात करम।
4: तो चलिए।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: हाँ तो प्रिया बहन, देखिए खेती गृहस्थी में आज चर्चा कैल जाए गाय पालन के आर्थिक पहलू के।
2: बिल्कुल, क्योंकि हमारे किसान भाई और बहन वो फसल उत्पादन के साथ ही साथ पशु जरूर पालते हैं, और ऐसे में सबसे ज्यादा अगर कोई पशु पलाता है तो हाँ, वो है गाय।
1: आ देखिए, गाय पालन भारत के एक महत्वपूर्ण कृषि आधारित व्यवसाय भी है। गाय से दूध, दही, पनीर, घी, मक्खन, एकर अलावा दूध के उत्पादन हमेशा बाजार हाट में एकर मांग बनल रहेला, जेकरा से नियमित रूप से आय के स्रोत बनल रहेला।
2: बिल्कुल, आर्थिक पहलू के दृष्टिकोण से हम बताते हैं कि कैसे ये पहलू लाभदायक है। इसमें मुख्य जो बिंदु है वो है आय के स्रोत, लागत और व्यय, सरकारी सहायता और सब्सिडी जैसी योजनाओं पर ये आधारित है।
1: अब देखिए, गाय के गोबर से जैविक खाद, गोबर गैस और गोबर से बनल गोइठा हो गए और भी चीज तैयार करके आमदनी के स्रोत बनावल जाला। गाय के गौमूत्र से भी ढेर मनी काम होखेला, जैसे कि जैविक खेती के संगे संगे औषधि बनावे में भी गौमूत्र के उपयोग कैल जाला।
2: वही आय के स्रोत की बात करें तो गाय से प्राप्त दूध आपकी आय का सबसे बड़ा और मुख्य साधन है। देसी नस्लें कम मात्रा में लेकिन उच्च गुणवत्ता वाला दूध दे

0: होती हैं, जबकि विदेशी या संकर नस्लें अधिक मात्रा में दूध देती है। वहीं गाय का गोबर और मूत्र खेती के लिए उत्तम खाद है, जैसा कि मीनू बहन ने बताया। इसे बेचकर या अपनी खेती में उपयोग करके रासायनिक खाद पर होने वाले भारी खर्चे को बचाया जा सकता है।
1: देखिए, गाय पालन से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेला, एकरा में महिला भी शामिल होखेली। गाय पालन खातिर कोशिश करी कि नीमन किस्म के गाय के चुनाव करी, ताकि ओकरा से आर्थिक लाभ के अवसर मिले। गाय के संतुलित आहार दही, समय पे टीकाकरण करवाई, उनकर रहे वाला जगह साफ सुथरा रखी। नीमन देखभाल से गाय स्वस्थ और दूध उत्पादन में बढ़ोतरी भी होगी, जकरा से किसान के लाभ ही लाभ होगी।
0: हाँ, वही गोबर से बायोगैस बनाकर ऊर्जा की बचत की जा सकती है। गौमूत्र से औषधियाँ और फिनाइल जैसे उत्पाद बनाकर अच्छी कमाई की जा सकती है। वही लागत और व्यय की बात करें, जो कि मैंने कहा, तो कुल खर्च का लगभग 60-70% हिस्सा हरे चारे, सूखे चारे और फीड पर खर्च होते हैं। गायों को आरामदायक रखने और शेड बनाने में शुरुआती लागत लगती है। टीकाकरण और नियमित चिकित्सा पर होने वाला खर्च, डेयरी का रखरखाव, दूध निकालना और साफ सफाई के लिए आवश्यक मानव बल है।
1: बहुत नीमन बात कहनी। तो देखिए, गाय पालन खाली दूध उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि किसान के आर्थिक स्थिति के भी मजबूत करेला, ग्रामीण विकास के भी बढ़ावेला, जिकरा से देश के अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका रहेला।
0: तो ये तो हमने बात की गाय पालन का आर्थिक पहलू,
1: हाँ,
0: इससे क्या फायदे हैं, और अब
1: हाँ
0: हम बात करते हैं एक वार्ता की। चलिए सुनते हैं मनीष कुमार से वाटरशेड प्रबंधन के बारे में।
2: जैसा हम सभी जानते हैं कि इस विषय का आज की खेती में बहुत महत्व है। प्रत्येक जल स्रोत, चाहे वो नदी हो, झील हो, तालाब हो, झरना हो, सभी का एक वाटरशेड होता है। वाटरशेड भूमि का वह क्षेत्र होता है जिसका पानी तथा गाद किसी विशेष जल स्रोत जैसे नदी या झील में बहकर जाता है, या कह सकते हैं यह एक जलीय इकाई है जिसके जल की निकासी एक प्रणाली के माध्यम से एक ही स्रोत में होता है। पृथ्वी के सभी भूमि किसी न किसी वाटरशेड के अंग हैं। अतः वाटरशेड भूमि एवं जल का वह क्षेत्र है जो एक निकास सीमा के अधीन होता है तथा जिसका सतही अपवाह, जिसको अंग्रेजी में रन ऑफ कहा जाता है, वो जमा होकर एक निकास बिंदु के द्वारा बड़े नदी या झील में गिरता है। वाटरशेड तकनीक का उपयोग वर्षाश्रित क्षेत्रों में होता है। संपूर्ण जल संग्रहण क्षेत्र को कैचमेंट क्षेत्र भी कहा जाता है। साइज, जल निकासी, आकार और भूमि उपयोग के आधार पर इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे माइक्रो वाटरशेड जो कि 50,000 हेक्टेयर से बड़ा होता है, सब वाटरशेड जो कि 10,000 से 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र का होता है, माइल वाटरशेड जो कि 1,000 से 10,000 हेक्टेयर का होता है, माइक्रो वाटरशेड 100 से 1,000 हेक्टेयर तक क्षेत्र का होता है, मिनी वाटरशेड यह 1 से 100 हेक्टेयर एरिया का होता है। फैन आकार का एवं फर्न आकार का वाटरशेड हमारे क्षेत्र में देखा जा सकता है। वाटरशेड प्रबंधन, ये किसी वाटरशेड के अंतर्गत जल सहित अन्य प्राकृतिक संसाधनों के बचाव एवं उसके गुणवत्ता में बेहतर सुधार हेतु किया जाने वाला भूमि और जल स्रोतों के सम्मिलित रूप से संरक्षण को वाटरशेड प्रबंधन कहा जाता है। इसमें भूमि सतह एवं वानस्पतिक प्रबंधन किया जाता है ताकि मृदा एवं जल संरक्षण के माध्यम से तत्काल एवं दीर्घ अवधि में भी किसानों को तथा समाज के सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। बड़े वाटरशेड में संपूर्ण क्षेत्र का उपचार एक बार में संभव नहीं हो पाता है, अतः इन्हें छोटे छोटे वाटरशेड में विभाजित करके तब चिन्हित वाटरशेड में एक एक करके सुधार कार्यक्रम किए जाते हैं। प्राथमिकता वाले वाटरशेड की पहचान के लिए कई तरीके होते हैं, जैसे सर्वे के आधार पर, मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वे के आधार पर, हवाई फोटोग्राफी के आधार पर, रिमोट सेंसिंग तकनीक अपनाकर या गाद का सर्वेक्षण करके। वाटरशेड प्रबंधन के

कई उद्देश्य होते हैं। वाटरशेड के अंतर्गत मौजूद सभी भूमि एवं जल स्रोतों का समुचित उपयोग ताकि अधिकतम उत्पादन के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान न्यूनतम हो, इसके लिए कई उद्देश्य की चर्चा मैं यहाँ कर रहा हूँ। जैसे हानिकारक अपवाह एवं कटाव नियंत्रण, ताकि मृदा एवं जल का संरक्षण हो सके। अपवाहित जो जल है उसका प्रबंधन और उसका सदुपयोग, वाटरशेड के भूमि का बचाव, उसका संरक्षण एवं सुधार, ताकि उसकी दक्षता में वृद्धि हो और उत्पादन बेहतर मिल सके। वाटरशेड के अंतर्गत विकसित सभी जल स्रोतों की सुरक्षा, मृदा अपरदन कम करना, गाद की मात्रा का वाटरशेड पर प्रभाव कम करना। अगला है खराब भूमि को पुनः उपयोग के लायक बनाना, अधिकतम बाढ़ के समय निचले क्षेत्र में आवश्यक प्रबंधन करना, संरचनाओं का निर्माण करना, वर्षा जल का संग्रहण करना एवं मिट्टी में पानी अवशोषण की क्षमता को बढ़ाना, लकड़ियों चारा का अधिक उत्पादन, जंगली जीवों की सुरक्षा, भूगर्भीय जल की रिचार्जिंग, ये भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। औद्योगिक विकास के माध्यम से वाटरशेड के अंदर रोजगार सृजन करना, जैसे डेयरी पालन, मछली पालन इत्यादि, संसाधनों के अत्यधिक इस्तेमाल को कम करना। अब हम बात करते हैं वाटरशेड प्रबंधन के अवयवों की। किसी भी वाटरशेड के प्रबंधन के लिए सर्वप्रथम योजना बनाया जाता है, जिसमें वाटरशेड के गुणों की पहचान की जाती है एवं प्राकृतिक संसाधनों की सूची बनाई जाती है। वाटरशेड प्रबंधन के अंतर्गत वैकल्पिक भूमि उपचार के तरीके लागू करने के लिए भूमि जल वनस्पति संबंधी जानकारी को एकत्रित करके कई चरणों में समस्या समाधान के तरीके को अपनाया जाता है। इसके विभिन्न चरण की चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। पहला चरण होता है समस्या पहचानने का चरण, दूसरा होता है पुनः प्राप्ति करने का चरण, जो हमारा खराब हो चुका है, उसकी क्वालिटी गुणवत्ता खराब हो चुकी है, उसे हम पुनः प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तीसरा है बचाव चरण, चौथा है उसमें सुधार करने के लिए जो हम आवश्यक कदम उठाते हैं उसका जिक्र इसमें रहता है। अब हम चर्चा करेंगे वाटरशेड के लिए जो कार्य योजना बनाई जाती है उसकी। प्रत्येक वाटरशेड की अलग अलग समस्या होती है, अतः उनका कार्य योजना भी अलग अलग होता है। एक एग्जाम्पल के लिए एक वाटरशेड का यहाँ पर चर्चा करना चाहेंगे कि उसमें क्या क्या हमें आंकड़े एकत्रित करने चाहिए। सर्वप्रथम वाटरशेड का सीमा निर्धारण, उसका मानचित्र तैयार करना, वाटरशेड के अंतर्गत जल निकासी की छोटी इकाइयों को इंगित करना, उसका साइज क्या है, आकार, उसकी ढाल, संसाधनों का मानचित्र बनाना, जलवायु संबंधित आंकड़ा जैसे वर्षा, तापमान, वाष्पीकरण, आर्द्रता, हवा का वेग, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित जल निकासी प्रणाली का मानचित्र बनाना एवं उसकी सूची तैयार करना, भूमि उपयोग एवं भूमि आच्छादन का मानचित्र बनाना, मिट्टी का मानचित्र बनाना, मिट्टी के प्रकार की सूची बनाना। वाटरशेड में मुख्य क्या समस्याएं हैं इसकी सूची बनाना, उसके अंतर्गत हम अपरदन प्रभावित क्षेत्र की पहचान करते हैं, जल स्रोतों की गुणवत्ता की पहचान करते हैं, प्रदूषण के स्रोतों की सूची एवं नक्शा बनाते हैं, बाढ़ के पानी से नुकसान या गाद से जल निकासी या सिंचाई या कृषि कार्य में नुकसान, इसका हम इसमें चर्चा करते हैं, जल प्रबंधन की क्या समस्या है इस पर चर्चा करते हैं, सहभागियों की पहचान करते हैं और स्थानीय लोगों में जागरूकता तथा रुचि फैलाना ताकि निर्णय लेने में उनकी संलिप्तता हो। अब समस्याओं को जानने के बाद बारी आती है वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम की। समस्याओं के निदान के लिए कृषि योग्य भूमि, वन भूमि, चारागाह भूमि, सिंचित क्षेत्र, जल निकासी क्षेत्र एवं उन क्षेत्रों के लिए बचाव के उपाय का वर्णन इसमें किया जाता है। कृषि भूमि के लिए सस्य या यांत्रिक उपाय के

प्रशंसा भूमि उपयोगिता वर्ग के अनुसार की जाती है। दूसरा है संरक्षित सिंचाई विधि के अंतर्गत भूमि के अनुसार सिंचाई विधि अपनाना, भूमि समतलीकरण, जल निकासी के तरीके, उसके रख रखाव एवं अनुमानित खर्च का आकलन करना। तीसरा है बाढ़ से सुरक्षा, इसके अंतर्गत नालों का सुदृढ़ीकरण किया जाता है, उसकी उड़ाही की जाती है एवं जहां आवश्यक होता है संरचनाएं निर्माण की जाती हैं। चौथा है वन भूमि का प्रबंधन। वन भूमि का प्रबंधन हम इस तरह करते हैं कि उसका हम कृषि सहित लकड़ी के लिए उसका उपयोग कर सकें। चारागाह का प्रबंधन, अस्थाई चारागाह या ग्रेजिंग के लिए उन्नत तरीके की अनुशंसा इसमें की जाती है, जैसे चारा के उन्नत प्रभेद क्या होंगे, उसे उगाने के तरीके क्या होंगे, इन सबों की इसमें विस्तृत जानकारी हम लोग जो है लोगों को देते हैं और सुधार के कार्यक्रम अपनाए जाते हैं। वाटर सेड प्रबंधन के अंतर्गत जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था कि सस्य उपाय क्या क्या होने चाहिए, तो सस्य उपाय में किसान भाइयों आप जान लें, स्ट्रिप क्रॉपिंग, चारागाह का प्रबंधन, वन भूमि का कैसे हम बेहतर उपयोग कर सकते हैं इसको हम लोग करते हैं, फसल चक्र में क्या हमें बदलाव करना चाहिए इस पर हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था देखते हैं कि क्या इसका वैकल्पिक व्यवस्था हो सकता है ताकि बेहतर उत्पादन मिल सके हमें। दूसरा जो प्रमुख उपाय है वो है यांत्रिक उपाय, यानी कि इसमें छोटे छोटे संरचना निर्माण के माध्यम से हम संरक्षित कृषि को बढ़ावा देते हैं। इसके अंतर्गत कंटूर मेड़ का निर्माण, सीढ़ीनुमा खेती, चेक डैम का निर्माण, प्रक्षेत्र तालाब का निर्माण, ये सब आते हैं। वर्षा जल संग्रहण वाटर सेड का एक बहुत ही प्रमुख अवयव होता है। वाटर सेड प्रबंधन के लिए कई संरचनाएं हमारे किसान भाई बना करके और इसका बेहतर प्रबंधन एवं संग्रहण कर सकते हैं, जैसे चौड़ी बेड एवं नाली, यह मृदा के अपरदन को कम करता है तथा सूखा क्षेत्र में मृदा नमी संरक्षण, अधिक वर्षा के समय जल निकास का भी काम करता है। इसके लिए ट्रैक्टर चालित रीजर से बेड एवं नाली बनाया जाता है। बेड पर मक्का, अरहर या चारा फसल, सौरगम, इन सबों को लगाया जा सकता है। इसका निर्माण लागत लगभग 2000 रुपये प्रति हेक्टेयर होता है। दूसरा है वर्षा जल संग्रहण के लिए जो उपाय है वो कंटूर मेड़, इसमें छोटे बांध बनाए जाते हैं। ढालनुमा जमीन पर जो बहता हुआ पानी होता है उसको रोका जाता है, यह अपवाह की गति को कम करता है। इसे सभी प्रकार की मिट्टी में अपनाया जा सकता है। यह खेत में नमी संरक्षण करता है तथा इसे 6% तक की ढाल वाली भूमि में बनाया जा सकता है। इसके निर्माण में 1500 रुपये प्रति हेक्टेयर खर्च आता है। अगला है सीढ़ीनुमा बांध। सीढ़ीनुमा बांध बनाने का काम अधिक ढालदार जमीन में किया जाता है। यह मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होता है। कई चरणों में समतल भूमि बनाने के लिए खेत की मिट्टी को काटा जाता है और इसे खेती लायक बनाया जाता है। इसके निर्माण पर लगभग 5000 रुपये प्रति हेक्टेयर खर्च आता है। अगला है ढालदार खेत के लिए माइक्रो कैचमेंट बनाना। यह स्थानस्थ नमी संरक्षण, मतलब जहाँ पर पानी है वहीं पर पानी को हम जमीन के अंदर कर दें, इस उद्देश्य के लिए ये बेहतर संरचना है। इसकी क्षमता 10 से 12 घन मीटर होती है तथा यह 80% तक सतही अपवाह को नियंत्रित कर लेता है। यह हल्की एवं मध्यम भारी मिट्टी में जो कि 2-8% ढाल वाली हो उसके लिए उपयुक्त होता है। इसमें 30 से 45 सेंटीमीटर ऊंची मेड़ बनाई जाती है और यह सूखे क्षेत्र में बागवानी पौधों एवं कृषि
वानिकी के लिए

0: उपयुक्त होता है। इसके निर्माण पर 6 से 7 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर खर्च आता है। अगला संरचना है चेक डैम निर्माण। कम ऊंचाई का पक्का बांध बनाकर नालों में पानी को रोका जाता है इस संरचना के माध्यम से। यह छोटी धारा वाली वैसे नालों पर बनाया जाता है जो बाढ़ के कारण कटाव करता है। यह पानी की गति को तथा उसके मिट्टी कटने की गति को भी कम करता है। एकत्रित जल आसपास के क्षेत्र में मृदा नमी बढ़ाता है तथा भूगर्भीय जल रिचार्ज भी करता है। इसकी ऊंचाई 1 से 3 मीटर एवं लंबाई 3 से 10 मीटर तक होती है। चेक डैम निर्माण के लिए 40,000 से 1,00,000 रुपये प्रति यूनिट खर्च आता है। अगला जो संरचना वर्षा जल संरक्षण और वाटर सेड प्रबंधन के लिए है वो है रिसन तालाब का निर्माण, मतलब परकोलेशन तालाब। यह भूगर्भीय जल रिचार्ज के लिए बनाया जाता है। इसमें प्राकृतिक नालों के निचले भागों में उथला गड्ढा बनाया जाता है जिसमें गड्ढे की तरफ ढाल होना चाहिए। यह पारगम्य प्रकृति की मिट्टी में ही बनाया जाता है। यह संरचना वहाँ बनाया जाता है जहाँ 800-900 मीटर क्षेत्र में 20-30 सिंचाई कुएँ हों। आर्थिक दृष्टि से रिसन तालाब का आयतन कम से कम 5,000 घन मीटर होना चाहिए। यह संरचना गाद जमा करने के काम भी आता है। इसके निर्माण पर लगभग 60,000 से 1,50,000 रुपये प्रति यूनिट का खर्च आता है।
1: अभी हमने की बहुत ही उपयोगी वार्ता सुनी। वार्ता के विषय रहे वाटर सेड प्रबंधन। अब वार्ता का रहन मनीष कुमार। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका।
2: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते जैसा कि हमने वादा किया था कि आपको लोकगीतों को ज़रूर सुनवाएंगे अंचला कुमारी से, तो चलिए सुनते हैं बरसाती झूमर।

0: वाह, बहुत नीमन ई बरसाती झूमर रहे रवा, तो खूब झूम-झूम के सुनत रही।
1: बिल्कुल, बरसात का मौसम है और झूमने का तो मन हो ही रहा है, तो अंचला कुमारी को सारे लोकगीतों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और समय यहीं समाप्त हो रहा है, कल आना है अपने इस कार्यक्रम में, इसलिए आज जाना होगा मीनू बहन।
0: एकदम एकदम।
1: नमस्कार श्रोताओं, नमस्कार मीनू बहन।
0: नमस्कार प्रिया बहन।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। आगे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: पशुपालक भाई बहन, अत्यधिक गर्मी में पशुओं के रख रखाव का कृपया ध्यान रखें।
2: पशुओं को लू से बचाने के लिए छायादार जगह पर रखें। पशु घर को ठंडा रखने के लिए जूट की टाट लटकाकर उसे गीला रखें। उन्हें दिन में 2 से 3 बार नहलाएं, 3 से 4 बार ठंडा और साफ पानी पीने को दें। खाने में अजोला घास, चोकर और जौ की मात्रा बढ़ा दें। चराने के लिए सुबह जल्दी और शाम को देर से भेजें। लू लगने पर नजदीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करें।
1: डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: और इस गीत के बाद
4: छाया गीत।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 1 करोड़ राशन कार्ड बनाने के दिए निर्देश। किसानों के लिए 12 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। सीमा सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों को वीडियो कॉन्फ्रेंस से किया संबोधित। घुसपैठ रोकने के दिए सख्त निर्देश। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा के अभिषेक कुमार और राजद की रेखा गुप्ता ने दाखिल किया नामांकन। और मौसम विभाग ने कल पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश में 1 करोड़ नए राशन कार्ड बनाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने आज पटना में केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने विभागीय योजनाओं के लाभार्थियों का डेटाबेस तैयार करने और राशन वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बिहार की ऑनलाइन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन की सराहना की। श्री जोशी ने कहा कि बिहार की विकास प्राथमिकताओं और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में केंद्र सरकार हर संभव सहयोग देती रहेगी। बैठक के दौरान बिहार के अक्षय ऊर्जा रोडमैप, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और प्रधानमंत्री कुसुम योजना के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी किसानों को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक एग्रीकल्चर फीडर से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री अशोक चौधरी, ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी तथा सभी जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। समाचार कक्ष से निधिश्री।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अवैध घुसपैठ, सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी और ड्रोन से उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सीमा सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करना आवश्यक है। श्री शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने

0: और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इसके साथ ही श्री शाह ने जनसांख्यिकी बदलाव पर नजर रखने और घुसपैठ पर प्रभावी नियंत्रण के लिए समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। सम्मेलन में बिहार सहित देश के सभी सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी अभिषेक कुमार ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, सांसद रविशंकर प्रसाद, जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। नामांकन के बाद आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार को कोई चुनौती नहीं है और उनकी जीत निश्चित है।
1: और तीसरा आपका, आपने यदि बंटी जी को एक एक वोट देकर जिताया तो आपका विधायक और उससे नितिन नवीन जी के जो दूर सम्रह है और बंटी जी के कंधे पर वो भार दिया गया है। एनडीए का एक एक कार्यकर्ता लगकर एक एक बूथ का एक एक घर तक जाकर अपने उम्मीदवार अभिषेक बंटी को जिताना है।
0: चुनावी सभा को जदयू के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी संबोधित किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रत्याशी अभिषेक कुमार ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि उन्हें कहीं से कोई चुनौती नहीं है।
2: हमारे राजनीतिक गुरु थे, इनके साथ काम करने का मौका मिला, सीखने का मिला और इनके साथ बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत भरोसा है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो काम किए हैं उस काम को आगे बढ़ाना है और उनके विश्वास पर खरा उतरना है। बांकीपुर की जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करेंगे।
0: इधर राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता ने भी अपना नामांकन पर्चा भरा। मौके पर राजद समेत महागठबंधन के विभिन्न घटक दलों के नेता मौजूद थे। श्रीमती गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि उपचुनाव में उनकी जीत तय है।
3: बांकीपुर की जनता धोने का काम करेगी और यहीं से पूरे सरकार को आईना दिखाया जाएगा और एक नया इतिहास लिखेगा बांकीपुर विधानसभा। अभी तो उन्होंने तो जातिगत राजनीति कर दी ना, अपना उत्तराधिकारी उतार दिया।
0: जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर 11 जुलाई को अपना पर्चा दाखिल करेंगे। नामांकन की अंतिम तिथि 13 जुलाई तक निर्धारित है जबकि उम्मीदवार 16 जुलाई तक नाम वापस ले सकते हैं। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के तबादले के लिए पोर्टल आज से चालू हो गया है। इसके माध्यम से शिक्षक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार ने स्थानांतरण की नीति बनाई है। उन्होंने कहा कि तबादले के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी हो चुकी है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को पेयजल की समस्या वाले विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक विनायक मिश्र ने इस संबंध में सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्र निर्गत किया है। पत्र में कहा गया है कि ऐसे विद्यालयों की सूची 10 जुलाई तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाए। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राजस्व न्यायालयों में मुकदमों की सुनवाई से संबंधित दस्तावेजों और साक्ष्यों की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब राजस्व न्यायालय में केवल ऑनलाइन अपलोड किए गए दस्तावेज और साक्ष्य ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके साथ ही भौतिक रूप से कागजात जमा करने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। एक रिपोर्ट।
4: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली RCMS के माध्यम से सभी आवश्यक दस्तावेज और अतिरिक्त साक्ष्य ऑनलाइन अपलोड किए जा सकेंगे। इसके लिए आवेदक बिहार भूमि पोर्टल पर जाकर RCMS में लॉगिन करेंगे, संबंधित न्यायालय का चयन करेंगे और फाइल केस ऑनलाइन तथा एड केस रिकॉर्ड विकल्प के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय पर अपने सभी दस्तावेज RCMS पोर्टल पर अपलोड करें क्योंकि अब केवल ऑनलाइन अपलोड किए गए दस्तावेज ही मान्य होंगे। समाचार कक्ष से कामिनी ठाकुर।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान कटिहार के अहमदाबाद में सबसे अधिक 108.2 मिलीमीटर

0: मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान कटिहार के अहमदाबाद में सबसे अधिक 108.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। विभाग ने कल पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना है।
1: राज्य के उत्तरी भाग के अनेक स्थानों पर वर्षा की संभावना है। दक्षिणी भाग कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने चलने की संभावना है।
0: प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत अरवल जिले के 20 गांवों को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। उप विकास आयुक्त शैलेश कुमार ने बताया कि चयनित गांव में सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, स्कूल, स्वच्छता और विद्युत आपूर्ति सहित सभी आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाएगा। वहीं शेखपुरा जिला प्रशासन ने जिले के अनुसूचित जाति बहुल 21 गांवों को आदर्श ग्राम बनाने का निर्णय लिया है। जिलाधिकारी शेखर आनंद ने बताया कि चिन्हित गांवों में 10 मानकों पर काम करते हुए अंतिम व्यक्ति तक सभी सरकारी सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में सिवान में पदस्थापित उत्पाद निरीक्षक अंकेश कुमार खुंड के पटना, मुंगेर और सिवान स्थित 6 ठिकानों पर छापेमारी की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जांच एजेंसी ने उसके दानापुर स्थित आवास पर छापेमारी की। इसके अलावा मुंगेर और सिवान स्थित ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। सिवान में अंकेश खुंड के भाई से जांच टीम ने लंबी पूछताछ भी की है। उत्पाद निरीक्षक पर आय से 200% अधिक लगभग 2,38,00,000 रूपये की संपत्ति बनाने का आरोप है। पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग, एसएसपी और पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। घटना वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र के धनैया गांव की है। आक्रोशित लोगों ने कार्रवाई में लगी एक जेसीबी मशीन में आग लगा दी और कई वाहनों में तोड़फोड़ की। घटना में वन विभाग के कई कर्मियों के घायल होने की सूचना है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुटे हैं। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भूटान के थिम्पू में आयोजित 16वीं साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में पटना के आदित्य राज ने कांस्य पदक जीता है। उन्होंने 75 किलोग्राम भार वर्ग में यह उपलब्धि हासिल की है। गया जिले के बोधगया थाना क्षेत्र के सिजुआ गांव के पास एक कार और ट्रक के बीच टक्कर के बाद कार में आग लग गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। कार चालक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत परमालपुर के पास एक तेज रफ्तार ट्रक के अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा जाने के कारण चालक और खलासी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गया जिले के परैया थाना क्षेत्र में रोड रोलर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पटना के अमहरा थाना क्षेत्र के बवन लई गांव में पुलिस ने शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। मधुबनी जिले के फुलपरास थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक तस्कर को 13 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। नवादा जिले के कादिरगंज बाजार में एक कपड़े की दुकान में आग लग जाने से लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। पुलिस ने शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण बताया है। पूर्णिया में आज जिला स्तरीय गजेटियर प्रारूप प्रकाशन समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और विकास संबंधी तथ्यों तथा विभागीय आंकड़ों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने अधिकारियों को जिले के इतिहास, धरोहर स्थलों और अद्यतन आंकड़ों को शामिल कर तथ्यपरक और त्रुटि रहित गजेटियर तैयार करने के निर्देश दिए। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में सुपौल जिले ने जून महीने की रैंकिंग में राज्य भर में पहला स्थान हासिल

किया है। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 1 करोड़ राशन कार्ड बनाने के दिए निर्देश। किसानों के लिए 12 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। सीमा सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों को वीडियो कॉन्फ्रेंस से किया संबोधित। घुसपैठ रोकने के दिए सख्त निर्देश। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा के अभिषेक कुमार और राजद की रेखा गुप्ता ने दाखिल किया नामांकन। और मौसम विभाग ने कल पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पश्चिम चंपारण जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष कुमार।
1: पश्चिम चंपारण जिले में मानसून का असर दिखने लगा है। पिछले 3 दिनों से जिले में लगातार बारिश जारी है। बारिश के बाद किसानों ने खेतों में तैयार धान के बिचड़े से रोपनी शुरू कर दी है। वहीं नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज के सभी फाटक आंशिक रूप से खोल दिए गए हैं। इससे नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही है। आज गंडक नदी में 88,300 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बीते दिनों नगर विकास एवं आवास विभाग की 3 सदस्यीय जाँच टीम बेतिया पहुँची। संयुक्त सचिव सुनील कुमार अध्यक्षता में टीम ने नगर निगम के कनीय अभियंता सुजय सुमन पर लगे आरोपों की जांच की। करीब 4 घंटे तक अभिलेखों और फाइलों की जांच की गई तथा संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की गई। यह जांच उप महापौर गायत्री देवी की शिकायत के आधार पर की जा रही है, जिसमें कनीय बहाली और वित्तीय अनियमितताओं समेत कई आरोप लगाए गए हैं। इधर बेतिया अंचल कार्यालय के RTPS काउंटर पर तैनात कलर राजकुमार मिश्रा को निगरानी विभाग की टीम ने 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। श्री मिश्रा पर जमीन की जमाबंदी अनलॉक करने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। निगरानी विभाग ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले के योगापट्टी प्रखंड के सारांश कुमार ने गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने रिदमिक पेयर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर जिले और बिहार का नाम रोशन किया है। गौरतलब हो कि इस प्रतियोगिता में 78 देशों के 500 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। जिले के नरकटियागंज प्रखंड के सोमगढ़ पंचायत निवासी प्रगतिशील किसान आनंद सिंह अपनी एकीकृत खेती के मॉडल को लेकर चर्चा में हैं। वे मत्स्य

0: से पालक जैविक खेती और आधुनिक कृषि तकनीकों से बेहतर आय अर्जित कर रहे हैं, साथ ही करीब 25 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। आनंद सिंह ने बताया कि बायो क्लॉक तकनीक और जैविक खेती से कम लागत में अधिक उत्पादन संभव है। उनका यह मॉडल दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा बन रहा है। जिले में बीते दिनों जिला बिसूत्री समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। जिला प्रभारी मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन ने अधिकारियों को योजनाओं का समय पर और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को समन्वय के साथ काम कर पश्चिम चंपारण को विकास के क्षेत्र में आदर्श जिला बनाने पर जोर दिया। इधर जिले के विभिन्न पंचायतों में सहयोग शिविर आयोजित किए गए। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने आवास, राशन कार्ड, नल जल, शौचालय, नली गली समेत अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़े समस्याएं रखी। नरकटियागंज प्रखंड के हरसरी पुरैनिया पंचायत में आयोजित शिविर में केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे भी शामिल हुए। उन्होंने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान करने का निर्देश दिया। इधर जिले में ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पंचायतों में विकास कार्य तेज किए गए हैं। सड़क निर्माण, मिट्टीकरण, पौधारोपण समेत अन्य योजनाओं में बड़ी संख्या में मजदूर को रोजगार मिला है। उप विकास आयुक्त काजदेव वैभव नितिन ने बताया कि जिले के 318 पंचायतों में 51,000 से अधिक श्रमिक विकास कार्यों में लगे हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। पश्चिम चंपारण जिले के नौतन प्रखंड में पशुपालन विभाग की ओर से अनुदानित दर पर बीते दिनों ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियां का वितरण किया गया। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर रामचंद्र कुमार रवि ने बताया कि योजना का उद्देश्य पशुपालकों की आय बढ़ाना और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना है। लाभुकों का चयन ऑनलाइन आवेदन के आधार पर किया गया। बीते दिनों वाल्मीकि नगर के बेलवा घाट स्थित संगम तट पर ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर 156वीं नारायणी गंडकी महाआरती का आयोजन हुआ। भारत और नेपाल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। उन्होंने पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा में भागीदारी निभाई। बेतिया में भाजपा की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें भाजपा के सचेतक और पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह ने केंद्र सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियां बताई। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना समेत अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ पश्चिम चंपारण के बड़ी संख्या में लोगों को मिल रहा है। पश्चिम चंपारण जिले में मुहर्रम का पर्व शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। पर्व को लेकर बेतिया और बगहा पुलिस जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। जिले के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सभी थाना क्षेत्र में शांति समिति की बैठकें आयोजित कर लोगों से आपसी भाईचारे और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील की गई।
1: अभी आप सुन रहे थे पश्चिम चंपारण जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता आशीष कुमार।
2: ये आकाशवाणी पटना है। आइए अब सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं शर्मा बंधु से भजन।

0: आकाशवाणी पटना से इस वक्त आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में शर्मा बंध से आपने भजन सुना।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री के आगामी न्यूजीलैंड दौरे के उपलक्ष पर भारतीय उच्चायुक्त से विशेष साक्षात्कार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल, जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।

आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री के आगामी न्यूजीलैंड दौरे से संबंधित। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। आइए सुनिए कार्यक्रम बातों बातों में।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम पॉडकास्ट बातों बातों में। आज हमारे स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान आए हैं। आज हम उनसे उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में और उनके मुहिम के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं सीनियर आईपीएस ऑफिसर श्री विकास वैभव जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: जी बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए।
1: जी हमारा भी सौभाग्य, हम गौरवान्वित हैं आपको हमारे स्टूडियो में पाकर। श्रोताओं हम बता दें विकास वैभव जी 2003 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। वर्तमान में बिहार स्टेट प्लानिंग बोर्ड के एडवाइजर के पद पर पदस्थापित हैं आप। सर सबसे पहले हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे, हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे कि कैसा रहा आपका बचपन और आगे की शिक्षा दीक्षा कैसे हुई।
2: देखिए मूल निवासी मैं बेगूसराय जिले के बीहट गांव का हूं। मेरे पिताजी भी इंजीनियर रहे और बीआईटी सिंदरी से उन्होंने पढ़ाई करने के बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में अपनी सेवाएं दी, तो इसीलिए मेरे जन्म के पश्चात बहुत स्थानों पर मेरा रहना हुआ। पिताजी की जहां जहां पोस्टिंग होती गई, गुवाहाटी रिफाइनरी, बरौनी रिफाइनरी, भोपाल, दिल्ली, पानीपत आदि स्थानों पर रहकर पढ़ाई की। लगभग 7 विद्यालयों में पढ़ना हुआ
1: जी।
2: सबसे अधिक यदि किसी विद्यालय में रहा तो बेगूसराय के सेंट पॉल स्कूल में क्लास 2 से लेकर क्लास 8 तक रहा। 9th में भोपाल में था और 10th, 11th, 12th दिल्ली में रहा। उसके पश्चात IIT कानपुर 97 से लेकर 2001 तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मैंने पढ़ाई की और IIT से निकलने के तुरंत बाद सिविल सेवा परीक्षा में अपीयर हुआ था, जिसके लिए 2002 वाली परीक्षा में 2003 में रिजल्ट आया और 60वां रैंक मिला, बिहार कैडर मिला इंडियन पुलिस सर्विस। तब से बिहार में अपनी सेवाएं दे रहा हूं।
1: जी बीटेक आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की IIT कानपुर से, उसके बाद फिर UPSC की परीक्षाएं, ये प्रेरणा आपको कैसे मिली?
2: देखिए प्रेरणा तो मुझे लगता है बाल्यकाल में ही एक घटना हुई थी। बहुत पहले क्लास 7 में था, समस्तीपुर में एक जगह है पांडव स्थान
1: जी,
2: जहाँ ऐतिहासिक चीजें मिल रही थी और लोग लूट रहे थे। तो उससे मेरे मन में बड़ी पीड़ा हुई थी कि क्यों ऐसा हो रहा है, कौन इन्हें रोकेगा, कौन समझाएगा। एक बालक के मन में भाव तो था लेकिन बालक के कुछ सुनने वाला नहीं था। लेकिन अगले दिन मैंने सुना कि प्रशासन ने आदेश लगा दिया है और उस समय धारा 144 लगी और पुलिस फोर्सेज आ गई, तो जो उत्खनन लोगों के द्वारा चल रहा था रुक गया। तभी कहीं ना कहीं मन में ये भाव आया था कि अपने जीवन में कुछ ऐसा करूंगा जिससे समाज में परिवर्तन में मेरी भूमिका हो। आगे चलकर पिताजी की पोस्टिंग जब भोपाल हुई, तब 9th में था, वहाँ बच्चों ने बिहारी बोलकर चिढ़ाया। इस बात ने मेरे मन में बहुत गहरा आघात पहुंचा कि जो शब्द सम्मान का प्रतीक होना चाहिए अपमान का सूचक क्यों हो गया। और तब ही मन में मैंने एक संकल्प लिया था कि अपने जीवन काल में कुछ ऐसा करूंगा जिससे बिहारी शब्द पुनः सम्मान का प्रतीक बने, इसमें मेरी भूमिका हो। झटके और भी लगने थे, तो उसके बाद IIT की मैंने जब तैयारी की, पिताजी दिल्ली आ गए थे और IIT के पेपर 1997 में अगर आप याद करेंगे लीक हुए थे, उसने भी मेरे मन पर बड़ा गहरा आघात पहुंचाया कि जिस बिहार की भूमि ने कभी नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों को दिया, उपनिषदों की दृष्टि दी, वैसे बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है कि आज हमारे छात्र शॉर्टकट्स के पीछे लगे हैं, लोग पेपर लीक कराने तक में लगे हैं। तैयारी मैंने दोबारा की, दोबारा परीक्षा हुई, सिलेक्शन हुआ, IIT कानपुर पहुंचा। पिताजी की पोस्टिंग फिर से

0: हो गई बेगूसराय बोरानी रिफाइनरी टाउनशिप फर्स्ट ईयर के बाद। और उस समय अंतिम जिसको कह सकते हैं एक ऐसी घटना घटी, घर जाना था, सभी लोग तैयार थे, मेरी भी तैयारी थी, लेकिन घर से फोन आया उस समय कि बेगूसराय मुकामा में पकड़ के शादी होती है, तो इसलिए भी लगन का समय चल रहा है, कुछ दिन आप अच्छा। वहीं कैंपस में रहिए। और इस घटना ने लगभग कुछ दिनों तक रहना पड़ा और बहुत उद्वेलित होता था, चिंतित होता था बिहार को लेकर। एक निर्णय मैंने लिया कि अपने जीवन में कुछ तो करना ही है, लेकिन सबसे अच्छा माध्यम सिविल सेवा हो सकता है, जिसमें कम आयु में एक नेतृत्व क्षमता के साथ समाज में हम योगदान कर सकते हैं। बाद में आईआईटी में कैंपस प्लेसमेंट मेरी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में भी हुई, जर्मनी के कंपनी में भी हुई, लेकिन मन निश्चित हो चुका था कि कुछ करना है और बिहार के वो बदलने के लिए अपना योगदान होना चाहिए। तो सिविल सेवा की तैयारी मैंने आईआईटी में ही प्रारंभ कर दिया था और निकलते ही मैंने परीक्षा दी और उसी का नतीजा है कि आईपीएस बना और किस्मत अच्छी थी, बिहार मिला, तो बिहार में सेवा देने का अवसर मिला।
1: आपके शिक्षा दीक्षा और आपके व्यक्तिगत जीवन से हमें ये पता चलता है कि सकारात्मक बदलाव लाने के ध्येय से आप सिविल सेवा में आए और बिहार का गौरव वापस करने या कहें कि देश की सेवा के लिए, देश में समाज में सुधार लाने के लिए आप इस सेवा में आए और लगातार उसमें आप अग्रसर हो रहे हैं। अगर हम देखें कि 2003 में आप सेलेक्ट हुए और उसके बाद ASP, CTSP, सीनियर SP, फिर आप नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में भी आपने सेवा दी, इसका कुछ अनुभव?
0: बिल्कुल आपने सही कहा, मन में भाव था समाज को कुछ देना है और एक बड़ा संकल्प था मन में जिसके लिए आज भी काम कर रहा हूँ। तो बिहार में जो पोस्टिंग्स मेरी हुई, शुरुआत में जब आया था औरंगाबाद में ASP के रूप में पहली पोस्टिंग हुई और 2005 के अंत में ASP दानापुर के रूप में पटना में पहली पोस्टिंग हुई थी। वहीं से CTSP पटना बने, फिर बघा SP, रोहतास SP के रूप में पोस्टिंग हुई, जहां अपराध उग्रवाद से उलझना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा और उसको समाप्त करने के लिए मैंने प्रयास भी किए जो सफल भी हुए। इसी समय 26/11 का अटैक हुआ था जिसने मुझे बहुत उद्वेलित किया और मुझे लगा कि एक नई एजेंसी बन रही है NIA जो आतंकवाद के विरुद्ध कार्य करेगी, तो अच्छे पुलिस पदाधिकारियों को इस एजेंसी में जाने का प्रयास करना चाहिए। NIA बनने के कुछ दिनों बाद ही मैंने उसमें आवेदन दिया था। उस समय बिहार में चुनाव होने थे 2010 में, तो चुनाव के बाद 2011 में मुझे NIA के लिए रिलीज किया गया और NIA के शुरुआती दिनों में NIA के संगठित करने में, उसके अन्वेषण में मेरी बड़ी भूमिका रही। उस समय के जो बड़े महत्वपूर्ण केसेस थे मुझे मिले और मैंने उसका इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह से करने का प्रयास किया। NIA जाने के बाद पुलिसिंग में, इन्वेस्टिगेशन में मेरी अनुभव विशेषकर इंटरनेशनल लेवल की पुलिस में किस प्रकार से काम की जाती है, टेररिज्म के लिंकेजेस क्या हैं, कहां से रिक्रूटमेंट होता है, फंडिंग कैसे होती है, इन सभी विषयों पर अच्छी जानकारी मुझे मिली, जो मुझे लगता है प्रोफेशनली एज अ पुलिस ऑफिसर आई ग्रू। वहीं से ट्रेनिंग पूरा करने के बाद जब आया था तो पटना में पोस्टिंग हुई सीनियर SP के रूप में, जहां पहले ASP भी रहा था, CTSP भी रहा था, अब एक नई भूमिका में सीनियर SP के रूप में था। और उस समय बिहार में 2015 में चुनाव भी होने थे, तो शांतिपूर्ण, भयमुक्त, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी जो प्रयास किए जाने चाहिए थे, साथ साथ विधि व्यवस्था के संधारण के लिए भी मेरे द्वारा किए गए। उसके बाद एक वर्ष करीब ट्रेनिंग में पटना में ही रहा और पुलिस के प्रशिक्षण में मेरी भूमिका रही। फिर DIG बनने के बाद भागलपुर में लगभग 3 वर्ष DIG के रूप में, कुछ समय मुंगेर में भी रहना हुआ। 27 अक्टूबर 2013 की घटना है, जो उस समय पहले बोधगया ब्लास्ट हुए थे 7 जुलाई को, उसके बाद पटना में ब्लास्ट हुए थे। उस समय NIA में पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ था और पटना ब्लास्ट से पहले ही लगभग यूं समझें कि हम लोग बोधगया के ब्लास्ट के इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और रांची के एक मॉड्यूल पर संदेह था, एक व्यक्ति के नाम से हम लोगों ने वारंट भी प्रे किया हुआ था। और जब पटना ब्लास्ट हुआ तो लगभग वो संदेह पूरा यकीन में बदल गया और उसका अरेस्टिंग शुरू हुई। एक बड़ा मॉड्यूल समक्ष आया, उसमें अनेक युवक जो रांची के आसपास के रहने वाले थे उनको जो उन्होंने अरेस्ट किया, तो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का पर्दाफाश हुआ और सभी टेररिस्ट पकड़े गए। बाद में उन केसेस का ट्रायल कराया गया, दोनों ही केसेस में कन्विक्शन हुआ है, बोधगया ब्लास्ट में भी हुआ है और पटना ब्लास्ट में भी। कुछ लोगों को फांसी तो कुछ को उम्र कैद की सजा दी गई।
1: प्रशासनिक सेवा में रहकर और इतनी जोखिम भरी सेवा, इसमें जान जाने की भी संभावना रहती है और कई लोग हमारे ऑफिसर शहीद भी हो जाते हैं, इसको कैसे मैनेज करते हैं, किस प्रकार की दृढ़ शक्ति होती है, वो कहाँ से आता है?
0: तो मैंने कहा कि सेवा में आने का कारण एक संकल्प था कि बिहार में बड़ा बदलाव करूं, तो इसीलिए किसी भी संकट के लिए मैं तत्पर रहा, तैयार रहा, तो कभी उसे घबराने का भाव कभी मन में नहीं आया। कहा भी जाता है द प्रोफेशन ऑफ अ पुलिस ऑफिसर हैज द डिग्निटी ऑफ डेंजर, तो पुलिस के जीवन में खतरा जो है वो तो उसका अंग है, उसको लेके हम लोग चलते हैं। और कई अवसर आते हैं, मुझ पर भी गोलियां चली थी रोहतास में, बहुत नजदीक से, मुझे लगता है 6 इंच करीब से सैकड़ों गोलियां निकली थी, लेकिन मन में कभी ये भाव नहीं आया कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं यहाँ कहाँ फंसा। मन में यही भाव था कि मैं निमित्त हूँ, एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, निश्चित ही सपना साकार होगा। बघा से अपराध मिटा, रोहतास से उग्रवाद मिटा, तब मिटा जब लोग जुड़े, उस भाव के साथ जुड़े कि परिवर्तन संभव हो सकता है। आज पूरे बिहार में लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान इसलिए चला रहा हूँ
1: जी,
0: क्योंकि संकल्प तो बचपन से ही था कुछ करना है, लेकिन जो दो अनुभव बगहा में हुए, जिसको अंग्रेजों ने यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम कहा था, पत्रकार मिनी चंबल कहते थे, पुलिस के अनेक ऑपरेशन व्हाइट पैंथर, ब्लैक पैंथर।

0: भी हुए और लोग इस कदर हार मान चुके थे कि कहते थे महर्षि वाल्मीकि की भूमि है, याद कीजिए महर्षि वाल्मीकि पहले क्या थे। वहां
1: जी
0: जब
1: जी
0: सोच को हम लोगों ने बदलने का प्रयास किया, गन्ना काटा, सरकार के खजाने में पैसे जमा हुए जिस भूमि पर डकैत गन्ना लगाया करते थे, और एक एक परिवार से बात करने के बाद हमने यही कहा, रत्नाकर यदि रत्नाकर होते तो विश्व किस वाल्मीकि को जानता। तो इस बात ने बड़ा गहरा प्रभाव लोगों के मन मस्तिष्क पर डाला होगा और उसी का नतीजा था लगभग 26 गैंग लीडर्स ने सरेंडर किया और जो अपराध 100-150 प्रतिवर्ष किडनेपिंग के रूप में हुआ करती थी शून्य पर आ गई थी जब मेरी पोस्टिंग रोहतास हुई। रोहतास में भी उग्रवाद चरम पर था। 2002 में DFO शहीद हुए थे, 6 में DSP शहीद हुए थे बिक्रमगंज में, अनेक घटनाएं बराबर होती थी, अनेक पुलिसकर्मी शहीद हो रहे थे। लेकिन तब जब आदिवासियों के साथ हम लोगों ने संवाद किया और कहने लगे कि आपके पूर्वज अति यशस्वी थे तो आप में क्या कमी है, इस बात ने एक एक गाँव में लोगों के मन में बड़ा प्रभाव डाला। और जब अपनी विरासत से अपनी संस्कृति से हम प्रेरित होते हैं, जुड़ते हैं, तो एक बड़े परिवर्तन के लिए हम तैयार हो जाते हैं। रोहतास में जितने भी आदिवासी युवक थे उनको हम लोगों ने टूरिस्ट गाइड बनने की ट्रेनिंग दी, यह कहते हुए कि क्षेत्र की संभावनाएं पर्यटन के क्षेत्र में असीम हैं और यदि क्षेत्र का विकास होना है तो शांति आनी चाहिए। नतीजा ये हुआ कि सभी गांवों में जिन युवकों को हम लोगों ने ट्रेनिंग दी थी उन लोगों ने उग्रवादियों का विरोध किया और ऐसा विरोध किया कि उग्रवादियों को भी आत्मसमर्पण के लिए बाध्य होना पड़ा। जो अनुभव मुझे मिले उससे मुझे लगता है कि जब पूरे बिहार में हमारे युवा अपनी विरासत से प्रेरित होंगे, यह देखते हुए कि बिहार वह भूमि रही है जिसमें जिस काल में न रोड थे, न टेक्नोलॉजी थी, न ऐसे सूचना के तंत्र थे, हम कुछ अलग कर रहे थे। अखंड भारत के साम्राज्य की रचना यहीं से हुई। जब यूरोप में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना भी नहीं हुई थी तब हम नालंदा और विक्रमशिला में ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित कर पाए थे जिसमें विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। गणित और विज्ञान का आधार जो शून्य है बिहार की भूमि पटना नहीं दिया। उसी प्रकार से यदि हम देखें तो विश्व का प्रथम गणराज्य वैशाली में जहां स्थापित हुआ केवल जाति के आधार पर लोग नहीं अपने गणराजाओं को चुनते थे, पूरे उस क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों से लोग चुनकर आते थे और बिना विवाद के अपने गणाधिपति का प्रतिवर्ष चयन करते थे। तो बिहार कुछ अलग भूमि थी। इसकी जब जड़ में जाता हूं क्यों ऐसा था, क्यों हम अलग हुए, तो मैं पाता हूं कि वेदों के जो उत्कर्ष वेदांत को इसी भूमि ने कभी प्राप्त किया था जिसमें दृष्टि यही है कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। और जब व्यक्ति में इस प्रकार की दृष्टि आ जाए कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश भी है और पूर्णता लिए हुए, तो ऐसा व्यक्ति जाति संप्रदाय लिंग भेद विचारधाराओं के मतभेदों से परे सोचने लगता है और तब वह संभावना जगती है जहां हम व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ पाते हैं। तो बिहार में जोड़ने की क्षमता थी, परे सोचने की क्षमता थी, जातियां प्राचीन बिहार में थी, लेकिन ऐसा जातिवाद जिसमें कई बार आजकल हम संघर्ष करते हुए पाए जाते हैं, यदि प्राचीन बिहार में रहता तो मगध में नंद वंश का उदय संभव ही नहीं होता। यदि ऐसा जातिवाद रहता तो आचार्य चाणक्य भी चंद्रगुप्त की जाति खोज रहे होते। हम लोग अलग लोग थे जिनकी यदि आधार कहें तो वेदांत की उस बृहद दृष्टि में थी। इसीलिए आज मुझे लगता है जब हम उससे प्रेरित होकर हम योगदान करेंगे निश्चित बिहार बदलेगा।
1: जी, आपकी बातचीत से हमें यह पता चलता है कि आप भारतीय ज्ञान परंपरा से भी काफी प्रभावित हैं और वेदांत दर्शन की भी बात आप कर रहे हैं, तो हम अपने श्रोताओं के लिए आपसे ये जानना चाहेंगे जिन्हें अभी नॉलेज नहीं है, जो शुरुआत कर रहे हैं, वो क्या समझे वेदांत दर्शन क्या है?
0: देखिए, जैसे वेदों में जो हम लोग पढ़ेंगे सारी ऋचाओं को देखेंगे तो हम पाएंगे हम कहीं ना कहीं उपासना भी कर रहे हैं, सभी के लिए कामना भी कर रहे हैं, लेकिन एक रहस्य के बारे में चर्चा होती जब है तब हम एक प्रश्न छोड़ जाते हैं। चाहे नासदीय सूक्त हो उसमें भी हम कहते हैं कि सृष्टि की रचना जिन्होंने की क्या उन्हें भी पता है कि उनकी रचना किसने की। वेदांत में जब हम पहुंचते हैं तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर इस रूप में मिलता है जब हम चार महावाक्यों को देखते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञान ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। मतलब सृष्टि की जो मूल ऊर्जा है उसका एक अंश हर व्यक्ति में विद्यमान है और अपनी पूर्णता लिए हुए है। इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर जो परमात्मा है उसका अंश है। तो ये बहुत बड़ी दृष्टि है जिसमें हर व्यक्ति उस सृष्टि के मूल तत्व से एकाकार समझने लगता है और इससे पूरी दृष्टि परिवर्तित हो जाती है और इसमें जिन्हें हम कहीं दूर खोज रहे थे उनको अपने अंदर स्थित पाते हुए जीवन को देखते हैं। तो इससे एक तो एक व्यक्तिगत दृष्टि बदलती है, साथ में समाज में यदि इस प्रकार का भाव जगे तो समाज में भी जो भेदभाव हमें आपस में तोड़ते हैं, अलग करते हैं, वो मिट जाते हैं। तो बिहार में वेदांत की दृष्टि के कारण बहुत सारे अपवाद हम प्रस्तुत कर सके। तो आज भी मुझे लगता है कि यदि जो भेदभाव समाज में हमें भिन्नता की ओर ले जाते हैं, वेदांत की दृष्टि के साथ यदि हम चलेंगे तो सभी भेदभाव मिट जाएंगे और एक अच्छे स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं।
1: स्थिति उत्पन्न, कोई भेद नहीं रहेगा,
0: कोई भेद नहीं रहेगा।
1: जी बिल्कुल, ये वेदांत दर्शन का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है, अद्वैत अभेद। इसके अलावा वेदांत के पहले भी जो चार पांच आस्तिक दर्शन थे, क्या वो विलुप्त प्राय हो गए हैं या उनकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है अभी?
0: देखिए सबसे महत्वपूर्ण रूप में अद्वैत ही है जो जिसने भारतीय संस्कृति को एक वैचारिक दृष्टि दी है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी जो बाकी ज्ञान परंपराएं रही हैं तो विलुप्त हो गई ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, अभी भी उनको आप पढ़ सकते हैं, उन पर चिंतन कर सकते हैं। अनेक ऐसे चिंतक आज भी आपको मिलेंगे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो परंपराओं को लेकर आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन हाँ, यदि हम बात कहें तो कहीं ना कहीं पॉपुलर जो ट्रेडिशन है उसमें अद्वैत मूल में है, लेकिन उसका एक अलग रूप हम देखने को पाते हैं। भारतीय संस्कृति को जिस जो भी समझना चाहेंगे तो जो

0: हमारे छह दर्शन जिस प्रकार से बात होती है तो उसको यदि हम पढ़ेंगे तो हम अपना एनरिचमेंट तो करते ही करते हैं, साथ में विश्व को भी कुछ नया देने की दृष्टि ला पाते हैं। जो आपने बात पहले कही, एक कंटिन्यूअस इवोल्यूशन ऑफ थॉट्स था, जिसमें कि अलग अलग प्रकार से वेदों की यदि हम बात
1: भौतिक
0: करें
1: नया विकास
0: तो
1: होता
0: इवोल्यूशन होता गया,
1: जी,
0: और वेदांत एक समय आया जब लगा इससे कुछ ज्यादा नहीं सोचा जा सकता,
1: ज्ञान
0: ये उत्कर्ष प्राप्त हमने कर
1: पराकाष्ठा
0: लिया।
1: जी
0: तो मुझे गर्व इस बात की होती है कि उस भूमि जहाँ वेदांत का दर्शन सिद्ध हुआ बिहार की भूमि रही, और
1: जी
0: इसी बात को मैं युवाओं को बार बार बताना चाहता हूँ कि जिस भूमि ने कभी वेदांत का दर्शन किया हो, विश्वविद्यालय देखे हो, उसमें आज भी बहुत कुछ करने की संभावना है,
1: जी
0: बशर्ते हम छोटे छोटे भावों से ऊपर उठकर शिक्षा और उद्यमिता की क्रांति लाने का प्रयास बिहार में करें।
1: जी
0: आधुनिकता की भी आवश्यकता है, लेकिन साथ साथ परंपराओं से जुड़े रहने की, अपनी परंपराओं को समझने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि अपने घर के खिड़की दरवाजे खुले रखने चाहिए ताकि बाहर से हवा आ सके,
1: जी
0: लेकिन सतर्क ये रहना चाहिए, ध्यान ये रखना चाहिए कि हवा इतनी तीव्रता के साथ ना आए कि हमें उड़ा के ले जाए। तो मतलब है कि अपने अस्तित्व को समझते हुए बाहरी दर्शन को भी समझना होगा, और जो भी नए चीजें चल रही, जैसे आज AI का युग है, डेटा एनालिटिक्स का युग है, तो हमें उसमें भी उत्कर्ष कैसे प्राप्त करें, उनका उपयोग कैसे करें, इस पर भी चिंतन करना होगा। लेकिन साथ साथ जो मूल तत्व हमारे संस्कृति के हैं उसको नहीं समझेंगे तो हम जो गहराई एक व्यक्ति में होनी चाहिए उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
1: जी अगर हम इसी क्रम में वैदिक गणित की बात करें तो वेदों में वो गणित और कई सिद्धांत ऐसे दिए गए थे जो आज भी प्रासंगिक हैं और उनका अध्ययन करके हमारे वैज्ञानिक अच्छा कर सकते हैं। आगे हम वेदांत की ही बात करें, आपने महावाक्यों की बात कही है तो थोड़ा विस्तार से, थोड़ी सरलता से हमारे श्रोता समझना चाहेंगे कि वो महावाक्य कौन-कौन से हैं और कुछ उसके एग्जाम्पल्स के तौर पर आप क्या बताना चाहेंगे?
0: देखिए, इसमें एक कहानी जो आती है उपनिषदों में, वो श्वेत केतु और उनके पिता उद्दालक जो महर्षि थे उनकी
1: जी
0: आती है। जब उद्दालक श्वेत केतु से प्रश्न करते हैं कि क्या तुम उस तत्व को जानते हो जिसको जानने से जो नहीं देखा जा सकता उसको देख सकते हैं, जो नहीं सुना जा सकता उसको सुन सकते हैं, और जिसका चिंतन संभव नहीं उसका चिंतन संभव हो जाता है, तो श्वेत केतु नहीं दे पाते हैं। उनको समझाने के लिए बताते हैं कि जिस प्रकार मिट्टी के बर्तन को देखने पर जो व्यक्ति मिट्टी को जानता है वो कहता है मिट्टी के बर्तन है, जिस प्रकार सोने के आभूषण को देखने पर व्यक्ति देखते ही कहता है सोने के आभूषण है, उसी प्रकार पूरी सृष्टि में जो कुछ भी बना है एक तत्व से बना है। जैसे मिट्टी के बर्तन मिट्टी से बने हैं, सोने के आभूषण सोने से बने हैं, उसी प्रकार सब कुछ जो भी सृष्टि में है वो एक परम तत्व से बना है, और परम तत्व से ही तुम भी बने हो, तो तुम वही हो, तत्वमसि। उसी प्रकार से उस भाव को यदि हम ये देखें तो अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं भी वही तत्व हूँ, उसी तत्व से बना हूँ। प्रज्ञान ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। तो मतलब जो मूल सृष्टि का तत्व है उससे हम अलग नहीं है, हम भी उसी से बने हैं। और जिस प्रकार जो व्यक्ति मिट्टी के बर्तन को देखने पर कहता है ये मिट्टी का बर्तन है क्योंकि मिट्टी को जानता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति ब्रह्म को जानता है, जो मूल तत्व को जानता है, वो किसी को भी देखेगा तो कहेगा ये भी तो उसी से बना है, उसमें कोई विभेद नहीं रह जाता। तो यही मूल रूप से वेदांत की दृष्टि है, जिससे हमारी पूरी संस्कृति अत्यंत प्रभावित हुई और एक वैचारिक उत्कर्ष की स्थिति बिहार ने पूरे देश को दी।
1: जी, यानी कि वेदांत में हम देखें तो ज्ञान की बातें, ज्ञान पर ज्यादा जोर दिया गया है, तो क्या वेदांत में भक्ति का भी कुछ स्कोप है?
0: देखिए, भक्ति जैसे वेदांत में गीता को भी उपनिषद का भाग माना गया है ना,
1: जी
0: तो गीता उपनिषद कहा जाता है, तो उसमें गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कर्म ज्ञान और भक्ति तीन मार्ग हो सकते हैं उन तक पहुंचने के, उसमें भक्ति वेदांत उस रूप में हम जानते हैं। उसमें बाद में जाकर चैतन्य महाप्रभु ने उसको काफी और
1: जी
0: अगले स्तर तक ले गए, आज इस्कॉन मूवमेंट भक्ति वेदांत पर ही
1: जी
0: आधारित
1: जी
0: है।
1: जी तो वेदांत में ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का सिद्धांत समाहित है। वेदांत में आत्मा और मोक्ष की क्या अवधारणा है?
0: देखिए, मंत्र कहता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। जो पूर्ण था पूर्ण ही रहता है और पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। तो व्यक्ति जब अपने अस्तित्व को समझ जाता है तो जान जाता है कि वो उसी पूर्णता को लिए हुए है और अंत में वही जाना है। तो ये जीवन की प्रासंगिकता है।
1: वेदांत की बात हम करेंगे आगे भी। आपने लेट्स इंस्पायर बिहार की चर्चा की, तो ये क्या मुहिम है? क्या ये अध्यात्म से जुड़ा है? क्या ये समाज सेवा से जुड़ा है? क्या शिक्षा से जुड़ा है?
0: देखिए, लेट्स इंस्पायर बिहार एक सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक प्रयास है एक विकसित बिहार बनाने का 2047 तक, ताकि विकसित भारत का सपना पूरा हो सके। बिहार की क्षमता असीम है जैसा मैंने आपसे कहा, लेकिन इस असीम क्षमता के साथ यदि हम आपस में संघर्ष करेंगे तो जहां हम पहुंचना है नहीं पहुंच सकेंगे। तो ये प्रयास है लोगों को प्रेरित करने का और उनको कहने का कि अपने अपने हिस्से के बिहार में जो भी प्रयास आप कर सकते हैं उसको हम करें। आज लगभग 3,60,000 स्वैच्छिक रूप से व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़े हैं, जिसमें लगभग 30,000 महिलाएं हैं, लगभग 25,000 उद्यमी हैं। इन सभी व्यक्तियों को जोड़ने से हम प्रयास कर रहे हैं ऐसे प्रकल्पों का निर्माण का जिससे समाज को कुछ लाभ मिले। अभी बिहार के 18 जिलों में 33 निःशुल्क शिक्षा केंद्र चलते हैं, जिनमें 2500 से अधिक ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से वंचित है अध्ययन करते हैं। इनमें से 28 केंद्र महिलाओं के द्वारा गार्गी पाठशाला के नाम से संचालित। इसी प्रकार स्टार्टअप्स की क्रांति बिहार में लाने के लिए अनेक स्टार्टअप्स को हम लोगों ने

0: करने का प्रयास किया ताकि उनको हम समय समय पर सहयोग कर सकें, उनको मेंटोर कर सकें। लगभग 600 स्टार्टअप इस अभियान के साथ आज जुड़ी हैं। हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि हर जिले में ऐसे 5 स्टार्टअप 2028 के अंत तक स्थापित हो सकें जिनमें 100 लोगों को रोजगार देने की क्षमता हो। इससे एक ऐसा बीजारोपण होगा जिससे बड़ी संख्या में हमारे युवा स्टार्टअप्स की ओर आएंगे और इसी की आवश्यकता बिहार को है। आज स्टार्टअप्स को सफल बनाने के लिए एक इकोसिस्टम की भी आवश्यकता है, इसीलिए बिहार के जो बाहर लोग रहते हैं जिनका मूल बिहार से है ऐसे लोगों को भी जोड़ने का हम लोगों ने प्रयास किया है और बड़ी संख्या में आज बिहार के वैसे लोग जो विदेशों में रहते हैं, बड़े महानगरों में रहते हैं, वो सक्षम है, इस अभियान के साथ जुड़े हैं। उनमें से 100 से अधिक लोगों को हम लोगों ने जब प्रेरित किया तो उनके द्वारा अपने गाँवों में कुछ न कुछ योगदान किया जा रहा है। किसी ने लाइब्रेरी खोली है, किसी ने स्कॉलरशिप स्थापित की है, कुछ लोगों ने कंप्यूटर लैब स्थापित किया है या अन्य किसी प्रकार से भी लोग योगदान कर रहे हैं। तो यही इस अभियान की दृष्टि है। तीव्रता के साथ बिहार बढ़े, लगभग 15% का ग्रोथ रेट आए और पर कैपिटा इनकम जो बिहार का सबसे भारत में कम है उसको हम अन्य राज्यों के स्तर तक ले जा सकें, अग्रणी ले जा सकें, यही इसकी दृष्टि है।
1: तो क्या जो युवा हैं बिहार के या जो बाहर जो प्रवासी हैं क्या इससे जुड़ रहे हैं, कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं?
0: देखिए 5 वर्ष हुए हैं और 3,60,000 लोग सीधे रूप में जुड़े हैं, तो ये अपने आप में बताता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग बिहार को बदलते देखना चाहते हैं। और बड़े बड़े कार्यक्रम भी हम लोगों ने कि हजारों लोग आते हैं, संकल्प लेते हैं कि हम बिहार के लिए कुछ करेंगे, तो ये सुखद संकेत है और जिस दिशा में हम चल रहे हैं मुझे लगता है निश्चित ही सफलता हमें मिलेगी।
1: लक्ष्य 2047 तक बिहार को
0: जी बिल्कुल पूर्ण विकसित बनाने का एक विजन डॉक्यूमेंट भी सभी लोगों ने मिलकर तैयार किया जिसमें समाज के हर अंग की क्या भूमिका होनी चाहिए इसको भी हम लोगों ने चिन्हित और रेखांकित करने का प्रयास किया है।
1: युवा कैसे जुड़ सकते हैं इस मुहिम के साथ?
0: बहुत आसान है, आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, इसका अपना वेबसाइट भी है, सोशल मीडिया के माध्यमों से भी जा सकते हैं, उसमें लिंक पर आप रजिस्टर करें, वेबसाइट पे सभी कोऑर्डिनेटर्स के नंबर भी दिए हैं, उनको भी आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं।
1: जी, तो काफी महत्वपूर्ण और काफी प्रेरणादायक ये मुहिम है और हम उम्मीद करते हैं कि काफी युवा इस मुहिम से जुड़ेंगे। हम बात करेंगे आपके हॉबीज के बारे में। आप जैसा कि हमने पढ़ा है आपके प्रोफाइल से कि आप इंडियन हिस्ट्री फिलॉसफी के मर्मज्ञ हैं, आप पढ़ना पसंद करते हैं, आप ट्रैवलर भी हैं, बहुत ज़्यादा आप यात्राएं करते हैं, आप ब्लॉगिंग करते हैं, और क्या कुछ खास, क्या गीत संगीत में भी कुछ रुचि है आपकी?
0: देखिए दर्शन में बहुत रुचि है, इतिहास में रुचि है, तो पढ़ता रहा हूँ बहुत। आज भी मेरे घर पे एक पुस्तकालय है जिसमें करीब 5,000 पुस्तकें आपको मिल जाएंगी, तो जब भी समय मिलता है पढ़ता हूँ, भ्रमण करता हूँ, गीत संगीत भी यदा कदा सुनता हूँ। और यदि फेवरेट गाने की बात करें तो ए मालिक तेरे बंदे हम मुझे बहुत पसंद है, जो अक्सर सुनता हूँ और जब भी कुछ कठिन घड़ी आती है तो उसको पुनः सुन। मैं राष्ट्रकवि दिनकर की कविताओं में बराबर पढ़ता रहता हूँ, याद करता हूँ। एक कविता है आशा का दीपक, वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। इस कविता की पंक्तियों ने मुझे बहुत प्रेरित किया स्टूडेंट लाइफ से ही, और आज भी जब कुछ कठिन चुनौती सामने आती है तो कविता की पंक्तियों का स्मरण करते हुए स्वयं को संकल्पित करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो जीवन में हार्ड एस्पेक्ट्स भी हैं, सॉफ्ट एस्पेक्ट्स भी हैं, और सबके साथ सामंजस्य बिठाते हुए आगे बढ़ते जाना है।
1: जी, तो कार्यक्रम में हम भी आगे बढ़ते हैं और आपकी पसंद का ये गीत ए मालिक तेरे बंदे हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।

0: गीत संगीत के बाद श्रोताओं फिर से स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हम आपको बता दें हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान सीनियर आईपीएस श्री विकास वैभव जी उपस्थित हैं। कार्यक्रम है इनसे मिलिए पॉडकास्ट बातों बातों में। गीत के पहले हमने विकास वैभव जी से उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में, आईपीएस रहते हुए उनके जो उपलब्धियां हैं उनके संघर्ष के बारे में और भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में काफ़ी दिलचस्प बातें की, काफ़ी प्रेरणादायी बातें हुई। आप लेट्स इंस्पायर बिहार का मुहिम चला रहे हैं उसके बारे में भी बातें हुई। कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर जा रहा है। वापस हम वेदांत के ही सवाल से अंत करना चाहेंगे कि वेदांत में एक जगह कहा गया है कि औषध को बिना पिए केवल औषध शब्द के उच्चारण मात्र से रोग नहीं जाता। इसी प्रकार साक्षात या अपरोक्ष अनुभव के बिना ब्रह्म ब्रह्म कहने मात्र से कोई मुक्त नहीं हो जाता। तो ये एक मौलिक प्रश्न यहाँ ये उठता है, तो किस प्रकार जो है ब्रह्म का अनुभव किया जाए या जिज्ञासु कैसे शुरुआत करें?
1: देखिए, इसमें एक मंत्र, एक श्लोक है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समाना वृक्षम परिस हो जाते हैं। यानी एक डाल पर दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी सब कुछ भोगता है और दूसरा पक्षी केवल दिखता रहता है। तो अपने जीवन में यदि हम इसकी कल्पना करें तो जब हम कुछ भी करते हैं तो हम पाएंगे कहीं ना कहीं अंतर्मन हमें सचेत करता है जब कभी हम कुछ गलत करना चाहते हो। और यदि हमने कुछ गलत किया तो मन बार बार कहता है कि तुमने गलत किया है, तो जब सही करते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है। तो ये जो भाव कहीं से उत्पन्न हो रहा है, ये दूसरा पक्षी है जो कुछ ग्रहण नहीं करता केवल देखता है, साक्षी भाव है और वो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के मन में है। जिस दिन हमने उस साक्षी भाव को, उस अंतर्मन को एक प्रबल स्थान दिया, उसके हिसाब से हम चलने लगे तो जीवन की संतुष्टि अपने आप और बढ़ जाएगी और जीवन हमारा सार्थक होगा। तो मूल रूप से इसी कल्पना को यदि हम, इस सामान्य सी जो बात हमारे अंतर्मन में कहता रहता है, अंतर्मन की हम सुनेंगे तो हम बहुत अच्छा करेंगे।
0: जी बिल्कुल, हमारे श्रोताओं को, हमारे युवाओं को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, समाज सुधारने के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए, क्षमता हमारी असीम है, वेदांत की दृष्टि भी यही कहती है, लेकिन सभी लोग सफल नहीं होते। तीन प्रकार के लोग होते हैं, काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग, मध्यम त्यजते बीच में देख विषम संयोग, पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते सतत बाधाओं को ठेल। तो आपके मन में यदि इच्छा है, निष्ठा है और आप प्रयास करते हैं, सफलता के लिए आवश्यक ये दोनों ही नहीं है, सफलता के लिए सबसे आवश्यक है कि हम दृढ़ संकल्पित हों, दृढ़ निश्चय के साथ हम प्रयास करें और किसी भी परिस्थिति में कैसे भी विघ्न बाधा आए हम रुके नहीं। मैं सभी से यही कहूंगा, पूरे परिश्रम के साथ सफल हो जाएं, और एक बार सफल हो जाते हैं, अपने आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो केवल स्वयं तक नहीं, थोड़ा अंशदान समाज के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी जरूर दें, तभी हमारा राष्ट्र विकसित होगा।
0: बिल्कुल, खुद सफल हों और लोगों को भी सफलता की ओर प्रेरित करें, यह आदर्श आपका है। श्रोताओं हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित थे सीनियर आईपीएस श्री विकास वैभव। आज हमने इनसे कई आयाम, इनके जीवन के कई आयाम पर बातें की और काफ़ी प्रेरणादायक इन्होंने बातें हमारे श्रोताओं को बताई हैं। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आएगा। तो इसी के साथ हम आपसे, इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहते हैं। विकास वैभव सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, प्रेरणादायक संदेश हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा की, आपका बहुत बहुत आभार।
1: जी, धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बातों बातों में। इस कार्यक्रम में आईपीएस विकास

वैभव से बातचीत कर रहे थे सचिन कुमार, ये आकाशवाणी पटना है। आइए अब सुनिए फिल्म संगीत।

0: इस गीत के साथ ही संपन्न हुआ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम। कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी पटना से। आगे आप सुनेंगे समाचार प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: और इस गीत के बाद
0: छाया गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शांतिपूर्ण और स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनना चाहता है। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमरीका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया, वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग का प्रारूप जारी किया।
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को कार्यान्वित किया गया है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर एचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से

0: इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
0: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र। ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
1: इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस आयोजन की ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते सामान्य कूटनीति से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। ये मार्बल स्टेडियम में गूंजती तालियां और लोगों के उत्साह से बयां होता है। प्रधानमंत्री मोदी का एक महत्वाकांक्षी और विकसित भारत का दृष्टिकोण, जिसमें वैश्विक विनिर्माण में कामयाबी से लेकर ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत अहम मानवीय मदद तक शामिल है, साबित करता है कि भारत मानवता के हित में लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। इससे ये साफ होता है कि भारतीय समुदाय दोनों देशों की व्यवस्था और रणनीतिक रक्षा गलियारे को मजबूती दे रहा है, जिससे हमारा साझा भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बना रहे और हम आपसी भरोसे से जुड़े रहें। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विदेश सचिव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शिखर सम्मेलन में भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का कल समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे। न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट आज ऑकलैंड में जारी की गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर न्यूजीलैंड के राजस्व और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
3: ऑकलैंड में वाइटाकरी इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह में न्यूजीलैंड में बसे भारतीय समुदाय की आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय की बढ़ती भागीदारी और उसके व्यापक आर्थिक प्रभाव का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय समुदाय उद्यमिता, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आतिथ्य, खुदरा व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए इन्फोमेट्रिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रेड ऑल्सन ने कहा कि भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले समुदायों में से एक है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आईवीएफ केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी एआरटी क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया। ये समिति आईवीएफ क्लिनिक, एआरटी केंद्रों और गैमीट बैंकों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे और संबंधित कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगी। इसमें महिलाओं के प्रजनन अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा की

0: शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बदलने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत आधार होना अत्यंत आवश्यक है। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वैज्ञानिक क्षमता विकसित भारत की आधारशिला है। नाइजर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत नींव का होना बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये ऐसे युवा शोधकर्ताओं को तैयार कर रहा है जो जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे उभरती वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित कानून में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि समिति राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने से पहले प्रस्तावित कानून के कानूनी, संवैधानिक और सामाजिक पहलुओं की जाँच करेगी। सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, पहनने योग्य स्मार्ट उपकरणों और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिस्प्ले असेंबली, लिथियम आयन सेल और इंडक्टर कॉयल मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। ईरानी मिसाइलों ने कुवैत और कतर को निशाना बनाया। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तराखंड में कल तेज वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में शुक्रवार को तेज वर्षा होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए हर हाल में आज का मैच जीतना होगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुखोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कैरोलिना ने सेमीफाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में मार्टा कोच्यूक का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास, अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का इच्छुक। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य

0: laws governing IVF clinics. Government waives basic customs duty on key components used in electronic devices to promote their domestic production. Iran accuses U.S. of conducting airstrike near Bushehr nuclear power plant, attacks U.S. bases in Bahrain, Kuwait, and Qatar, and in FIFA World Cup, France to face Morocco in the first quarterfinal at Boston in U.S. tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आजाद और खुले भारत बहरुल काहिल को यकीनी बनाने के सिलसिले में दिफा और सिक्योरिटी तावुन के एक मुश्तरका ऐलानिए पर दस्तखत किए हैं। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की सप्लाई के लिए भी एक समझौता किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ज्यादा तरक्की करो, ज्यादा हुसूलियाबी करो के नजबुल ऐन से मुतासर होकर दुनिया की तीन आला तरीन मीशतों में से एक बनने की ख्वाहिश रखता है। उन्होंने मेलबर्न में भारतीय बिरादरी से भी खिताब किया। ख्वातीन के कौमी कमीशन ने आला सतह की माहिरीन की एक कमेटी तश्कील दी है जो IVF क्लिनिक के जवाबित से मुतालिक फ्रेमवर्क और उनके सिलसिले में कवानीन का जायजा लेगी। हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक आलात में इस्तेमाल होने वाली अहम अशिया पर बुनियादी कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी है ताकि मुल्क में उनकी मैनुफैक्चरिंग को फरोग दिया जा सके। ईरान ने अमरीका पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने बुशहर न्यूक्लियाई बिजली के प्लांट के नज़दीक फजाई हमला किया। उसने बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी बेसिस पर हमले किए। और फीफा आलमी कप में अमरीका के बोस्टन में आज रात पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस और मराकश आमने सामने होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब ने मेलबर्न में आज तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत सालाना लीडर समिट में शिरकत की, जिसके दौरान दोनों लीडरों ने वफ्द की सतह की बातचीत की, जिसका मकसद बाहमी ताल्लुकात को मजबूत करना था। भारत बहरुल काहिल में अमनो इस्तेहकाम कायम करने की गरज से दोनों लीडरों ने दिफा और सिक्योरिटी तआवुन के सिलसिले में संगे मील की हैसियत रखने वाले एक मुश्तरका ऐलानिए पर दस्तखत किए। नीज सालाना वज़राए दिफा के मुज़ाकरात की बुनियाद रखी और समुद्री सरहद की सिक्योरिटी में शराकत दारी के मुत्तहिदा लाहे अमल का इफ्तिताह किया। वजीर आजम मोदी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया को दरख्शां जमहूरियत और अहम तरीन समुद्री ताकत करार दिया।
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: मुज़ाकरात के बाद एक मुश्तरका प्रेस बयान में वजीर आजम मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों ने न्यूक्लियाई तवानाई के शोबे में एक अहम माहिदे पर दस्तखत किए हैं जिसकी रूह से ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम सप्लाई कर सकेगा। उन्होंने साइबर, अहम तरीन टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन्स के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया भारत शराकत दारी और एक मखसूस अहम तरीन मिनरल्स कॉरिडोर को शुरू करने का भी ऐलान किया।
2: आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है, इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है।
1: बाद में आज वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत ज्यादा तरक्की करो, ज्यादा हुसूलियाबी करो के नजबुल ऐन से मुतासिर होकर दुनिया की आला तरीन तीन मईशतों में से एक बनने की ख्वाहिश रखता है। मेलबर्न में भारतीय बिरादरी से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने भारत की इक्तिसादी और तकनीकी पेशरफ्त को उजागर किया।
2: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
1: باہمی شراکت داری کے لیے بھارتی برادری کو کریڈٹ دیتے ہوئے جناب مودی نے صاف لفظوں میں کہا کہ بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان

0: Matthew White. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में नवाचार, उच्च कौशल, रोजगार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
1: एक और भारत दुनिया में सबसे तेज गति से विकसित हो रहा देश है, दूसरी ओर दुनिया के तमाम देशों को भारत तकनीक, प्रतिभा और आगे बढ़ने के लिए उन्नत अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है, जिससे हमारे श्रोता अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम परिचित हैं। और यह है क्षेत्र भारत में वैश्विक क्षमता केंद्र। ये वैश्विक क्षमता केंद्र वस्तुतः क्या है, किस रूप में भारत ही नहीं दुनिया में अपना योगदान दे रहे हैं और एक ओर प्रतिभा को उचित अवसर मिल रहा है, नए नए नवाचार हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हो रहा है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियों को आगे बढ़ने में योगदान दे रहा है। कुछ इन्हीं विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे अपने इस अंक में। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए आमंत्रित है डॉक्टर रंजीत मेहता, सीईओ और सेक्रेटरी जनरल पीएचडी सीआईआई। स्वागत है आपका डॉक्टर मेहता।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से आयोजित जीसीसी बिजनेस समिट को संबोधित किया।
3: टुडे द ग्रेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाइज इन जनरेटिंग नॉलेज, अप्लाइंग टेक्नोलॉजी एंड सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। That's what the GCCs are. It's not as if it's slightly upgraded version of your backroom, back off or office space, the BOPs. No, this is a completely different domain. It has a lot of technology, no doubt, but the new human intervention, human skills and the human knowledge which gets crystallized, what makes this century going to stand out in the name of GCC?
1: शुरुआत डॉक्टर साहब हम यहीं से करना चाहेंगे कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हमारी जो वैश्विक क्षमता केंद्र हैं वो किस रूप में योगदान दे रहे हैं, और उससे भी पहले समझना चाहेंगे आम जुबान में आम लोगों के लिए ये वैश्विक क्षमता केंद्र क्या हैं और किस रूप में यहाँ प्रतिभा का, तकनीक का संगम हो रहा, बड़ी कंपनियों के लिए हम उत्पाद बना रहे।
2: पिछले अगर दशक में देखें तो भारत एक बहुत ही प्रेफर्ड डेस्टिनेशन हो गया है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए। और जो इससे पहले क्या होता था, भारत में सिर्फ बैक ऑफिस लोग रखते थे, उसमें कॉल सेंटर्स ये सब आते थे, लेकिन पिछले दशक में जिस तरीके से भारत में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और नए नए जो भारत के कार्यक्रम जो कि जैसे मेक इन इंडिया है, स्किल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, ये सारे नए नए जो कार्यक्रम आए उससे जो है एक भारत जो है एक इवॉल्व हो चुका है हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक सेंटर्स के तौर पे, जिसमें सिर्फ एक बैक ऑफिस ऑपरेशन तक ही ये सीमित नहीं है, बल्कि जिसमें रिसर्च होती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, अब तो एक नया आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, इंजीनियरिंग है, फाइनेंस, फिनटेक, लीगल सर्विसेज, ऑल जो ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस हैं जिसमें जो भी चीजें यूज होती हैं, आज भारत उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हब बन चुका है। आज भारत में 1800 से ज्यादा ऐसे ग्लोबल कैपेबिलिटीज सेंटर्स हैं जिसमें कि 20 लाख से अधिक लोगों को आज प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अगर आप देखें इसमें जो कि भारत डेफिनेटली एक टैलेंट कैपिटल भी है, आज अगर आप देखें भारत जो है 65% जो भारत की जनता है वो 35 साल से कम उम्र के लोग हैं, तो भारत एक यंग कंट्री

0: है, एक यंग कंट्री होने के नाते हमारे पास टैलेंट पूल है, बट टैलेंट पूल होने के साथ साथ हमने पिछले करीब दशक में देखा है कि भारत एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। आज जो भारत का आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया का लॉन्च हुआ था, तब भारत में सिर्फ करीब 300-400 रजिस्टर्ड स्टार्टअप थे, लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं 1.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप जो है भारत के अंदर हैं, और भारत जो है दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप इनोवेशन की बात करते हैं, इनोवेशन कैपिटल बनाने की बात करते हैं, क्योंकि टैलेंट कैपिटल तो है ही भारत विश्व का, लेकिन एक इनोवेशन कैपिटल बनाने की दिशा में भी भारत जो है आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बनने जा रहे हैं, इसमें जो है आगे चल के मैं समझता हूँ आगे चल के सिर्फ एक कॉस्ट आर्बिट्रेज, क्या कॉस्ट के बेसिस पे कि भारत में लेबर सस्ती है, इस बेसिस पे ही आप अपना एक कॉम्पिटिटिव जो एडवांटेज है उसको आप नहीं ले सकते। आगे चलने के लिए हमें एक वर्ल्ड क्लास टैलेंट की जरूरत है, और उसमें कितना हम इनोवेशन करते हैं, कितना हम उसको ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को इसमें इंटीग्रेट करते हैं, इस पे डिपेंड करेगा। और जब हम एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं उसके जो तीन मुख्य पिलर होंगे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के। पहला पिलर मैं समझता हूं एक स्किल, कि क्या हमारे पास स्किल सेट्स हैं आज भारत में। आप टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, जेनरेटिव एआई आ चुका है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, रोबोटिक्स है, सेमीकंडक्टर है, इस साइड डेटा एनालिटिक्स है, साइबर सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी भी ऐसी एक नया एक स्टेप आ चुका है, जिससे जो है हर इंडस्ट्री अपना ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक चर्निंग हो रही है इंडस्ट्री में, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी 2070 तक नेट जीरो होने का अपना एक कमिटमेंट कर चुके हैं। अगर आप लंबी दिशा में अगर आप देखना चाहते हैं, तो उसमें ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है जो हम करते आ रहे हैं वही सफिशियंट नहीं होगा, बल्कि इस दिशा में हमें अपने एजुकेशन को भी ले जाना है, तो जिससे कि भारत में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी भारत की आ चुकी है, भारत के अंदर इकोसिस्टम तैयार करना है जिसमें कि कंटिन्यूअस लर्निंग हो, जहां पे कि इंडस्ट्री, एकेडमिया, गवर्नमेंट सब साथ मिलके जो है जो हमारी वर्क फोर्स है उसको जो है हमें फ्यूचर रेडी बनाना है।
1: श्रोताओं, देश की राजधानी दिल्ली में आज भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से एक महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर केंद्र कई सारी बातों पर चर्चा हुई, बहुत सारे विचार रखे गए, और सबसे बेहतर हमारे विशेषज्ञ ने जो कहा कि एक ओर शिक्षा, प्रतिभा, कौशल, दूसरी ओर उद्योग, और तीसरी ओर देश की नीतियां इस दिशा में हो कि हम वस्तुतः दुनिया को दिशा दिखा सकें और तीनों का एकीकरण कर सकें। इस अवसर पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने कहा,
2: What is it that AI can do to enhance productivity, enhance efficiency and effectiveness across a range of sectors? How is it that India can adapt AI and what is it that India can contribute in this space? And which is why the thought was that India really needs to become the application and AI-based solution capital of the world and the way in which we can actually roll out using our talent. What is the way in which we roll out AI for the rest of the world? Today, one of the things that many people, many experts do comment is that while there's a lot of investment taking place in building out data centers, in, you know, the chips that need to be done for this, the high bandwidth memory that needs to work in the data centers, on the infrastructure side, there's a lot of effort which is going on into building the models. But ultimately, all these are just the infrastructure piece of the play. What happens with what actually gets deployed at the enterprise level and at various levels? And the deployment of AI in enterprises is still lagging across the world, not just in India, but across the world. And that is truly where I think GCCs in India will come in and play that critical role.
1: डॉक्टर मेहता, यहाँ से दिशाएं स्पष्ट होनी शुरू हो रही हैं कि हमारा भविष्य क्या है और किस किस रूप में इसे कार्यान्वित करना है। यहाँ पर हमारा सवाल ये होगा कि जो लक्ष्य हम सामने रख रहे हैं कि उच्च कौशल और तकनीक का जो वास्तविक उत्पाद है AI के ऐप के रूप में, वह किस रूप में पूरी क्षमता के साथ हम दुनिया के सामने रख सकेंगे।
0: अभी सेक्रेटरी ने भी कहा कि कैसे हम स्किल सेट्स को, यहाँ पे सिर्फ BPO जॉब्स, हमें BPO जॉब के लिए ही नहीं काम करना है, बल्कि जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बन रहे हैं उसमें

हमें हायर लेवल जॉब्स के लिए जो है अपने आप को तैयार करना है, तो उसमें जो पहला पिलर मैंने बताया स्किल है, और जो सेकंड पिलर है वो होगा इनोवेशन। क्योंकि आप जो नेक्स्ट लेवल के जीसीसी आएंगे वो सिर्फ यहाँ पे भारत में सिर्फ ग्लोबल मैंडेट को सिर्फ एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं होंगे, बल्कि हमें एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करनी पड़ेगी, इनोवेशन का हब बनाना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजीज पे काम करना है, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी पड़ेंगी, और

0: पड़ेगी, इनोवेशन का हब बनाना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजीज पे काम करना है, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी पड़ेंगी, और उसके लिए हमें एक प्रोडक्ट हब बनाना पड़ेगा जिसमें कि हम विश्व के लिए इसमें प्रोडक्ट को बना सकें। जैसे कि मेक इन इंडिया हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको लॉन्च किया था आज से 10 साल पहले, उसमें कई सारी प्रोग्रेस हुई है। और क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है, इंडिया के पास एक बहुत ही यूनिक टैलेंट है। आप अगर देखें तो साइंटिफिक टैलेंट इंडिया में सबसे ज्यादा है। आप देखिए जो हमारी एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी है, जो प्रोवेस है, आपने देखा कि किस तरीके से कोविड के टाइम में भारत के एंटरप्राइजेज ने पूरी दुनिया में कैसे काम किया। भारत जो है एक फार्मा हब बन गया था कोविड के टाइम में, कैसे नई वैक्सीन हमने जनरेट की। तो एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हमारा एक स्ट्रेंथ है। और तीसरा जो हमारा स्ट्रेंथ है इनोवेशन के लिए, वो है हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम। क्योंकि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत ही काफी स्ट्रांग हो चुका है। आज हमारे देश में नए नए जो बच्चे हैं 18 साल 20 साल 30 साल से कम उम्र के जो युवा हैं, वो भी आपने देखा यूनिकॉर्न का स्टेटस ले चुके हैं। ऐसी ऐसी कंपनी देश में अभी आई है जिसमें कि 1.5 साल 2 साल के अंदर वो यूनिकॉर्न बन चुके हैं। यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन करीब, आज के अगर टर्म में देखें तो करीब 10,000 करोड़ से ऊपर जिसका वैल्यूएशन है, वो एक यूनिकॉर्न मानी जाती है कंपनी। तो ये हमारे देश में एक इनोवेशन का जो एक कल्चर बन चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें फर्दर इसको स्ट्रॉन्ग करना है, इंडस्ट्री एकेडमिया और गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन करके एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ एक्सिलरेट करना है इनोवेशन को। तभी हम जो यूनिवर्सिटीज में टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी उसको कैसे हम कॉमर्शियली उसको वायबल बनाएं, इस पे हमें काम करना है, जिससे कि जो विश्व की समस्याएं हैं तो उसको हम भारत में टेक्नोलॉजी डेवलप करके उसको हम कैसे सोल्यूशन निकालें। जो थर्ड पिलर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है, वो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। अब ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस कैसे आएगी? सबसे पहले हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, जो कि बहुत कुछ हो रहा है। आज अगर आप रोड की बात करें, भारत जो है विश्व का लार्जेस्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आज बन चुका है। तो इसमें ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं भारत की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हमारी पॉलिसीज स्टेबल हैं और हमारा जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है बहुत उसमें स्टेबिलिटी है, और हमारे पास आज एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग तैयार कर रहे हैं। उसमें बहुत कुछ हो चुका है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इतने सारे काम हो रहे हैं, और जो भारत का एक रिफॉर्म का जो मुहिम चली है वो बिल्कुल आगे चलती जा रही है। और डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करें, जिसमें कि 1.4 बिलियन 140 करोड़ के देश में 100 करोड़ मोबाइल से वो लोग कनेक्टेड हैं, तो डिजिटल कनेक्टिविटी हमारे गांव तक है, लास्ट माइल तक है। ग्लोबली कॉम्पिटिटिव जो हम बनने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हीं सब चीजों से होता है। और इंडिया ने कई ऐसे रिमार्केबल इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे कि डिजिटल इंडिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसमें समय से पहले ही इन सब चीजों का ऐलान किया था, और आज उसमें कई सारी प्रोग्रेस हो चुकी है। जैसे डिजिटल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, स्किल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये जो सारे रिफॉर्म्स हैं, इससे जो है हमारे जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया में आ रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आर्बिट्रेशन के फील्ड में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के फील्ड में हमने काम किए हैं। इंडिया जो है अपने आप को एक वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इनोवेशन इकोसिस्टम बनने की तरफ इसमें काम कर रहा है।
1: डॉक्टर मेहता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे हैं भारत में नवाचार, उच्च कौशल रोजगार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289040044।
3: Countrywide.

0: Insights.
1: स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार
2: ये आकाशवाणी पटना है। आइए सुनिए परिचर्चा। आज का विषय है महिला उद्यमी और सामाजिक परिवर्तन।
3: नमस्कार श्रोताओं, आज की परिचर्चा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ रानू सिंह। श्रोताओं, महिलाओं के लिए सामान्यतः एक धारणा बना ली गई थी कि महिलाएं चार दीवारी के लिए ही सही होती हैं। उनके लिए बाहर निकलना, काम करना, आर्थिक रूप से मजबूत होना आवश्यक नहीं है। हालांकि आज इन सारी परिस्थितियों में बहुत से बदलाव हुए हैं और हम अपने समाज में भी ऐसे कई उदाहरण देख रहे हैं जहाँ महिलाएं बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन आज भी स्थिति बराबरी के स्तर पर नहीं पहुंच पाई है। इसी सोच को विस्तार से जानने का आज हम प्रयास करेंगे अपनी परिचर्चा के माध्यम से। आज की परिचर्चा का विषय है महिला उद्यमिता और सामाजिक परिवर्तन, चुनौतियां और संभावनाएं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं दो खास मेहमान। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। इस परिचर्चा में हमारे साथ भाग ले रही हैं किरण रंजन, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता और उद्यमी हैं, और उनके साथ ही हमारे साथ इस परिचर्चा में भाग ले रही हैं सृष्टि, जो कि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की ओनर हैं। आप दोनों का ही हमारे इस परिचर्चा में बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद।
5: धन्यवाद।
3: आप दोनों महिलाएं हैं और आज का जो विषय है वो महिलाओं से ही जुड़ा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं किरण जी से ही करना चाहूंगी, क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता और उद्यमी दोनों होने के नाते आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि समाज में कितनी परेशानियां एक महिला को उठाना पड़ता है जब वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है। तो सबसे पहला सवाल बहुत ही सिंपल सा कि उद्यमिता क्या है?
5: देखिए, वर्तमान समय में उद्यमिता किसी देश के आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास बन चुका है। उद्यमिता एक ऐसी तकनीकी या कार्यविधि है जिसमें व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहता है। महिला और पुरुष दोनों उद्योग चला रहे हैं, अपना उद्योग चला रहे हैं, लेकिन अपना उद्योग चलाने के साथ साथ उनको विकास महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। एक उद्यमी के रूप में यह कह सकते हैं हम कि महिला उद्यमी वे महिलाएं होती है जो व्यावसायिक रूप से विचारों को उत्पन्न कर अपने आप जो एक व्यवसाय कर सकती है, प्रदान कर सकती है। महिला उद्यमी समक्ष उनके चुनौतियां भी बहुत होती है।
3: जी सृष्टि जी, आप भी अब इसी क्षेत्र में काम कर रही हैं और एक यंग जनरेशन होने के नाते आपके ऊपर भी आपको बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती होंगी, तो ये बताइए कि महिला उद्यमी होने के नाते आपको क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, और जो महिलाएं आज के समय में काम करना सोच रही हैं इस क्षेत्र में, उनको क्या क्या समस्याएं उठाना पड़ता है?
4: देखिए, अगर हम कुछ भी नया चीज़ स्टार्ट करते हैं या शुरुआत करते हैं तो समस्याएं तो आती ही हैं, लेकिन उसका समाधान निकालना हमारा ही काम है। जैसे अगर आप कोई भी चीज़ बिजनेस कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं या फिर आप किसी चीज़ में आगे आ रही हैं, तो समस्याएं महिलाएं के साथ सबसे पहले क्या आती है, समाज को लेकर, कि समाज उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, मान रहा है या नहीं मान रहा है। पहले आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करवाना होता है। सेकेंड फिर क्या आती है, अगर हम लोग व्यवसाय अगर कर रहे हैं तो जैसे मेरा मानना क्या है कि आप पूंजी बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए या फिर उसको एक गति देने के लिए, तो वो महिलाओं को मिलना एक हद तक बहुत मुश्किल आ जाता है, क्योंकि एक उनका एक लिमिट होता है, घर तक रहना एक दायरा उनका बंधा हुआ है। तीसरा,
3: ये जो आपने अभी बात, मैं आपको बीच में ही इंटरप्ट कर रही हूँ यहाँ पर, ये जो पूंजी की बात आपने की, ये सृष्टि जी की इस बात से आप कितना

0: कितना ताल्लुक रखती है
1: देखिए,
0: कि पूंजी मिलने में महिलाओं को दिक्कत होती है?
1: हाँ, बैंकिंग प्रॉब्लम तो महिलाएं को आती है। चुनौतियां, आपका क्वेश्चन था ना, चुनौतियां तो महिलाएं के लिए बहुत से है। सबसे बड़ी चुनौतियां तो उनके घर से शुरू होती है, पुरुषों से शुरू होती है। घर में अगर कोई काम करने के लिए आप निकल रहे हैं तो वो लोग घर वाले ही कहेंगे कि कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो सबसे बड़ी चुनौतियां अपने घर से शुरू होता है। बैंकिंग है, आर्थिक प्रॉब्लम है, लेबर का है। समाज भी उस दृष्टि से नहीं देखता है। अगर कोई महिला कुछ काम करने निकलती है तो समाज का भी दृष्टि बदल जाता है पुरुषों के बनस्पत। तो कठिनाइयां तो है, हर क्षेत्र में है। इसमें महिलाएं को तो अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, दृढ़ संकल्प के साथ आगे आए, अपने चुनौतियों को स्वीकार करें, तभी महिला कोई काम में आगे बढ़ सकती है।
0: ये तो बात हम लोगों ने सृष्टि जी आर्थिक चुनौतियों के बारे में की।
2: जी,
0: इसके अलावा और कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो महिलाओं को?
2: क्योंकि उनका अभी तक मानना है, हमारे समाज का मानना है कि महिलाएं ज्यादातर काम घर के लिए ही उनको टाइम देना है, तो एक नेटवर्किंग प्रॉब्लम। अगर आप कोई भी अपना व्यवसाय स्टार्ट करती हैं तो नेटवर्किंग अगर आपका सही है, लिंक अगर आपका बहुत अच्छा है आर्थिक रूप से मजबूत होने के बाद, तो आप व्यवसाय को अच्छे तौर पे चला पाती हैं। जो बाहर कम समय देने के कारण उनका नेटवर्किंग अच्छा नहीं हो पाता, जिसके लिए महिलाओं को आई थिंक मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा खुद को उस सेक्टर में डालना पड़ता है कि वो खुद को उस हिसाब से ढालें कि जिस सेक्ट जो वो व्यवसाय वो चूज़ की है वो जाके आगे बढ़ सकता है। उसके अलावा मुझे लगता है सुरक्षा को लेकर, क्योंकि महिलाएं हैं, शुरू से मानना है कि नहीं महिलाएं घर में रहती, जो मैं बार बार कह रही हूँ, तो बाहर निकल कर काम करना और अपने मंजिल को पाना तो, और उसमें सुरक्षित घर फिर वापस आना, वो उनके के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और फैमिली, जो पुराने परिवार का जो मानना है कि पहले हमें परिवार को देखना है, जो शुरू से समाज का ये मानना चलता आया कि पहले मुझे परिवार को देखना है, लड़की लड़की की शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो पहला प्रायोरिटी हमें वो देना है और इसके अलावा बाद में जाके आप कुछ भी कर सकते हैं, तो ये सब करते हुए हमें आगे बढ़ना है और ये कर रहे हैं हमें, तो ये एक चुनौती ही है महिलाओं के लिए। अगर
0: हमारी प्राथमिकताएं बदल बदल जाती हैं। यही
2: एग्जैक्टली
0: अगर पुरुष अगर कोई काम करने जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपने काम को वो ज्यादा उच्च स्तर पे रखेगा, उसकी प्रायोरिटी उसकी प्राथमिकता हमेशा ही उसका काम रहेगा।
2: जी
0: लेकिन अगर एक महिला काम के लिए निकल रही है तो उसके पीछे वो सबसे आखिर में उसे देखना
2: जी
0: पड़ता है,
2: ये
0: क्योंकि हमारा जो सामाजिक सोच है वो कहीं ना कहीं यही बनाकर रखा गया है कि आप एक महिला है, आपकी जिम्मेदारी सबसे पहले घर के प्रति है, बच्चे के प्रति है, पति के प्रति है, परिवार के प्रति है। आप अपने सपनों को जहां भी आप जाना चाहती हैं वो आप आखिरी में सोचिए, या फिर ये सारी जिम्मेदारियां बखूबी करते हुए तब सोचिए
2: तब
0: ये सारी
2: सोचिए। हाँ, ये
0: चुनौतियां।
2: सबसे मतलब समाज के द्वारा ये नियम बनाया हुआ है कि आप ये आखिरी में सोचो, सोच सकते हैं, जो कि अब बहुत हद तक चेंज हुआ है। मैं ये मानती हूँ बहुत हद तक बदलाव भी आया है, बहुत सारे पुरुष भी ऐसे हैं जो कि मदद कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं सिर्फ कह सकते हैं कि नहीं कर रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं, जिसका सीधा एग्जाम्पल मैं खुद को भी दे सकती हूँ
0: जी
2: कि हाँ, कि मैं टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ी हुई थी, अब मैंने इवेंट कंपनी कुछ दिन पहले मैंने लॉन्च किया है, इवेंट मैनेजमेंट से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो अगर मुझे घर का सपोर्ट अगर नहीं मिलता तो मेरे लिए करना टफ हो जाता, मुश्किल हो जाता। तो है, मुश्किलें हैं, लेकिन राह निकालना अपना काम है। और समाज भी बदल रहा है, परिवार भी बदल रहा है, सोच भी बदल रहा है, तो राहें भी निकल रही है साथ में।
0: अच्छा किरण जी, जैसा कि अभी सृष्टि जी ने बताया कि बहुत कम ही लोगों को ये खुशनसीबी मिल पाती है कि परिवार से उनको सपोर्ट मिल जाए और दुनिया समाज से भी उनको सपोर्ट मिल जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा है लेकिन उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में उनके लिए क्या सरकार के द्वारा कोई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि वो आगे बढ़ सकें?
1: आज के समय में और पहले के समय में काफ़ी अंतर है। महिला अब सशक्त हो चुकी है, और जहाँ कुछ कमी है, सशक्त नहीं हो हुई है, उसमें परिवार भी आगे बढ़ा रहे हैं। उन लोग को परिवार को आगे बढ़ाना है, और जहाँ परिवार आगे नहीं बढ़ा रही है, तो सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए है। सरकार एक होना जैसी योजना चलाए जो खासकर महिलाएं के लिए थी, 10 लाख का लोन, माननीय मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत महिलाओं को 10 लाख का लोन मिलता है। 10 लाख में आपको 50% 50% वापस करना है 5 साल में, और 1% उनको देना है युवाओं को, चार्ज
0: अच्छा
1: महिलाओं को फ्री है। मतलब 10 लाख में 5 लाख उनको नहीं देना है। अभी फिलहाल भी मुख्यमंत्री योजना हो के साथ साथ

0: बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ केंद्र सरकार की भी सारी सी योजनाएं, अलग अलग योजनाएं हैं, तो उसमें तो महिलाएं को आगे आके काम कर रही हैं। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जहाँ पैसा मिलता है लेकिन वहाँ बटा हुआ है, वो जनरल नहीं है, अलग अलग कास्ट के लिए योजनाएं हैं, तो उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। लेकिन महिलाएं के लिए बहुत सा योजनाएं हैं, मुद्रा लोन कि एमएसएमई के द्वारा केंद्र सरकार का जो मुद्रा लोन है, आपको एमएसएमई के द्वारा मुद्राएं लोन दी जाती है। तो वो मुद्रा लोन क्या है, केंद्र सरकार का है, तो उससे केंद्र सरकार से भी महिलाएं फायदा उठा रही हैं। और एमएसएमई के द्वारा जो केंद्र सरकार का एक अंग है, उसके द्वारा भी आप महिलाओं को काफ़ी सहायता, अभी हम बिहार महिला उद्योग संघ का मेला देख रहे थे, उसमें अलग अलग महिला उद्यमी भी लगाई हुई थी स्टॉल एमएसएमई के द्वारा। तो उसमें क्या है कि 42-43 हज़ार रुपया लेते हैं, 3-4 महीना के बाद उसको बढ़ा के, आप कहिए जीएसटी ये सब जोड़ के आप 47 लिए हैं तो उसमें 25 हज़ार तक एक्स्ट्रा देने का प्रावधान है। तो अगर महिला उद्यमी उसके थ्रू स्टॉल लेके लगाती है, अगर उसका प्रचार प्रसार के अलावे बिक्री अगर कुछ कम होता है महिलाओं को, फिर भी उसको घाटा नहीं लग रहा है, चूंकि सरकार मदद कर रही है ना,
1: जी
0: उसको टोटल पैसा वापस हो जाता है। तो सरकार की बहुत बड़ी ये उपलब्धि है महिलाओं के लिए।
1: जी बहुत आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि ना केवल महिलाएं बल्कि सरकार की तरफ से भी उन्हें हमेशा ही हौसला अफजाई दिया जा रहा है, और जो आर्थिक
0: डब्ल्यूडीसी है,
1: मदद,
0: नवार्ड है, इस सब महिला के, जो महिला जो काम करती है, एक महिला उद्यमी है, उसको प्रचार प्रसार का ये माध्यम भी है, फंड के साथ साथ ये प्रचार प्रसार का भी माध्यम है, उनसे उनको प्रचार प्रसार भी मिलता है। आज उनकी बिक्री 5 दिन का स्टॉल लगाने से नहीं हुआ, लेकिन हम वो सामान देख के हमको अच्छा लगा तो उनके घर से परचेज करते हैं।
1: जी हाँ, कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट हो गया जिसकी
0: हो
1: वजह से
0: गया।
1: कस्टमर्स को कहीं ना कहीं जानकारी मिली कि
0: महिला को क्या चाहिए, प्रचार प्रसार नहीं कर पाती है, करे तो अच्छा काम कर सकते हैं।
1: किरण जी आपने तो बहुत अच्छी जानकारी दी हमें, और शायद हमारे जो श्रोता हैं उन्हें काफी अच्छी जानकारी मिली होगी इससे। सृष्टि जी, जहाँ तक की बात हुई अभी तो आर्थिक मदद की बात हुई, और आर्थिक मदद तो मिल जाएगी, लेकिन अगर हम एक सीक्वेंस में इस चीज़ को रखना चाहें कि एक महिला के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती आती है, उसमें कौन सी चुनौती सबसे उच्च स्तर पे जाती है? जैसे कि आप आर्थिक को ज़्यादा लेती हैं या फिर सामाजिक को लेती हैं, किस चीज़ को लेती हैं आप ज़्यादा, या फिर पारिवारिक चुनौतियाँ, सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पे क्या होती है?
2: अब ये तो डिपेंड करता है मैम हर परिस्थिति पे और हर अलग अलग महिला पे करता है, क्योंकि बहुत जगह क्या होते हैं कि आपके पास आर्थिक, बहुत लोग कहेंगे कि नहीं आर्थिक मैं मैनेज कर लेती हूँ लेकिन पारिवारिक चुनौती मेरे के लिए ज़्यादा हो जाती है, तो किसी एक को कहना कि नहीं ये है तो ये मेरे
1: नहीं,
2: हिसाब
1: अगर
2: से
1: साधारण तौर पे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा सवाल तो महिलाओं पे
2: परिवार का,
1: पारिवारिक ही आता
2: पारिवारिक
1: है।
2: ही आता है, पारिवारिक ही आता है, क्योंकि अगर परिवार सपोर्ट कर रहा है, मदद कर रहा है, तो करने को तैयार है, तो कहीं ना कहीं सब मिलके फिर आर्थिक रूप से महिला को मजबूती दे प्रदान कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। लेकिन अगर परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा या मदद करने को तैयार नहीं है, मदद नहीं कर रहा, तो आप अगर आप आर्थिक मजबूत हो भी रहे हैं थोड़ा बहुत या मैनेज कर भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये, क्योंकि ये रोजमर्रा की जीवन में जिंदगी दिक्कत आते रहेगी, तो फिर आप आगे काम को लेकर नहीं चल सकते, तो परिवार का सपोर्ट होना, मजबूत होना या फिर मदद करना ज़्यादा ज़रूरी कह सकते हैं हम लोग की है।
1: जी हाँ, ये एक सच्चाई है आज के समय की भी, चाहे हम कितने भी आगे चले जाएं, आज
2: जी
1: भी समय कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पर महिलाओं को बंधन में डाल ही देता है, और उनके पास ये मजबूरी आ जाती है कि आपको परिवार को सबसे बड़ी प्राथमिकता देनी है, सर्वप्रथम में आपको अपना परिवार रखना है, समाज की क्या सोच है, इन सारी चीज़ों के बारे में चिंता जितनी महिलाएं करती हैं उतने पुरुष को
2: नहीं
1: नहीं
2: करने,
1: करना पड़ता
2: मैंने
1: है।
2: ऐसे अपनी बहुत सारे मित्र को भी देखा है जो काफी ज्यादा डिग्री से भी हैं, पढ़ी लिखी हैं, सक्षम है कि वो कर सकती हैं, लेकिन घर, बच्चे और शादी होने के बाद जो सास ससुर और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, उस कारण से उन्होंने सारा कुछ छोड़ कर घर को ही सिर्फ समय दिया, और कहीं ना कहीं एक अंदर से कह सकते हैं घुटन फील होती है कि मैं बचपन से मुझे पढ़ाया गया, लिखाया गया, मैं कर सकती हूँ, लेकिन नहीं मैं कर पा रही हूँ। और ये
1: आपके आपके पास ऐसे सर्कमस्टांसेस बना दिए गए हैं कि नहीं,
2: जी
1: आप सिर्फ और सिर्फ
2: सिर्फ
1: इसमें
2: घर के लिए
1: इन्वॉल्व
2: ही है, हम
1: रह
2: घर के लिए
1: जाएंगे।
2: ही, तो ये बना दिया गया।
1: महिलाओं के साथ बहुत सारी समस्याएं, उसमें से एक समस्या कि अगर जब कोई महिला सोचती है कि मुझे कुछ करना है, खास तौर पर उद्यमिता के क्षेत्र में, तो उन पर यह दबाव डाला जाता है कि तुम वही काम करो जो महिलाओं पे सूट करता है।

0: जी
1: जैसे कि आप टेक्सटाइल में चले जाइए, फैशन की बात कीजिए, कढ़ाई बुनाई की बात कीजिए, कॉस्मेटिक्स की बातें कीजिए, ये चीजें महिलाओं पे सूट करता है। तो इस चीज को किरण जी आप कैसे लेती हैं, क्या इस तरीके का दबाव बनता है वाकई, क्योंकि आप भी एक उद्यमी हैं तो आपको इसकी जानकारी होगी कि नहीं आप महिला हैं तो आपको यही काम करना चाहिए।
0: मेरे साथ तो ऐसा कोई समस्या आया नहीं है, हो
1: मैं
0: सकता
1: एक
0: है,
1: जनरल पर्सपेक्टिव में बात कर रही
0: लेकिन
1: हूँ।
0: हम जनरल बात भी बता रहे हैं कि चूंकि एक महिला बिहार महिला उद्योग संघ से भी हम जुड़े हैं, तो काफ़ी महिलाएं 500 के करीब महिला हमारे मेंबर हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं कि हर महिला अलग-अलग चुनौतियों के साथ माने आ रही है। कोई टेक्सटाइल के रूप में वो आ रही है, तो कोई उद्यमी मान फूड प्रोसेसिंग में काम कर रही है, तो कोई आपको खिलौना बना रही है, वो भी आप ड्रोन जैसा
1: अच्छा
0: वो बना रही है, तो वो एक महिला ही है जो प्लास्टिक की तरह तरह का। तो हाँ, कुछ 5% हम मानते हैं कि अगर हम खाना के क्षेत्र में अच्छा काम, हम खाना अच्छा बना रहे हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि आप उसी तरफ जाओ, फूड प्रोसेसिंग में अब खाना ये है तो आप उसको देखो। लेकिन आज देख रहे हैं महिलाएं भी मधुबनी कर रही हैं और पुरुषों भी मधुबनी कर रही हैं, महिला सम्मानित हो रही है। आजकल मधुबनी महिला करती है, लेकिन पुरुष भी करते हैं, लेकिन महिला को अवार्ड मिल रहा है, राष्ट्रीय पुरस्कार से वो सम्मानित हो रही है। तो महिला अभी हर क्षेत्र में है, ऐसा अब पुरुषों से कदम मिला के चल रही है। ये आप भी जान रही हैं, आप आकाशवाणी में बैठी हुई हैं, कोई दूरदर्शन में है, कोई उद्योग है, कोई प्लेन चला रहा है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। तो महिला 5% हम इसको मानेंगे कि हो सकता है कहीं कहीं 5% होगा कि तुम इसी क्षेत्र में जाओ, लेकिन आजकल वो महिला हो या पुरुष हो, लड़का हो या लड़की, स्वतंत्र है अपना कैरियर बनाने के लिए किस क्षेत्र में जाए और चुनने के लिए, वो उसी पर काम करना भी चाहते हैं। अगर हम उनको कहेंगे कि नहीं तुमको इंजीनियर बनना है, नहीं, वो कहेंगे कि हम व्यवसाय करेंगे, तो ये तो प्रवृत्ति है।
1: सुश्री जी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगी?
2: मैं थोड़ा इस पे अलग विचार दूंगी, क्योंकि ये महिलाएं कर रही हैं, ठीक है, ये सारा कुछ वो कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर व्यवसाय चुनने की बात आती है, या अगर चुनना है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी व्यवसायिक लोग परिवार महत्व देते हैं जो एक टाइम फिक्स हो कि आप इतने बजे के बाद घर लौट जाओ, पूरा
1: आपके
2: दिन
1: लिए,
2: आपका ना
1: आपके लिए
2: लगे।
1: आपका दायरा
2: हाँ
1: तय कर दिया
2: हाँ
1: जाता है।
2: कि आप इतने बजे घर आ जाओ, इसके बाद आपके घर की जिम्मेदारी है, आप ये भी देख लो। ये हम इससे हम लोग नहीं कह सकते कि नहीं करी, वो उनका अपना एक संकल्प है, दृढ़ विश्वास है, या फिर उनका एक पसंद है कि नहीं मुझे करना है कहीं ना कहीं, तो फिर वो जाकर कर रही है, और कर भी रही है, और बहुत अच्छा कर रही है, और बढ़ भी रही है। ये भी नहीं है कि नहीं बढ़ रही, क्योंकि हम जानते हैं कि महिलाओं में क्षमता है, वो कर सकती हैं। लेकिन अभी भी पढ़ाई लिखाई होने के बाद भी कहीं ना कहीं एक दिमाग में रहता है सबके विचार में कि नहीं चलो ठीक है, बेटी के रूप में बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं शादी के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, जिस कारण से कि चलो ठीक है इतने देर तक तुम यहाँ बाहर दे दो, इतने देर के बाद बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतने देर के बाद घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं बढ़ती है।
1: जिस भी उद्यम को आप सेलेक्ट कर, उद्यमिता की तरफ आप बढ़ना चाहती हैं,
2: जी
1: उसमें भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं ये दबाव डाल दिया जाता है कि
2: जी बात
1: आप
2: सही है,
1: अगर आप इस तरफ जाएंगी जो महिला से जुड़े क्षेत्र हैं तो आप ज्यादा अच्छा
2: अच्छा
1: करेंगी,
2: रहेगा, क्योंकि आप महिलाओं के बीच में हैं, सुरक्षा को लेकर किया जाता है, बहुत सारे
1: उसके
2: कारण
1: पीछे
2: होते
1: बहुत
2: हैं,
1: सारे
2: बहुत सारे
1: कारण हैं।
2: कारण होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ी बहुत सोच है। जो महिलाएं अगर हर से अलग अलग सेक्टर में भी जा रही हैं या जो कर रही हैं, तो वो उनका अपना विश्वास है, अपना कर रही हैं, और बहुत अच्छा कर रही है, और अच्छा करने के बाद समाज से उन्हें प्रोत्साहन भी मिल रहा है, ये भी नहीं कि नहीं मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक शुरुआत में एक होता है सोच कि नहीं आप इसी चीज में करो, टाइम है आपका इतना टाइम इतना देना है, कहीं ना कहीं ये रहता है हर की, जैसा कि टीचिंग प्रोफेशन है कि
1: अब
2: बच्चे
1: महिलाओं
2: भी
1: को कहा
2: हैं,
1: जाता है
2: हाँ, कि आप
1: कि
2: टीचिंग प्रोफेशन में जाइए, प्रोफेसर बनिए, टीचर बनिए, अच्छे स्कूल में जाइए, क्योंकि बच्चे को भी आप साथ लेकर जाइएगा, आपके साथ हैं दोनों माँ बेटे या माँ बेटी जो भी हैं साथ में हैं, एक साथ घर आइएगा, मतलब बच्चे को भी आप देख रही हैं और कर भी रही हैं, कहीं ना कहीं एक सोच है इस चीज़
1: वहां
2: को
1: भी कहीं
2: लेकर
1: ना कहीं
2: भी।
1: एक दबाव है आपके ऊपर
2: हाँ,
1: कि भले आप काम पे जा रही हैं
2: लेकिन लेकर
1: लेकिन
2: जाइए।
1: आप अपना बच्चा संभालिए, आपको अपने बच्चे को अपने पास रखना है,
2: नहीं,
1: आप अपनी लायबिलिटी वहां पर भी घर वाली लायबिलिटी आप नहीं भूलेंगे।
2: हाँ ये है, अभी भी है, मतलब मैं कहेंगे कि बहुत लोग इस चीज पे दबाव नहीं देते, लेकिन अभी भी है ये चीज हमारे समाज में जो दिया जाता है।
1: और इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं कई महिलाएं हैं जो अपने ख्वाब से, अपने
2: जी
1: सपनों
2: बात सही
1: से
2: है,
1: थोड़ी दूरी बना लेती हैं या फिर खत्म ही कर देती
2: कर
1: हैं कि
2: देते
1: नहीं
2: हैं
1: मुझे अब सपने नहीं देखने हैं क्योंकि मेरी लाइबिलिटीज ये है

0: और अगर रोज रोज घर में कलह हो इन सारी चीजों को
1: जी,
0: लेकर, तो उन्हें लगता है कि नहीं, इसको विराम दे देना
1: क्योंकि
0: ही ज्यादा
1: उन्हें लगता है
0: सही
1: कि मेरे अलावा कोई करने ही वाला नहीं, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो उनके आ जाती है वो बच्चा, मेरे हिसाब से, क्योंकि वो लगता है कि ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कोई करने वाला है नहीं, तो मुझे ही करना है। तो कहीं ना कहीं अपने ख्वाब को तो मारना शुरू कर ही देती है वो धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद भी उनके अंदर हौसला है, वो समय का इंतजार करती, चलो ठीक है थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर मैं करूंगी, आगे आऊंगी, लेकिन एक समय आता है कि वो कम हो जाता है।
0: हम लोग काफी नकारात्मक होके बात नहीं करेंगे, बल्कि आज के समय में, आज के समय में जब टेक्नोलॉजी आपको इतनी सारी चीजें
1: तो
0: आपको
1: वर्क
0: अवेलेबल करा रही है,
1: घर से
0: आपके
1: भी
0: घर
1: काम आता
0: बैठे
1: है।
0: आपके पास है, आपका जो छोटा सा फोन आपके पास है वो भी आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे अवसर आपको दे रही है, तो ऐसे में हम नकारात्मक होके
1: जैसे
0: बातचीत
1: मैं
0: नहीं
1: अपने बारे
0: करेंगे।
1: में बता रही हूँ कि मैंने जो अभी इवेंट किया, ठीक है, मेरा भी छोटा बच्चा है, मैंने वो, आप जो टेक्नोलॉजी की बात कर रही हैं, तो
0: जी
1: मैं 70% जो वर्क था मैं वो घर से ही की हूँ, बच्चे के साथ ही की हूँ, ठीक है। और बाहर जो लास्ट में जाना रहता है 10 डेज 20 डेज, वो मैंने बाहर का मूवमेंट लिया था और किया था सारा कुछ। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी जो होता है ना, इसलिए मैं कहती हूँ कि पढ़ाई लिखाई और शिक्षा बहुत ज़रूरी है सारी महिलाओं के लिए। तो अगर कहीं है तो आप घर से भी काम कर सकती हैं, घर से बैठे बैठे भी बहुत चीज़ कर सकती हैं, और फिर समय आने पर फिर आप बाहर भी निकल सकती, जिससे दोनों काम आ जाए। क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी से भाग तो सकते नहीं है, हमें देखना है, क्योंकि ये समाज का बनाया हुआ है। तो और कहीं ना कहीं हम महिलाएं अपने सर पे ये सारी जिम्मेदारी उठा भी लेते हैं। तो दोनों चीज़ अगर देखना है, और हमें काबिलियत है कि हम देख भी सकते हैं, तो सबसे अच्छा शिक्षा साधन है कि आप वो शिक्षित होइए और दोनों चीज़ देखते हुए आगे बढ़िए, जिससे न समाज को कहने को हो, न परिवार को कहने को हो, और आप कर सकती हैं। और आप कीजिएगा तो कहीं ना कहीं जो आपके साथ परिवार जुड़े हुए हैं और पुरुष जुड़े हुए हैं, वो भी आपके सपोर्ट में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आप करके दिखा रहे
0: डेढ़ ही
1: हैं।
0: सही, लेकिन वो जरूर से
1: आएंगे,
0: जरूर
1: एक
0: आपको सपोर्ट
1: आएंगे
0: करेंगे।
1: आएंगे।
0: अच्छा, यहाँ पे मैं बात करने जा रही थी टेक्नोलॉजी की। जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत सारी सारी चीजें आपको उपलब्ध करा रही हैं, तो आपको क्या लगता है किरण जी, टेक्नोलॉजी की कितनी मदद ले सकते हैं हम, और जो महिलाएं हैं इस क्षेत्र में, जो महिला उद्यमी हैं, वो टेक्नोलॉजी की सहायता से किस स्तर तक अपने आप को कामयाब कर सकती हैं?
2: देखिए, आजकल पहले की बिजनेस आज के बिजनेस में अंतर है। तो आजकल तो हम लोग बिना टेक्नोलॉजी का कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अब ई मार्केटिंग है, नेटवर्किंग है, सब क्या है
0: टेक्नोलॉजी
2: उसके
0: से ही जुड़ा है।
2: से जुड़ा हुआ है। तो हमारा नेटवर्क अगर मजबूत है, हम ई मार्केटिंग पर ध्यान दे रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग पर ध्यान दे रहे हैं, तो समस्या एकदम कुछ नहीं है। आप
1: जी
2: सोचिए, तो
1: जी बात
2: हम घर
1: सही
2: बैठ
1: है।
2: के भी काम कर सकते हैं, हम मोबाइल से बिजनेस कर सकते हैं। पहले ऐसे नहीं था। हम यहाँ बच्चा को भी पढ़ा रहे हैं, घर में सब्जी भी बना रहे हैं, बच्चा भी पढ़ रहे हैं, साथ में मोबाइल है तो अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। ये समय आ गया है।
1: जैसे मैंने अभी 2-3 प्लेसमेंट किया था, जिसका फॉर्म मैंने फिल किया सोशल साइट्स पे, मैंने देखा वो सारा, और मैं आराम से उसको फिल की, और उसके बाद मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी जो हम लोग युवा भी कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आज के जीवन में महत्व रखता ही है, महत्व है काफ़ी उसका, क्योंकि मुझे जानकारी मिल रही है कहाँ पे हमारे दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हम क्या उससे, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उससे अच्छा चीज़ ले रहे हैं या ख़राब चीज़ ले रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन टेक्नोलॉजी मददगार है आज के समय में।
0: और टेक्नोलॉजी जिस तरह से इस्तेमाल में आ रही है, उसमें उसके भी कुछ नुकसान भी हैं, कुछ फायदे भी
1: नुकसान,
0: हैं,
1: जी
0: तो उस पर क्या कहना चाहेंगे?
1: ये व्यक्तिगत है कि आप क्या देख रहे हैं। नुकसान तो है, नो डाउट, नुकसान हर जिस चीज, अगर कोई चीज बना है तो उसका फायदा है तो नुकसान भी है। अगर हम बच्चे को देकर छोड़ देते हैं बहुत देर तक, अगर हाथ में फोन, तो वो क्या देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, तो एक तरह से नुकसान है। लेकिन अगर हम वही ऑनलाइन क्लास करवा रहे हैं बच्चे को, तो वो उसका फायदा भी है। हो सकता है, जैसे कहा जाता है,
0: हाँ,
1: जैसे स्पीकिंग कोर्सेज है, हो सकता है मैं जिस जगह पे रह रही हूँ वहाँ अगल बगल में मुझे बहुत अच्छी नहीं मिल पा रही है टीचर्स मिल पा रही है, लेकिन हाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से 5 किलोमीटर दूर पे मिल जा रही है, जो ऑनलाइन क्लासेस भी दे रही हैं। और छोटे बच्चे को ले जाना पॉसिबल नहीं है, ट्रैफिक है, बच्चा थक जाता है, ऑनलाइन के माध्यम से हम वो क्लासेस उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो उसे एक, आप कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू उसे मिल जा रहा है अच्छा क्लास, अच्छे टीचर से पढ़ने का चांस मिल जा रहा है, जो कि पहले नहीं मुमकिन था। आदमी को जाना रहता था, ट्रैवलिंग करना रहता था, करके आ रहे हैं, बच्चे थक रहे हैं, बड़े जा रहे हैं, टाइम का वेस्टेज है, सारा चीज है। अब वो कहीं ना कहीं फायदा भी है। तो नुकसान और बेनिफिट दोनों तो अपने जगह पे है।
0: ये हम पर निर्भर करता है कि हम कौन
1: हाँ,
0: सी चीज़ को अपने में लेना चाहते
1: लेना
0: हैं।
1: चाहते हैं।
0: हम लोगों ने बहुत सारी बातचीत की अपनी इस परिचर्चा में, और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो शायद हताश हो चुकी हैं अपने जीवन में, कि अब वो कुछ नहीं कर पाएंगी, उनका समय खत्म हो चुका है, लेकिन कहते हैं कभी भी समय

0: समाप्त नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता
1: जी
0: है,
1: बस
0: आप
1: वही।
0: नई शुरुआत कभी कभी भी कर सकती हैं। तो ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो शायद इस परिचर्चा को सुनने के बाद भी कुछ महिलाओं में एक आस जगा सके कि कुछ ना कुछ वो जरूर से कर सकती हैं, ऐसी कोई बात अगर आप कहना चाहें तो जरूर से कहिए।
1: नहीं देखिए, महिलाएं चाहे तो बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत सी संभावनाएं हैं उद्यमिता के क्षेत्र में। महिला को सबसे पहले अपने आप को संकल्प लेना होगा, दृढ़ संकल्प संकल्प ले कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। जो करना चाहे महिला कर सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो नहीं कर सकती है। महिला उद्यमी अन्य महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनती है, जो उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और अपने छिपे हुए क्षमता को पहचानने के लिए प्रेरित कर सकती है। तो ये तो हमको ना सोचना है कि हमको क्या करना है। परिवार के साथ लेकर, समाज को साथ लेके महिला काम कर सकती है और कर रही है। उनके साथ ये चुनौती भी है और ये प्रेरणा भी है जो पुरुष नहीं कर सकते हैं। तो महिलाओं को कहेंगे कि सबसे पहले वो अपने आप को प्रेरित करें कि हम क्या कर सकते हैं और क्यों नहीं कर सकते हैं। जब दूसरी महिला कर सकती है, दृढ़ इच्छा होनी चाहिए महिलाएं में।
0: मुझे ऐसा लगता है कि सर्वप्रथम महिलाओं को ये जानने की ज़रूरत है कि उनमें कौन सी क्षमता है। उनमें कहीं ना कहीं ईश्वर ने हर किसी के अंदर एक ऐसी खासियत ज़रूर रखी है जो उसे भीड़ से अलग करती है। और मुझे लगता है कि आप इस बात को स्वीकार करती होंगी कि कोई ना
1: जी
0: कोई ऐसी बात हर किसी में होती है, हर इंसान में होती है, सिर्फ महिलाओं की बात नहीं कहूंगी मैं, हर किसी में होती है। और अगर हम अपने उस टैलेंट पे, हमारे अंदर वो जो खूबी है, अगर हम उस पे काम करना शुरू करें तो हमारी वो जो खूबी है वो और निखरेगी। और तब हम उस पर, जब हम काम करना शुरू करेंगे, जब हम उसको लेकर मैदान में उतरेंगे और जब हम अलग अलग जगहों पे जाएंगे उस पे काम करना शुरू करेंगे, तो वो हमारे लिए सफलता की सीढ़ियां ही हमें चढ़ाएगा।
1: बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम खुद को पहचान लें पहले कि नहीं मेरे अंदर क्या खूबी है, मैं किस चीज़ पे काम करूं। सपोज अगर मैं कह सकती हूँ कि अगर किसी को चित्र बनाना बहुत अच्छा लगता है तो वो पेंटिंग पे काम करे, टाइम दे। एक महिला के लिए टाइम निकालना, समय निकालना बहुत मुश्किल होता है सारे दिनचर्या की रूटीन को लेकर, लेकिन अगर वो समय निकाल रही हैं और टाइम दे रही हैं तो एक समय आता है कि वो खुद निखर कर आएंगी। हाँ, और साथ में कहीं ना कहीं ये भी कहेंगे प्रोत्साहन उनको बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप बना रहे हैं और बनाने के बाद अगर तारीफ मिल रही है उस चीज की कि नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हो और आगे भी अच्छा कर सकते हो, इसको आप मार्केट में लेके उतरो और अच्छे से करो, तो कहीं ना कहीं एक मनोबल बढ़ता है और आगे बढ़ते हैं। और हम उम्मीद जब समाज से करते हैं या परिवार से करते हैं तो हम महिलाएं दूसरी महिलाओं को प्रोत्साहन दें तो वो ज्यादा अच्छा होता है, मेरा ये
0: यहाँ
1: मानना है।
0: सृष्टि जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी, जो प्रोत्साहन की बात कह रही हैं आप, अगर आपको खुद पर विश्वास है तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो शायद आपको प्रोत्साहन ना भी दें,
1: जी
0: जहां आप थोड़ी की थोड़ी हतोत्साहित हो जाएं कि नहीं शायद मेरा जो काम है वो अच्छा नहीं है और इस वजह से लोग मुझे प्रोत्साहित नहीं कर रहे। ऐसे में आपको खुद को,
1: खुद के मन मनोबल को मजबूत रखना रहता है, क्योंकि हाँ अगर आप हैं समाज में हैं तो जरूरी नहीं, बात सही है कि हर कोई आपको लेकर सही नहीं सोच रहा है या फिर आपका काम हर को पसंद नहीं आ रहा है, दोनों तरह की सोच होती है।
0: पर
1: लेकिन हाँ
0: आपका
1: खुद पे,
0: विश्वास अपने
1: हाँ खुद
0: ऊपर,
1: पे विश्वास अगर है कि नहीं मैं कर सकती हूँ तो देर से ही सही आप सही कर लीजिएगा, ये मानना है।
0: श्रोताओं, अभी जिस विषय पे हम परिचर्चा कर रहे थे वो विषय काफी महत्वपूर्ण था और इस विषय पर सृष्टि जी और किरण रंजन ने बहुत सारी जानकारी दी, बहुत सारी ऐसी बातें बताई जिसके बारे में शायद हम अवगत नहीं थे। मैं श्रोताओं आपसे यही कहना चाहूंगी कि महिला उद्यमी अपने ना सिर्फ पारिवारिक जीवन में बल्कि हर क्षेत्र में अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हैं। और जो महिलाएं अपने अंदर बहुत सारे सपनों को संजोए रखी हैं, अगर एक बार वो अपने आप पर विश्वास रखकर आगे बढ़ने का प्रयास करें तो वो निश्चित तौर पर सफलता जरूर पाएंगी। हमारे साथ इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए किरण रंजन जी आपका और सृष्टि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद,
0: नमस्कार।
1: नमस्ते।
2: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी पटना है। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हुए हैं और इसी के साथ वक्त हो गया है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत, आप सभी को नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं जया। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं इस गीत के साथ।
1: मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है इसमें भी धोखा है। मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है,

श्रोताओं, ये गीत हम आपको सुनवा रहे थे फिल्म आर पार से, गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, ओपी नैयर का संगीत और बोल मजरू सुल्तानपुरी के। दरअसल श्रोताओं, आज गुरुदत्त साहब का जन्मदिवस है, तो हमने कोशिश की है कि इस कार्यक्रम में उनकी फिल्मों के गीत आपके लिए प्रस्तुत करें। बहुत ही उम्दा कलाकार गुरुदत्त, उनकी फिल्मों के कुछ गीत लेकर हम उपस्थित हुए हैं। आइए, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म प्यासा से, गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की एक बार फिर आवाज़, साहिर लुधियानवी के बोल और एस डी बर्मन का संगीत।

ये गीत आप सुन रहे थे गीता दत्त की आवाज़ में फिल्म साहब बीवी और गुलाम से, हेमंत कुमार का संगीत और शकील बदायूं के बोल। आर पार इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं गीता दत्त की आवाज़ में।

आकाशवाणी पटना से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में खास तौर से हम आपके लिए गुरुदत्त साहब की फिल्मों के गीत लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज गुरुदत्त साहब का जन्मदिन है। कार्यक्रम

आर पार फिल्म का एक और गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। गीता दत्त की आवाज़, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और ओ पी नैयर का संगीत।

आकाशवाणी पटना से अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है, कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे।

प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने

0: पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टिलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का भी दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। केंद्र सरकार जल्द ही फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए E85 ईंधन शुरू करने की योजना बना रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इसकी कीमत E20 पेट्रोल से लगभग 20 रुपए प्रति लीटर कम होगी। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना और सरकार के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में आज नोस्कोवा ने मार्ता कोस्तियुक को 6-4, 6-4 से हराया। महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला 11 जुलाई को लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में कल आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 क्रिकेट मुकाबला ब्रिस्टल में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 3 विकेट पर 94 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. India and Australia today adopted a new joint declaration on defense and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deals were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the 3rd Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne. In a joint press statement after the talks,

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी पटना है। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो गए हैं और इसी के साथ संपन्न हो रही है हमारी आज की ये सभा। कल सुबह 5:43 पर हम पुनः कार्यक्रमों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद।